FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की दूसरी तिथि, तदनुसार दिनांक 23 जून सन 2026। प्रातः के 5:58 और 33 सेकंड हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

0: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान

0: आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। आज के विचार का विषय है जगत एक सपना।
2: उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये अटल सत्य है ये जगत सपना। हमें सत्य इसलिए प्रतीत होता है कि हमारा चित्त रूपी मल से मलिन है। इस पर काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष एवं वासनाओं के आवरण आच्छादित हैं। इसलिए संसारी जगत के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। किंतु त्रिकालदर्शी ज्ञानियों ने पतंबरा प्रज्ञा द्वारा इस जगत के सत्य असत्य की पहचान करके ये निर्णय दिया है कि यह जगत सपना है। इसमें सुख नहीं है, यह परिवर्तनशील है, इसको छोड़कर जाना है। वैसे तो मित्रावस्था में शरीर और मन के भावों की जो अनुभूति होती है उसे स्वप्न कहा जाता है। अर्थात जब मनुष्य सोता है तब शरीर में व्याप्त प्रधान पदार्थ अथवा चित्त की प्रधान वृत्ति व विचारों के अनुसार वह कुछ अनुभव करता है। निद्रित अवस्था में जीव का मन और शरीर अचेत होता है। इस कारण स्वप्न में पदार्थों की अनुभव करने की भ्रांति होती है। लेकिन जब किसी के शरीर अथवा मन में विक्षेप कम होता है तब सपने में भूत, वर्तमान या भविष्य के यथार्थ दृश्य उसके सामने आते हैं। इसके अतिरिक्त मानसिक कर्मों और वासनाओं या चेष्टाएं जो कि क्रियात्मक रूप से अभी नहीं आई हैं और मन ही मन उनकी लालसा बनी है, वो भी स्वप्न काल में सामने आती हैं और हमारी कल्पना के अनुरूप स्वप्न आते हैं। फलस्वरूप स्वप्न काल में हर्ष, शोक, दुख, सुख इन सब का अनुभव होता है। जब तक निद्रा न टूटे तब तक सत्य ही प्रतीत होता है। जबकि एक छोटे से सपने का इतना प्रभाव है तो संसार के इतने लंबे सपने का प्रभाव तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि इसमें हर प्रकार का आकर्षण है।

0: अनुभूतियां हैं, स्पर्श है, हर्ष शोक हैं, वेदनाएं हैं, इसमें इंद्रियां और विषय हैं। इंद्रियां और विषयों का तो जन्म जन्मों का नाता है, इसलिए इंद्रियों का विषय में आकर्षण है। ये आकर्षण सत्य असत्य का ज्ञान नहीं होने देते, लेकिन महापुरुष तो समय समय पर हमें इस झूठे सपने से जगाने का उपदेश देते रहते हैं। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, जैसा सपना रैन का ऐसा ये संसार, एक दिन छोड़ के जाना है बिसरत न लागे बार।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में आज आपने जगत एक सपना विषय पर विचार सुने। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

राम नाम की ज्योति जब मन में जल जाती है, जीवन की हर राह उजियारी हो जाती है। जिसने राम की छवि को हृदय में बसाया, प्रभु ने उसे गले लगाया। जिसने राम की महिमा गाई, शाम का ध्यान किया, उसने ही जीवन का सच्चा सुख पाया।

जहाँ करुणा है वहीं ईश्वर है, जहाँ सेवा है वहीं सच्ची भक्ति है। जिसकी वाणी में मधुरता और कर्मों में सेवा का प्रकाश समाया है, वही जन वैष्णव जन कहलाया है। दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना, अहंकार का त्याग करना और विनम्रता ही सच्चे वैष्णव की पहचान होती है।

संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, पवन पुत्र हनुमान के स्मरण मात्र से मन साहस से भर जाता है। बजरंग बली के चरणों में शीश झुकाया जिसने, वो हर बाधा पार कर जाता है, भवसागर भी तर जाता है।

जीवन नैया डोले जब जब बीच मझधार, भक्ति बने पतवार तब श्रद्धा बने आधार। प्रभु का सुमिरन हो मन में निश्चिन बारंबार, उनकी कृपा से ही होता है सबका बेड़ा पार।

तुम ही रक्षक, तुम ही उद्धारक, तुमसे ही सकल संसार है। तुम दीन बंधु दीनानाथ, देते कृपा का दान हो। भक्तों के कष्ट दूर करो प्रभु, दो भक्ति शक्ति का वरदान हमें। शरणागति दो हे भगवान, अब जीवन डोर तुम्हारे हाथ है।

आराधना कार्यक्रम में आज आपने अनूप जलोटा, लता मंगेशकर, ओम व्यास, छाया गांगुली, हरिओम शरण और नंदिनी शरण के स्वर में भक्ति वंदना सुनी। आपका दिन सुखद और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ संपन्न होती है आज की आराधना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज की बात। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को शीला दुर्गापाल का नमस्कार। आइए जानते हैं 23 जून की तारीख से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों और घटनाओं के बारे में। श्रोताओं, मानव समुदाय का विकास और उसे बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं सार्वजनिक सेवाएं, और सार्वजनिक सेवाओं के महत्व और इनमें काम करने वाले व्यक्तियों के योगदान को रेखांकित करने के लिए आज मनाया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक सेवाओं की उपयोगिता के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास में युवा वर्ग का योगदान प्राप्त हो सके। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी है। साल 1894 में आज ही के दिन पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना हुई थी। IOC पूरे विश्व में आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वोच्च निकाय है, जो हर 4 वर्ष में ओलंपिक खेलों का आयोजन करता है। आईओसी की स्थापना की थी पेरे डी कोपर्टिन ने, और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है श्रोताओं, दुनिया भर में खेलों को बढ़ावा देते हुए युवाओं को खेल गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और खेलों के माध्यम से मानवता की सेवा और वैश्विक शांति को बढ़ावा देना। इस बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम है यू कैन डू दिस। युवाओं को प्रेरित करने के लिए, उनके आत्मसंदेह को आत्मविश्वास में बदलने के लिए लेट्स मूव ऑन वैश्विक अभियान के तहत इस थीम को लॉन्च किया गया है। और श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 2010 में इस दिन को अपनाया गया था। ये दिन विश्वभर की लाखों विधवा महिलाओं और उनके आश्रितों की समस्याओं को उजागर करने के साथ ही समाज को जागरूक करता है। विधवा महिलाओं के लिए पूर्ण अधिकार और मान्यता प्रदान करने के लिए कार्यवाही का अवसर प्रदान करता है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा, समान वेतन और पेंशन के उचित भाग तक पहुंच बनाने के विषय में जानकारी और जागरूकता बढ़ाने पर जोर देता है। श्रोताओं, 23 जून वर्ष 1757 को भागीरथी नदी के किनारे नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी का पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार के साथ ही भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव पड़ी। श्रोताओं, 23 जून वर्ष 1980 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना

घटना में मृत्यु हो गई थी। संजय गांधी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने मारुति उद्योग की नींव रखी और दिल्ली के गुलाबी बाग में एक वर्कशॉप भी स्थापित किया, जो भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। श्रोताओ, 23 जून साल 2014 को गुजरात राज्य में स्थित रानी की वाव और हिमाचल प्रदेश में स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और श्रोताओ, आज महान चिंतक, शिक्षाविद, अधिवक्ता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 6 जुलाई साल 1901 को कोलकाता में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी महान देशभक्त, राष्ट्रीय एकता के पुरजोर समर्थक और मानवता के सच्चे उपासक थे। संविधान सभा और प्रांतीय संसद के सदस्य भी वो रहे। उन्होंने स्वतंत्र भारत के केंद्रीय मंत्री के रूप में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। 23 जून 1953 को इस महान विभूति का देहावसान हो गया। अशोता आज सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी विचारक, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म दिवस भी है। उनका जन्म 23 जून 1934 को उत्तराखंड के गोपेश्वर में हुआ था। उन्होंने पहाड़ की महिलाओं को संगठित कर पहाड़ों के जंगलों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चिपको आंदोलन और वनों के संरक्षण संवर्धन के लिए उन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है। आज जयंती है हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता रहमान साहब की। उनका जन्म साल 1921 को लाहौर में हुआ था। अपनी दमदार डायलॉग डिलीवरी, शानदार अदाकारी और जादुई आवाज के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। प्यासा, प्यार की जीत, साहब बीबी और गुलाम, परदेश, चौदहवीं का चांद, छोटी बहन, वक्त उनकी यादगार फिल्में हैं। और श्रोताओं, आज अदाकार और राजनेता राज बब्बर साहब की भी उनका जन्म दिवस है। उनका जन्म साल 1952 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिंदी सिनेमा के साथ ही पंजाबी सिनेमा और टेलीविजन धारावाहिकों में भी उन्होंने अपनी अदाकारी की गहरी छाप छोड़ी है। वो 3 लोकसभा सदस्य और 2 राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। इंसाफ का तराजू, निकाह, आज की आवाज़, दूल्हा बिकता है, अंदाज, बरसात, दाग द फायर उनकी उल्लेखनीय फिल्में हैं। और इस जानकारी के साथ संपन्न होती है आज की बात। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को शीला दुर्गापाल का नमस्कार। विविधा कार्यक्रम में आज बात खेल भावना और मानवता के पोषक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर। श्रोताओं, कहा जाता है खेल के मैदान इंसान की ताकत की परीक्षा लेते हैं और मानवता की भावना इंसान के चरित्र की। मैदान में दौड़ते खिलाड़ी के कदमों के साथ उसके पूरे देशवासियों की उम्मीदें भी दौड़ती हैं और अपने खिलाड़ी की जीत के साथ ही करोड़ों दिल गर्व से भर उठते हैं। खेल के मैदान की ये जीत तब और बड़ी हो जाती है श्रोताओं, जब खेल के साथ मानवता की सेवा का भाव भी जुड़ जाता है और मानवता और खेल भावना को पोषित करता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। आज ही के दिन वर्ष 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना हुई थी और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी और पहले ओलंपिक खेल वर्ष 1896 में ग्रीस के एथेंस में खेले गए थे। इसके बाद साल 1948 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया था। श्रोताओं, ये दिन खेल भावना और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से वैश्विक एकजुटता का संदेश देता है। विभिन्न देशों, भाषाओं, संस्कृतियों और समुदायों को साथ लाने के साथ ही मानवता, समानता, मित्रता, शांति, नेतृत्व और सम्मान जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है। श्रोताओं, जीत से बड़ा होता है प्रयास, पदक से बड़ी होती है मेहनत, खेल से बड़ा होता है मानवता का सम्मान और यही है ओलंपिक की सच्ची भावना। जहां खेल होता है वहां संघर्ष होता है और जहां संघर्ष होता है वहां सफलता जन्म लेती है। सफलता के साथ ओलंपिक हमें सिखाता है कि जीतना ही सब कुछ नहीं, ईमानदारी, सम्मान और पूरी निष्ठा से अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही सबसे बड़ी विजय है। खेल पदक जीतने का माध्यम होने के साथ ही बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी हमें देते हैं। अनुशासन, परिश्रम, सम्मान, मित्रता, उत्कृष्टता जैसे जीवन मूल्य हमारे जीवन में सफलता की नींव रखते हैं। श्रोताओं, सबको साथ लेकर चलने की भावना और वैश्विक सद्भाव मजबूत करते हैं। मनोरंजन के साथ ही स्वास्थ्य जागरूकता, चरित्र निर्माण

समाज की आधारशिला भी होते हैं खेल। श्रोताओं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि खेल केवल शरीर को ही नहीं मन, चरित्र और समाज को भी स्वस्थ बनाते हैं, स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र निर्माण में सहायक होते हैं। महान नेता नेल्सन मंडेला ने कहा था, स्पोर्ट हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, अर्थात खेल में पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति होती है। खेल के मैदान की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा युद्ध की संभावना को भी कम कर देती है श्रोताओं, क्योंकि जहां हथियार हार जाते हैं वहां खेल

0: द वर्ल्ड अर्थात खेल में पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति होती है। खेल के मैदान की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा युद्ध की संभावना को भी कम कर देती है श्रोताओं, क्योंकि जहां हथियार हार जाते हैं वहां खेल दिलों को जोड़ देते हैं। प्रतिस्पर्धा के साथ संवेदना, सफलता के साथ सेवा और उपलब्धियों के साथ उत्तरदायित्व की भावना बढ़ाते हैं ओलंपिक खेल। मगर श्रोता, विश्व आबादी का एक बड़ा भाग खेल गतिविधियों से दूर रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया के लगभग 31% युवा और 80% से ज्यादा किशोर पर्याप्त शारीरिक गतिविधियां नहीं कर सकते। कारण है स्वच्छ पानी, पौष्टिक भोजन और बुनियादी जरूरतों का अभाव, और यहीं पर मानवता हार जाती है, जिस कारण करोड़ों बच्चों की प्रतिभा अभावों तले दब जाती है, गुमनामी के अंधेरे में खो जाती है। क्योंकि कहते हैं ना श्रोताओं, भूखे भजन न होए गोपाला। हम सभी को अपने कर्तव्य निभाने होंगे। एक और एक मिलकर 11 होते हैं, बूंद बूंद से सागर भरता है। सहयोग, बच्चों की पढ़ाई में उनकी प्रतिभा को अवसर देकर, स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाकर हम इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। खेलों में बने रिकॉर्ड तो समय के साथ टूट जाते हैं श्रोताओं, मगर इंसानियत के उदाहरण सदियों तक जीवित रहते हैं। और ओलंपिक का सबसे बड़ा स्वर्ण पदक भी मिलता है मानवता की सेवा में। आज की विविधा में इतना ही। शीला दुर्गापाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी की अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतस्य द्रुतगत्या वर्धमानस्य विश्वसनीय वैश्विक शक्तिरूपेण परिवर्तनस्य प्रेरक शक्तिः राष्ट्रप्रथमस्य सिद्धान्तः एव अस्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। नवदिल्ल्याम् एकेन निज वार्तावाहिन्या आयोजिते सम्मेलने सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् विगत दशके देशस्य उपलब्धयः विश्वासे स्थिरतायां, बृहत्तर वैश्विक कल्याणाय प्रतिबद्धतायां च निहिताः सन्ति।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है, और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: सम्प्रति G7 शिखर सम्मेलने स्वस्य सहभागितायाः उल्लेखं कुर्वन् सः अवदत् यत् राष्ट्रियहितं सर्वोपरि स्थापयितुं भारतस्य अविचल प्रतिबद्धतां वैश्विकनेतारः स्वीकृतवन्तः। सर्वकारस्य 12 वर्षाणां कार्यकालस्य उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् स्वच्छ भारत, मेक इन इण्डिया, खादिप्रचारः, स्थानीय उत्पादानां समर्थनम् इत्यादयः उपक्रमाः सफलाः अभवन्, येन नागरिकाः राष्ट्रनिर्माणस्य भावम् अङ्गीकृतवन्तः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् सद्यः एव केषुचित् वर्षेषु प्रायः 25 कोटिशः जनाः निर्धनवर्गात् बहिः समागताः, येन विशालः नव मध्यमवर्गः उद्भूतः, आर्थिकक्रियाकलापाश्च प्रवर्धिताः। लखनऊनगरे 15 छात्राणां मृत्योः दुःखद अग्निघटनायाः अनन्तरं द्रुतकार्याचरणस्यान्तर्गतम् आरक्षकाः गतरात्रौ 6 जनानां विरुद्धं FIR इति पञ्जीकृतवन्तः, तेषु 4 च निगडिताः। मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य निर्देशानुसारं लखनऊ विकास प्राधिकरणस्य, अग्निशामकविभागस्य, विद्युद्विभागस्य च 4 अधिकारिणः अपि निलम्बिताः अभवन्। लखनऊनगरे अग्निघटनायाः सन्दर्भे अलीगंजनगरस्य आरक्षकैः BNS तथा उत्तरप्रदेश अग्निशामक सेवा अधिनियमस्यान्तर्गतं प्रासंगिकखण्डेषु 6 अभियुक्तानाम् अन्याञ्च उत्तरदायिजनानां विरुद्धं FIR पञ्जीकृतम् अस्ति। यत्र ह्यः दुःखद अग्निप्रकोपः अभवत् तस्मिन् भवने अनधिकृत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी

0: मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों तथा हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 10 बजे खेल दर्पण कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रस्तुति, खिलाड़ी, कोच और रेफरी वंदना सिंह से भेंटवार्ता, 16वीं एशियन जूनियर चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडल विजेता अखिलेश सिंह से भेंटवार्ता, माउंटेन बाइकर भरत शाह से गीता कनवाल की भेंटवार्ता। इस प्रस्तुति के प्रस्तुतकर्ता होंगे संजय जोशी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। देहरादून केंद्र से ही प्रातः 9:10 पर रेडियो पॉडकास्ट श्रृंखला में आज आप सुनेंगे पीपुल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत सुश्री अर्मिडा फर्नांडिस से बातचीत। पीपुल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी पुनः सुनिएगा पूर्वाहन 10:30 पर और 11:10 पर, मध्याह्न 12:10 पर और 1:10 पर, अपराह्न 3:10 पर और 4:10 पर। अब से कुछ ही देर बाद प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान से अगला प्रसंग। 7:50 पर हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा ताइक्वांडो कोच वंदना सिंह से भेंटवार्ता, भेंट करता होंगे संजय जोशी। 8:30 पर होगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। अर्पण कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर आज आप सुनेंगे फिजूल खरीदारी से बचें विषय पर श्रोता बहनों से दीपा जोशी की क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता, साथ ही अल्पसंख्यकों हेतु योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1312वीं कड़ी हम लेकर आएंगे दोपहर 1:30 पर और खेती की बातें कार्यक्रम होगा दोपहर 2:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली विषय पर श्री दिनेश चंद्र मिश्रा से जानकारी। संध्या 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। व्यक्ति विशेष में जानेंगे पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में, साथ ही होगा आज का इतिहास। उत्तरायण कार्यक्रम में संध्या 5:45 पर चर्चा होगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी।

जयंती और स्वस्थ निद्रा चक्र के लिए योग विषय पर। भक्ति संगीत कार्यक्रम का समय रहता है संध्या 6:41। किसान वाणी कार्यक्रम में संध्या 7:00 आज की बातें क्रम में जानेंगे खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण के बारे में, साथ ही सुनिएगा खेती बचाओ अभियान, जैविक खेती के फायदे, इस विषय पर क्षेत्र संकलित बातचीत और चर्चा होगी ड्रोन का कृषि में उपयोग विषय पर। इसी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गोपाल दत्त दानी से भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय रहेगा सरकार के 12 वर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का उपयोग और लाभ उठाकर फसल विविधीकरण के माध्यम से आय अर्जन। कुमाऊनी लोकगीत आप सुनेंगे लोकमंजरी कार्यक्रम में प्रातः 7:30 पर, पूर्वाहन 11:25 पर लोकसुर, दोपहर 2:00 उत्तराखंड के लोकगीतों में और संध्या 5:05 पर शैल स्वर कार्यक्रम में। सुगम संगीत सुनिएगा पूर्वाहन 10:05 पर सबरंग कार्यक्रम में, दोपहर 1:20 पर और रात्रि 8:00 होगा कार्यक्रम सबरंग। फिल्म संगीत हम लेकर आएंगे प्रातः 9:40 पर गीत निर्झर कार्यक्रम में, पूर्वाहन 10:40 पर सुरबहार, 11:00 सैनिकों के लिए, मध्यान्ह 12:00 मेरी पसंद, 2:45 पर एक ही फनकार, अपराहन 3:00 सदाबहार फिल्मी गीत, संध्या 7:00 फिल्म संगीत और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष के तहत, और रात्रि 9:30 पर सुनिएगा गजलों का फरमाइशी कार्यक्रम महफिल, और रात्रि 10:00 होगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से 133वां प्रसंग। गायक है रविंद्र साठे और संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

एक दिन अवध नरेश महाराज दशरथ दर्पण में अपनी छवि देखते हुए राजमुकुट को व्यवस्थित कर रहे थे कि कनपटी पर के बाल सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा ये संदेश दे रहा हो कि हे राजन, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज पद देकर अपने जन्म और जीवन को सार्थक करने का समय आ गया है। महाराज ने अपनी अभिलाषा कुलगुरु वशिष्ठ मुनि को जा सुनाई। उनकी मंगल कामना तथा आनंददायी वाणी सुनकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, हे राजन, आप देर न कीजिए, शीघ्र ही इस मंगल कार्य के लिए आवश्यक प्रबंध कीजिए। श्री राम के अभिषेक के लिए शुभ दिन देखने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। ये संवाद सुनकर मंत्री सुमंत्र तथा राजप्रासाद के सेवकगण ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे को जल मिल गया हो। महाराज का आदेश पाकर मुनिवर वशिष्ठ द्वारा बताई गई सामग्री का प्रबंध किया गया। सभी तीर्थों के जल, औषधि, मूल, फल फूल, चंवर, मृगछाला, नाना प्रकार के वस्त्र, मणियां तथा अन्य वस्तुओं की व्यवस्था की जाने लगी।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान पाठ का 133वां प्रसंग। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों को प्रस्तावित त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल करने की घोषणा की। शिक्षकों के विभिन्न लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए समिति गठित की जाएगी। कर्णप्रयाग विवाद मामले में उत्तराखंड पुलिस ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का आश्वासन दिया। दोनों मुकदमों की विवेचना हरिद्वार जिले को सौंपी गई। कुमाऊं में भूमि धोखाधड़ी के मामले पर सख्ती, 77 मामलों की समीक्षा के बाद 30 मामलों में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश। और देहरादून महायोजना 2041 पर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों के निस्तारण के लिए 6 जुलाई से जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश भर के जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों को शिक्षा विभाग के प्रस्तावित त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल किया जाएगा। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना से वंचित शिक्षकों को लाभ देना तथा अशासकीय विद्यालयों में PTA शिक्षकों की मांग से संबंधित प्रस्ताव भी जल्द मंत्रिमंडल के समक्ष लाया जाएगा। बैठक में DLED प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने और अशासकीय विद्यालयों में मानदेय प्राप्त शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति प्रदान करने सहित अन्य विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इन प्रकरणों के निस्तारण के लिए महानिदेशालय स्तर पर एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। राज्य पुलिस ने कहा कि पिछले दिनों कर्णप्रयाग में सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी तथा न्यायसंगत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गढ़वाल परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक राजीव स्वरूप ने पत्रकारों को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री स्वरूप ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस सभी समुदायों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करती है और प्रत्येक मामले में कानून के अनुरूप निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसंगत कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि थाना कर्णप्रयाग में दर्ज दोनों मुकदमों की निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र विवेचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जांच चमोली जिले से स्थानांतरित कर हरिद्वार जिले को सौंपी गई है।
2: दिनांक 16/6/2026 को जनपद चमोली के कर्णप्रयाग में सिख श्रद्धालुओं एवं स्थानीय व्यक्तियों के मध्य विवाद के पश्चात मारपीट की जो घटना हुई थी, उसमें सिख श्रद्धालुओं के विरुद्ध थाना कर्णप्रयाग में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस मुख्यालय स्तर पर निर्णय लिए गए हैं, जिसमें घटना में घायल सिख श्रद्धालु के पिताजी की शिकायत पर उनके साथ कथित मारपीट करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 20/6/2026 को थाना कर्णप्रयाग में FIR दर्ज की गई है। थाना कर्णप्रयाग पर पंजीकृत उपयुक्त दोनों अभियोगों की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं स्वतंत्र विवेचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विवेचनाएं चमोली जनपद से हरिद्वार जनपद को स्थानांतरित की गई हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा सिख श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय पुलिस के कथित आचरण एवं व्यवहार के आरोपों की जाँच DIG श्री यशवंत सिंह चौहान के सुपुर्द करते हुए उन्हें 2 सप्ताह में आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड पुलिस सभी समुदायों की धार्मिक भावनाओं का पूर्ण सम्मान करती है तथा प्रत्येक प्रकरण में कानून के अनुरूप निष्पक्ष, पारदर्शी, न्याय संगत कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
1: कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने काठगोदाम में लैंड फ्रॉड कमेटी की बैठक की। बैठक में भूमि धोखाधड़ी से जुड़े 77 मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। विभिन्न जिलों से प्राप्त मामलों की जांच के बाद कुमाऊं आयुक्त ने 30 मामलों में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की रिपोर्ट जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से समिति तक पहुँचती है, जिसके बाद प्रत्येक मामले की गंभीरता से समीक्षा की जाती है।
4: मामले अलग अलग जिलों से आए थे, जिसमें हम एक तो रिपोर्ट मांगते हैं तहसील से, डीएम्स के थ्रू वो रिपोर्ट आती है। आजकल हमने पैरेलली एसएसपीज को भी हम रिपोर्ट दे रहे हैं कि वो भी इसको प्रोब कर लें। तो उस सब के बाद जो रिपोर्ट्स आज यहाँ पे आई थी, कुल मिला के 77 मामले ऐसे थे जो हमने रखे थे आज की बैठक के लिए, जिनमें रिपोर्ट मांगी गई, और यहाँ पे जो कमेटी बैठी उन्होंने इसको डिसाइड किया। तो हमने 30 मामलों में पाया कि ये लैंड फ्रॉड के मामले बनते हैं और इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो उसको कमेटी ने आज अप्रूव कर दिया है। इसके बाद ये एफआईआर दर्ज हो जाएंगी और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे चलेगी।
1: श्री रावत ने कहा कि यदि सुनियोजित तरीके से भूमि धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं तो संबंधित लोगों के विरुद्ध संगठित अपराध के तहत भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। एमडीडीए देहरादून महायोजना 2041 पर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों के निस्तारण के लिए 6 जुलाई से 21 जुलाई तक विभिन्न स्थानों पर जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित करेगा। एमडीडीए ने सभी संबंधित नागरिकों से अपील की है कि वे अपने अपने सेक्टर के लिए निर्धारित तिथि और स्थान पर उपस्थित होकर अपने सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत करें। प्राधिकरण का कहना है कि जनभागीदारी से देहरादून की भावी विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी, संतुलित और जनहितकारी बनाने में सहायता मिलेगी। एक रिपोर्ट।
5: महायोजना 2041 देहरादून के सुनियोजित, संतुलित और सतत विकास की आधारशिला है। इसमें आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत, औद्योगिक, हरित क्षेत्र, परिवहन व्यवस्था तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े विभिन्न प्रावधान शामिल किए गए हैं। जन सुनवाई के माध्यम से नागरिकों को देहरादून के भावी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय रखने का अवसर मिलेगा। जन सुनवाई प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों का परीक्षण कर आवश्यकता अनुसार महायोजना में संशोधन और परिमार्जन किया जाएगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से वीरेंद्र दत्त गैरोला।
1: पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में कल कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 19 शिकायतें दर्ज की गयी। जिलाधिकारी ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया, जबकि शेष प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान पेयजल समस्या का मुद्दा उठाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित क्षेत्र का निरीक्षण कर नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने, स्थायी समाधान के लिए कार्य योजना तैयार करने तथा अंतरिम व्यवस्था के तहत टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
6: लगभग 22-23 शिकायतें आई थी और उसमें 3-4 शिकायतें पानी की भी थी, और इसमें लोग आज ही वहाँ पे एक्सएन को भी भेजकर इस प्रॉब्लम का क्या कारण है और कैसे समाधान किया जा सकता है हम लोगों ने बोला है। और इसके अतिरिक्त भी कुछ एकाध गांव की भी इस प्रकार से समस्याएं आई हैं, तो जल संस्थान के जो एक्सएन थे उनके संज्ञान में भी था, तो उसमें कुछ अस्थायी व्यवस्था फिलहाल के लिए कर देंगे और परमानेंट व्यवस्था भी वहाँ पे शीघ्र ही 8-10 दिन के अंदर हम लोग अवश्य सुनिश्चित करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो शेष कुछ श्रीनगर एरिया की रोड आदि की समस्याएं आई थी, तो उसके लिए भी कुछ में नई रोड सैंक्शन के संबंध में थी और कुछ रोड की क्वालिटी को लेकर थी, तो जो सैंक्शन वाली है उसको तो शासन हम लोग भेज देंगे, लेकिन जो रोड क्वालिटी वगैरह से रिलेटेड समस्याएं हैं उसको हम लोग तत्काल सुनिश्चित कराएंगे।
1: और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। लखनऊ के अलीगंज

0: मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर में आग से हुई जनहानि की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से सचित्र प्रकाशित किया है। इस खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है, लखनऊ में आग से 15 छात्रों की मौत। नगरासू गुरुद्वारा प्रकरण में हिंदुस्तान का शीर्षक है, निहंगों ने छत से किया पथराव, पुलिस ने एक दबोचा। नीरिट एग्जाम पर नवोदय टाइम्स लिखता है, बिहार में 9 सॉल्वर पकड़े, कतर में 12 भारतीयों की मौत। इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण लिखता है कि एलएनजी प्लांट में मरम्मत के दौरान अचानक हुआ धमाका। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों को प्रस्तावित त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल करने की घोषणा की। शिक्षकों के विभिन्न लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए समिति गठित की जाएगी। कर्णप्रयाग विवाद मामले में उत्तराखंड पुलिस ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का आश्वासन दिया। दोनों मुकदमों की विवेचना हरिद्वार जिले को सौंपी गई। कुमाऊं में भूमि धोखाधड़ी के मामले पर सख्ती, 77 मामलों की समीक्षा के बाद 30 मामलों में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश। और देहरादून महायोजना 2041 पर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों के निस्तारण के लिए 6 जुलाई से जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रताप सिंह साही के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत।

0: घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
1: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
0: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
1: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
0: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
1: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
0: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
2: आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। आइए सुनते हैं प्रताप सिंह साही के स्वर में ये छपेली।

बुआरी का कमर मजी मोबाइल आरो छो, बुआरी का कमर मजी मोबाइल आरो छो, मडुआ गोलन मजी स्वामी फोन ओ छो, बधुपरी को घाम मजी गल मान रहे, तू ना जाए राति परी जहनी कहे, ये तू ना जाए राति परी जहनी कहे, भेट भेटी जा रहे छो यो बाज गोटन आटन हर पे कह।

कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं प्रताप सिंह साही के स्वर में ये छपेली, ये चांचरी।

0: प्रताप सिंह साही की गाई इस चाचरी के साथ ही कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। हिंदी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ताइक्वांडो कोच वंदना सिंह से भेंटवार्ता। भेंट करता है संजय जोशी।
1: श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं वंदना सिंह, जो कि सेकंड एंड ब्लैक बेल्ट हैं ताइक्वांडो में और स्थानीय स्टेडियम अल्मोड़ा में ताइक्वांडो की कोच हैं, साथ ही आप एक नेशनल रेफरी भी हैं। और जहां तक उपलब्धियों का सवाल है, तो हाल ही में आयोजित 13वीं ओपन नेशनल चैंपियनशिप ताइक्वांडो की, जो कि हल्द्वानी में आयोजित हुई थी, वहां पे आपके जो 15 बच्चों को आपने जिनको कोचिंग किया था, उसमें से 8 बच्चे मेडल लेकर के आए। तो वंदना जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आप स्वयं एक खिलाड़ी भी रही हैं
2: जी, जी।
1: और एक खिलाड़ी के बाद एक कोच का सफर
2: जी
1: मैं बात करना चाहूंगा, तो पहले कोचिंग, क्योंकि बच्चे आपके कोचिंग लेकर के आए हैं, खिलाड़ी से कोच तक का क्या सफर रहा आपका?
2: खेलना मेरा मतलब पैशन था, मैं भी चाहती थी कि मैं ओलंपिक तक खेलूं। मैंने 2018 में लास्ट इवेंट खेला था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेली थी मैंने, जिसमें मेरा मेडल रहा था। और उसके बाद जो है मैंने जो कोचिंग है वो अब 2022 में मैं जो है स्टेडियम अल्मोड़ा स्टेडियम में लग चुकी थी। 2022 से मैंने अपने बच्चों को ट्रेन करना शुरू करा, आज करीब उनको 3 साल हो चुके हैं। तो ये उन लोग मेरे बच्चों के लिए पहला नेशनल था, बहुत अच्छा इन्होंने रिजल्ट दिया। मेरे 15 बच्चे गए थे, जिसमें से मेरे 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज रहे उसमें। बहुत ट्रेन अभी उनको करना है मैंने।
1: एज ए खिलाड़ी से जब आप कोच बनी,

0: तो कोचिंग के लिए क्या क्या परेशानी आपको शुरू में फेस करनी पड़ी अल्मोड़ा में?
1: पहले जो है मैंने प्राइवेट यहाँ पे खोलने की सोची थी जो कि सक्सेस नहीं हो पाया। फिर मैंने अपनी एप्लीकेशन यहाँ स्टेडियम में दी जिससे मैं यहाँ पे नियुक्त हुई और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। हमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फैसिलिटी हमें सब देती है, हमें बच्चों के लिए मैट प्रोवाइड करेगी, जो हमारी मैटें होती हैं वो करीब 1-1.5 लाख रुपये की भी मिलती है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। बस हमें ट्रेन कराना पड़ा थोड़ा बच्चों का पढ़ाई से और पेरेंट्स को हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है इसके लिए कि आप बच्चों को खेलने के लिए डालिए। जरूरी नहीं है उसका बच्चा जो है उन मेडल ही जीते, वही उसका एक अचीवमेंट है। बच्चा फिट रह रहा है, कोई गलत रास्ते में नहीं पड़ रहा है, ये भी एक कोच को देखना पड़ता है। सिर्फ हमारा मकसद बच्चों को मेडल लाके देना यही जरूरी नहीं है।
0: वैसे तो कहें कि ताइक्वांडो जो है आत्मरक्षा के लिए बहुत अच्छा स्पोर्ट्स माना जाता है और खासकर बालिकाओं को अगर हम देखा जाए तो महिला इस स्पोर्ट्स को ज़्यादा सीखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी अल्मोड़ा में अधिकतर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कई एकेडमीज भी हैं जो कि बच्चों को ट्रेन कर रही हैं। आप के अंडर में जो बच्चे हैं इस वक्त तो उनको कितना टैलेंटेड आप देखती हैं?
1: अब मैं सच बताऊँगी आपको, अभी जो मेरे पास स्ट्रेंथ है उसमें मेरे पास गर्ल्स की ही स्ट्रेंथ ज़्यादा है और अभी जो 15 बच्चे जो खेलने गए थे उसमें जो मेडल है वो सारी गर्ल्स हैं। जो हमारा गेम है एकदम उसमें ऐसा होता है कि जितना बच्चा छोटे से स्टार्ट करता है वो उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा। कोई एक बड़ा बच्चा आके यानी कि 15-16 ईयर्स का आके मुश्किल है कि वो एकदम उसकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल रहे, वो उसको गेम को कर सके। तो छोटे से बच्चा जो है हमारे पास शुरू करता है और गर्ल्स उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। गर्ल्स हम ऐसा नहीं करते, फाइट जब प्रैक्टिस होती है तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की हम कराते हैं तो गर्ल्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इसके इसमें खेलने के लिए और अपना आत्मरक्षा के लिए तो ये है ही अच्छी चीज़।
0: आजकल के माँ बाप चाहते भी कि उनके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अच्छा करें।
1: बिल्कुल।
0: और खासकर मैं देखता हूँ कि हमारे शहर में ताइक्वांडो का बहुत प्रचलन है, छोटे छोटे बच्चे मुझे जाते हुए देखते हैं, शाम को देखा है अपने कॉलेज स्कूल के बाद 3-4 बजे के बाद अक्सर एकेडमीज की तरफ जाते हुए देख सकते हैं हम लोग। तो स्टेडियम में क्या रूटीन रहता है बच्चों को सिखाने का?
1: 2 घंटा हमें सुबह दिया जाता है बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए, लेकिन थोड़ा बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम आ जाती है। आजकल जो आप देख रहे हैं कि समर टाइम चल रहा है तो बच्चों की स्कूल्स हैं वो 6:30 से उनके स्कूल्स बसें ये आ जाती है। मैं आप चाहती हूँ कि बच्चों को मैं पूरा टाइम दे दूँ, तो अगर वो मॉर्निंग में नहीं आ पाते मैं उन्हें इवनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देती हूँ और प्लस संडे को मैं उन्हें मॉर्निंग में बुला के उनको प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो हमारा जो रूटीन रहता है वैसे वो मॉर्निंग में 2 आवर्स और इवनिंग में 3 आवर्स हम बच्चों को देते हैं।
0: जी शुरू में माँ बाप बच्चों को लेकर के आपके पास आएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं, माँ बाप को क्या समझाती हैं जो उनको ट्रेनिंग देने के लिए वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को आप ताइक्वांडो सिखाएं?
1: सबकी मेंटेलिटी अलग अलग तरीके की होती है, तो कुछ तो चाहते हैं कि बच्चे हमारा फिट रहें, थोड़ा हमारे बच्चे फोन से दूर रहें तो वो कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो अच्छा है। कुछ बच्चों को जल्दी रहती है कि वो देखते हैं और बच्चों को जो सीनियर जिनको 1 साल हो चुका है 2 साल हो चुका है वो इतना अच्छा कर रहे हैं तो वो सोचते हैं कि वो उसको वो एकदम उस चीज को कैच कर ले और कर ले। अब ये होता है बच्चों को समय लगता है किसी भी चीज को, हमें बेसिक से उसको ले जाना एडवांस तक ले जाने में टाइम लगता है। और रही बात कुछ बच्चों के टैलेंट की और उनकी बॉडी फिक्सचर की, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमें ऐसे मिल जाते हैं जिसको हम थोड़ा कराते हैं, उनकी बॉडी इतनी हमें सपोर्ट करती है बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं।
0: साल पर साल अब एडमिशन नए होते ही होंगे।
1: जी।
0: तो कितने बच्चों की एक स्ट्रेंथ आपके पास रहती है?
1: एक्चुअली मेरे पास 50 प्लस तो हो ही जाते हैं बच्चे, लेकिन उसमें से बस यही होता है कि स्टार्टिंग में तो सब बच्चा आ जाता है लेकिन उस प्रैक्टिस को हर कोई झेल नहीं पाता तो कुछ बच्चे उसमें या तो बोर हो जाते हैं या उनके हाथ पैरों में दर्द इस तरीके की कोई चीज़ें आती है, फिर कुछ बच्चे जो है उसमें से छोड़ भी देते हैं। तो हमारे पास एटलीस्ट 30-35 चिल्ड्रंस जो है हमारे पास कंटिन्यू रहते हैं जो कि आज मेरे पास 3 साल से लगातार है।
0: मतलब 30-35 बच्चों को आप आराम से एट ए टाइम कोचिंग दे सकते हो? आप को असिस्ट भी करते हैं कि अकेले ही आप?
1: मैं अकेले ही सब कर लेती हूँ, बाकी जो हमारे सीनियर्स बच्चे हो चुके हैं वो इतने हेल्प कर लेते हैं अब तो सब एडजस्ट हो जाता है।
0: जी अब बच्चे आपके पास कोचिंग करने आ रहे हैं, अब उनका एक डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि स्पोर्ट्स खेलते हैं तो कुछ ना कुछ डाइट होगी, तो माँ बाप को भी आप बताते होंगे कि किस तरह की डाइट आपके बच्चों को देनी है। जैसे अब मैं शुरू करूँ कि आपके पास 7 या 8 साल के बच्चे से शुरुआत आप करते हैं?
1: 5 साल।
0: 5 साल से जी। तो आप ही मान के जी, तो सबके लिए डाइट प्लान भी एक अलग अलग रहता होगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आजकल यही समझाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उनको बाहर की चीज़ों के लिए आप अवॉइड करवाइए, जो भी आजकल बाहर चूस चॉकलेट चिप्स वगैरह बच्चे खाते, पहले तो इसे ही आप मत दीजिए, यही बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद जो डाइट है, तो मैं ये कहूँगी कि उसमें बच्चों को एग वगैरह इस टाइप की चीज़ें उसमें आप उसको

0: प्लस करिया करिए। हमारे अभी बच्चे, कुछ बच्चे मेरे सर अभी हाल ही में रीजनल खेलने जाने वाले हैं 21 को, केवी के बच्चे। पिछले बार भी उसमें बच्चा, मेरा एक बच्चा नेशनल जाके आया है, तो उसमें यही है कि कुछ बच्चों को 2 किलो वेट कम करना है, तो उनको हमें डाइट बतानी पड़ती है कि आप 2 किलो जो है एट अ टाइम आप एक दिन में नहीं कर सकते, आप वो कंटिन्यू मेरे पास प्रैक्टिस में है, उसको क्या डाइट खानी है मॉर्निंग में, क्या नहीं खाना है, तो ये चीज़ें हमने उनके पेरेंट्स को सब बताई हुई है।
1: ट्रेनिंग की बात आती है, तो किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर आप देती हैं?
0: मैं हूँ क्योर्गी। हमारे अब जो टाइक्वांडो है ना, वो 2 इवेंट में डिवाइड हो चुका है, एक होता है क्योर्गी, एक होता है पुमसे। तो एक्चुअली मैंने ही क्योर्गी ही खेला है, तो मैं क्योर्गी ही उनको खिलाती हूँ। क्योर्गी मीन्स होता है फाइट
1: जी।
0: तो फाइट के लिए हमें ज़रूरी है किक और पंच का आना। तो स्टार्टिंग में बेसिक उनका यही रहता है कि मैं उनको कैसे भी करके उनकी किक इम्प्रूव करूं, जिसमें हमें पहले उनको एयर प्रैक्टिस देनी पड़ती है, उसके बाद उनको हमने किक पैड में प्रैक्टिस करवानी होती है। जब बच्चे इस तरीके के सीख जाते हैं, फुटवर्क सीख जाते हैं, पंच करना सीख जाते हैं, गार्ड करना सीख जाते हैं, उसके बाद उनका नेक्स्ट लेवल आता है फाइट, यानी कि स्पारिंग। तो उसके बाद उन्हें फाइट प्रैक्टिस दी जाती है। जब फाइट प्रैक्टिस में कहाँ उनको मारना है, कहाँ कितना स्कोर मिलेगा, जैसे ट्रंक में मारते हैं तो कितना स्कोर मिलेगा, फेस में मारते हैं कितना स्कोर मिलेगा, ये तरीके की उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चा जब वहाँ फाइट खेलना शुरू करता है, फिर उसके बाद वही उसकी वो किस तरीके से अपने को गार्ड करें, कैसे खेलें, अपने स्कोर कैसे बचाएं और स्कोर कैसे निकालें, ये चीज़ें बताई जाती है।
1: क्योंकि अब नेशनल्स में आपने बच्चों को खिलाना है, तो ऑब्वियसली उनको कुछ एक्सपोजर की जरूरत पड़ती है, कुछ इससे, तो कुछ टूर्नामेंट भी उनको लोकल में भी खेलने पड़ते होंगे
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: इस तरह की सुविधा यहाँ पर है।
0: जी जी, टूर्नामेंट्स की हमारी पूरी सुविधा है यहाँ पे, हम लोग कराते रहते हैं। हमारे स्टेडियम में भी एक साल में करीब 2 या 3 टूर्नामेंट हम स्टेडियम में ही कराते हैं, और बाकी जैसे आपने बताया कि अभी एकेडमीज है हमारी यहाँ पे, तो हम कभी इंटर यूनिवर्सिटी, कभी इस तरीके की हम लोग टूर्नामेंट्स कराते रहते हैं। इसी साल सर जुलाई में हम भी एक टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं कर्नाटक खुला में।
1: आपके जो बच्चे 8 जो मेडलिस्ट निकले अभी 13th ओपन नेशनल चैंपियनशिप में, तो उनमें कौन कौन से बच्चे में आप प्रतिभा देखती हैं कि आगे तक जाएंगे और हमारे देश को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं?
0: भूमिका जोशी उसमें लड़की का नाम था, सब जूनियर की है, वो करीब 10 या 11 साल की बच्ची है। उसके फादर जो है आर्मी में है, और मतलब वो बहुत अच्छा, उसके अंदर टैलेंट दिखता है मुझे कि वो बहुत अच्छा कर रही है, और वो मतलब उसके अंदर है कि वो बॉयज़, जब मैं उसको यहाँ फाइट प्रैक्टिस बॉयज़ के साथ कराती हूँ, तो वो बॉयज़ को भी मतलब उसमें ईजिली हरा देती है, तो एक उसके अंदर मुझे टैलेंट दिखता है। मेरे जो है फ्रेशर्स भी गए हुए थे, बहुत अच्छा खेलते हैं वो लोग भी, नित्या हो गई, वैष्णवी हो गई, ये जो 3 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बॉयज भी हमारे बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा अभी मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है। मुझे ऐसा लगा कि उनकी प्रैक्टिस 100% थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एरेना में घुसने से पहले ही बच्चा जो है कॉन्फिडेंस अपना खो देता है, मुझे वहां उन लोगों की बहुत कमी लगी। तो जो है अब मैं उन्हें कोचिंग में, मुझे उनको कॉन्फिडेंस की दिलाने की अब मुझे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी।
1: आजकल तो जमाना कंडीशनिंग कोचेस का भी है, मेंटल कंडीशनिंग कोचेस का भी है, सब एक ही कोच की,
0: सब एक ही कोच की जिम्मेदारी है।
1: टूर्नामेंट से पहले जब बच्चा आप जाता रिंग पे उतरता है, तो आप क्या बताती है उनको, क्या कुछ करना होता है?
0: पहले तो हम यही मोटिवेट कराते हैं, आपके सामने खेलने आ रहा है, वो भी आप ही की तरह है, वो भी आप ही की तरह ट्रेनिंग करता है, उसके भी 2 हाथ 2 पैर हैं। हमारे बच्चों में पता नहीं, पहाड़ के बच्चों में मुझे लगता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो जो बच्चा खेलने से पहले डर जाता है, तो हमें उन्हें मोटिवेट बहुत उनको करवाना पड़ता है कि आप डरिए नहीं, आप अपना, मैं बच्चों से ये भी नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ मेडल की चिंता करिए, मैं ये चाहती हूँ आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। हार जीत तो लगी रहती है, कोई इतनी वो इशू नहीं है, लेकिन आप अपना गेम तो बेस्ट दीजिए, आप अपना जो प्रैक्टिस में इतना अच्छा फाइट करते हैं, आप वहां जाके उसका 50% भी नहीं दे पाते, तो इस चीज के लिए मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है कि आप अपना गेम बेस्ट कर दीजिए। और खाने से पहले आपने क्या चीज खानी चाहिए, बच्चे जो होते हैं खाने से पहले डर के मारे कुछ खाते नहीं है, हमारे उसमें जो होता है ना सुबह से, सुबह 8 बजे से जैसे शुरू हो जाता है, तो बच्चे की कभी कभी रात को 8 बजे फाइट आती है, तो बच्चा जो है उतनी देर तक अपनी एनर्जी को लॉस कर लेता है, और वो डर के मारे अभी खाता नहीं है कि अभी क्या पता मेरा नाम कुछ देर में आ जाएगा इस तरीके से, तो उसकी एनर्जी सुबह से शाम तक तो ऐसे ही लो हो जाती है। तो इस चीज के लिए भी हमें बोलना पड़ता है कि आपको खाना है तो जबरदस्ती आप खाइए उस चीज को।
1: तो वेट तो पहले ही हो जाते होंगे?
0: नहीं, वेट एक दिन
1: तो
0: पहले,
1: फिर घबराने कोई बात नहीं है। नहीं, नहीं। अगर आप बच्चा बीच में देख रहा है कि 4-5-6 घंटे वो खाली है, तो उस दौरान उसको भोजन तो कराने
0: की, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज की मुझे अभी फर्स्ट डे यहाँ देखा मैंने, बच्चे ये नहीं खा रहे थे, सेकंड डे में पेरेंट्स भी वहां पे आए हुए थे, तो मैंने उन लोगों से यही कहा बच्चों ने कल जो है जो मिस्टेक करी थी वो आज नहीं होनी चाहिए, आज इनके लिए बनाना जूस, ग्लूकॉन डी जो है, इलेक्ट्रॉल्स वगैरह, ये चीजें जो है आप रेडी रखिए और इनको देते रहिए आप थोड़ी थोड़ी देर में।
1: टूर्नामेंट के दौरान जब आप टूर्नामेंट खेलने बच्चे जा रहे होते हैं, तो उस दौरान की डाइट का क्या रहता है?
0: सबसे पहले तो हमें वेट, एक दिन पहले ही वेट हमें देना पड़ता है बच्चों का। कुछ बच्चों

ने वेट घटाना होता है, कुछ बच्चों ने वेट बढ़ाना होता है। तो जिन्होंने घटाना होता है तो उनकी तो हम खैर एक दिन के लिए हम थोड़ा डाइट उनकी बंद ही कर देते हैं, उसके बाद जो है उनको फुल जो है एनर्जी लेवल जिसमें उनकी एनर्जी गेन हो जाए तो हम उनको वो सारी चीज़ें खाने के लिए बोलते हैं। और जिनको वेट बढ़ाना होता है तो वो लोग अपनी इस तरीके की बनाना और इस टाइप की चीज़ें खा लेते हैं। ये तो हो गया विंग से पहले की बात, अब आ जाती है फाइट से। तो उसमें हम उसमें लाइट जो है आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह या ब्रेड वगैरह या बनाना सबसे बेस्ट है आप वो ले सकते हैं। जिस बच्ची की फाइट आ गई तो उसके बाद वो तो उस नहीं खाएगा दिन का अगर उसका है, या फिर बिल्कुल हल्की डाइट लेगा नॉर्मल, आप इलेक्ट्रोल पी सकते हैं उसमें, इस टाइप की हम उनकी चीज़ें बोलते हैं। स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हैं बच्चे, लेकिन ऐसा होता है ना हम कहीं बाहर दूर गए तो हमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं रहती है। अभी जैसे हम ग्वालापार गए थे, यहाँ कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा था जो बच्चे होटल में रुके थे इस टाइप की चीज़ें। और जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रुके थे तो हमने उनको यही बोला कि आप अपना लंच जो है आप अपना लेके आइएगा, इस तरीके की चीज़ें।

0: पी सकते हैं उसमें, इस टाइप की हम उनकी चीज़ें बोलते हैं। स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हैं बच्चे, लेकिन ऐसा होता है ना हम कहीं बाहर दूर गए तो हमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं रहती है। अभी जैसे हम गोलापार गए थे, यहाँ कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा था, जो बच्चे होटल में रुके थे इस टाइप की चीज़ें, और जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रुके थे तो हमने उनको यही बोला कि आप अपना लंच जो है आप अपना लेके आइएगा, इस तरीके की चीज़ें। तो बहुत सी चीज़ों का हमें प्रॉब्लम्स जो है मैं फेस करनी पड़ जाती है
1: जी। साथ ही साथ आप एक नेशनल रेफरी भी हैं, अब आप मैं चाहूँगा कि बताएं कि कैसे आपका सफ़र एक खिलाड़ी से कोच, कोच से रेफरी की तरफ गया।
0: खेलते खेलते ही नेशनल रेफरी जो है हमारा कोर्स होता है, इसका सेमिनार अटेंड किया था। फर्स्ट टाइम मैंने लखनऊ में ही इसका सेमिनार जो है अपना अटेंड किया था रेफरीशिप का। हालांकि मैं उस टाइम थोड़ा सा घबराती भी थी सीनियर्स की बॉयज़ की फ़ाइट में, अगर आप सेंटर रेफरी हैं तो आपका जजमेंट और आपकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी फास्ट होनी चाहिए, नहीं तो एक रेफरी जो हमारा गेम है
1: जी।
0: हमारी एक छोटी सी मिस्टेक से किसी की जान जा सकती है। अगर हमें लगा कि कहीं पे एक बंदा शार्प खेल रहा है, दूसरा लूज कर रहा है, या हमने अगर धीरे बोला, उसको सुनाई नहीं दिया, दूसरे ने उसे उतनी देर में किक कर दिया कहीं भी, तो इसका बहुत ज़्यादा मतलब एक बच्चे की जान जा सकती है। तो इसलिए इसको रेफरी को बहुत मतलब मैं भी डर रही थी इसमें स्टार्टिंग में। तो धीरे धीरे हमारे जो सीनियर सर थे इसमें, एटी राजीव सर हैं बैंगलोर से, वो इंटरनेशनल रेफरी है जो हमारा करवाते हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिलाया, उनको लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो उन्होंने मोटिवेट किया। तो मैंने फर्स्ट सेमिनार तो वहीं पर अटेंड किया, उसके बाद मैं मणिपुर हो गया, उड़ीसा हो गया, सब जूनियर इवेंट में नेशनल रेफरी के रूप में मैंने वहां पे अपना दिया। लास्ट ईयर हमारे हल्द्वानी में ही दोबारा से ये सेमिनार हुआ, क्योंकि अपडेट होना जरूरी रहता है, हमारे रूल्स चेंज हो जाते हैं बीच बीच में, तो हमें भी अपडेट होना पड़ता है उस सब चीज़ों के लिए। 2018 से पहले जो है करीब 3-4 जगह मैं नेशनल रेफरीशिप कर चुकी हूँ।
1: आपको क्या लगा कि जब आपने एज ए खिलाड़ी के बाद रेफरी अरेना चुना था तो कितना मतलब कठिन जैसा लगा था कि आपको लगा कि बहुत इजी?
0: मैं कहूँगी कि सबसे अच्छा मुझे सिर्फ खेलना पसंद है, मुझे खेलना ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब रेफरीशिप करी तो उसमें एक जगह बैठे रहो, आप ना इधर देख सकते हो ना आप उधर देख सकते हो, तो आपको बिल्कुल किसी की आप एक स्कोर से आप कोई बच्चा हार सकता है जीत सकता है, मतलब बहुत वो है, तो आपको बहुत उसमें फोकस करना पड़ता है और बिल्कुल आप बंधे रहते हैं। रेफरी का अच्छा है लेकिन एज अ प्लेयर मैं कहूँगी कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है।
1: तो आने वाला समय आप उत्तराखंड के लिए ताइक्वांडो में कैसा देखती हैं, कोच होने के नाते मैं जानना चाहूँगा
0: कि हमारा जो अल्मोड़ा है वो पहले से ही शुरू से ही ताइक्वांडो में काफ़ी अच्छा रहा है। आपने सुना होगा 2004 में हमारे सुरेन भंडारी दादा सर हैं जो काफ़ी सीनियर हैं, वो भूषान से एशियन गेम्स में मेडल लेके आए थे, तो वहीं से हमारा जो है ताइक्वांडो जो है अल्मोड़ा में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। और काफ़ी टाइम बाद हमारा फिर उसके बाद रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हो गया था, हालांकि दौराहाट में भी हमारी यहाँ पे चलती है, उनके भी काफ़ी सर हैं हमारे विजय बहादुर सर, उनके भी बच्चे काफ़ी अच्छा करते हैं, अच्छा रिजल्ट है, हर जगह जॉब में भी निकलते हैं, अच्छा रहा है। और मैं चाहूँगी कि ऐसे ही जैसे सुरेन भंडारी सर ने अपना हमारे अल्मोड़ा का नाम इतना रोशन किया, ऐसे ही हमारे बच्चे जो हैं आगे नाम रोशन करते रहें, यहाँ से भी हमारे बच्चे निकले अल्मोड़ा का नाम रोशन करें।
1: तो हम ये कहेंगे कि आप इसको एक व्यवसाय के रूप में भी चुन सकते हैं, आपका कैरियर भी इसमें बन सकता है, एज आप अगर शौकिया खेलते भी हैं खेल खेल से भी आप आगे भी जा सकते हैं, और महिलाओं के लिए तो खासकर बहुत अच्छा है मैं कहूँगा। तो क्या कहना चाहेंगी आप हमारी बच्चियों से कि वो इस खेल को कितना अपनाएं?
0: ये मत देखिए कि आप देश के लिए मेडल ला रहे हैं, हमारे पास आते बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन बनता कोई एक ही है, तो हम उनको एक अच्छी दिशा में एक अच्छा नागरिक बना रहे हैं। जो बच्चे बड़े होते हैं आजकल गलत संगत में जा रहे हैं, नशे की तरफ को जा रहे हैं, तो बच्चे का एक फोकस रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ करनी है, मैं फिट, मुझे फिट रहना है, मुझे ये ऐसी चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, मुझे नेशनल में मेडल लाना है, तो बच्चा जो है उधर ही की ओर अग्रसित होगा, उसका ध्यान जो है भटकेगा नहीं। और दूसरी तरफ रही बात गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए जैसा आपने बताया, बच्चा जब यहाँ से स्कूलिंग में पूरा अगर अपना टाइम यहाँ सीखता है, कल के दिन में वो ताइक्वांडो की लाइन में नहीं जाके अपना कोई और कोर्स करने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है, तो गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छा है कि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस वो रहेगी कि हाँ मुझे ताइक्वांडो आता है, मैं इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं अपना बचाव खुद कर सकती हूँ। बच्चा खेले, 12th तक ही खेले, अगर जिसको फिर उसके बाद उसको कोई और लाइन पकड़नी है तो वो कर सकता है।
1: तो वंदना जी आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
2: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ताइक्वांडो कोच श्रीमती वंदना सिंह से भेंटवार्ता, भेंट करता थे संजय जोशी। FM 100.8

0: 8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं, माफ़ कीजिएगा, सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है, हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं

0: के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे चार भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जल डमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन 3:00 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई। जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6ठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SI

0: कमेटी गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अलंकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले G7 से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
2: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognize India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said, initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है, उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
2: मिस्टर मोदी सेड Nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
3: 25 crore log garibi se bahar nikle hain, new middle class mein aaye hain, to iska fayda keval

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी डॉक्टर पूनम जोशी का सितार पर बजाया राग अहीर भैरव। आपके साथ तबला संगत करता है तरुण राय।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी डॉक्टर पूनम जोशी का सितार पर बजाया राग अहीर भैरव। आपके साथ तबला संगत करता थे तरुण रॉय। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक निजी सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा

0: में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थानों के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जलडमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाड़ा बंदरगाह, ओडिशा के पारादीप बंदरगाह और गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह की ओर बढ़ रहे हैं। दोहा में भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा में भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता की जा रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही फ्रांस के नॉकआउट चरण में पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 होने वाले हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सवेरे के 9 बजे
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:40 हुए हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर।

बेहद स्वागत आप सभी का आज के गीत निर्झर कार्यक्रम में। आप सभी को शीला दुर्गापाल का नमस्कार। श्रोताओं, आज हिंदी सिनेमा के दिग्गज अदाकार रहमान साहब की जयंती है। उनके लिए कहा जाता है कि वो अपनी आंखों से अभिनय किया करते थे। उन्होंने 1940 से 70 के दशक में कई बड़ी फिल्मों में काम किया। कार्यक्रम का पहला गीत हमने समर्पित किया है रहमान साहब को। रेत भरी है इन आँखों में, आंसू से तुम धो लेना। रेत भरी है इन आँखों में, आंसू से तुम धो लेना। कोई सूखा पेड़ मिले तो उससे लिपट के रो लेना। उसके बाद बहुत तन्हा हो जैसे जंगल का रास्ता, जो भी तुमसे प्यार से बोले साथ उसी के हो लेना।

निर्झर कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था वक्त फिल्म से, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार

गीत निर्झर कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था वक्त फिल्म से, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार

ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम कुसुम नेताम पोनिका प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार योगेश मालाकार सुनीता मालाकार मुस्कान मालाकार जितेंद्र मालाकार और छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की। तो लीजिए पेश है आप सबकी फरमाइश पर निकाह फिल्म का ये गीत।

सुनना चाहा है महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे, गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है हीरा पन्ना फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है एमएलटी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटे, एसकेपी खुराना की। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल और नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्म देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी की। तो लीजिए पेश है आप सबकी फरमाइश पर हीरा पन्ना फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए हीरा पन्ना फिल्म के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाह्न के 10 बजने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचा का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कल हुई इस बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्य

0: कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुँच बढ़ाएगा। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जल डमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाड़ा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। फीफा विश्व कप 2026 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। इसके साथ ही फ्रांस के नॉकआउट चरण में पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सब रंग। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं भूपेन हजारिका की गाया ये गीत। इस गीत की रचना की है गुलजार ने।

0: बिना ISI के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
1: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान ISI का ही है।
0: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
1: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
0: झगड़ा मिटाएं, विश्वास जगाएं।
2: जागो ग्राहक जागो।
3: सुगम संगीत का कार्यक्रम सब रंग इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। आइए सुनते हैं दाग देहलवी का कलाम। फनकार हैं गुलाम अली।

गुलाम अली की गाई इस गज़ल के बाद आइए सुनते हैं गुलजार का लिखा गीत, आवाज़ है भूपेंद्र हजारिका की।

चंदन दास के गाए इब्राहिम अश्क के कलाम के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

को है। और अब आप सुनेंगे पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिली किया जा रहा है।

0: जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं पीतल पर नक्काशी के विशिष्ट कलाकार चिरंजी लाल यादव के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं संजय तिवारी।
1: सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: धन्यवाद जी।
1: जब आपको ये पता चला कि आपको चयनित किया गया है, कैसा लगा आपको उस टाइम?
2: मैं मुरादाबाद बुद्ध विहार कॉलोनी में एक प्रोग्राम लगा था, तो उसमें था। वहाँ पर जो है हमारे डीआरसी ऑफिस के योगेश कुमार जी थे उपायुक्त, और डीएम साहब थे, कमिश्नर साहब थे आनंद सिंह। उन्होंने बताया कि भाई वो घोषणा हो गई है, तो वो जो है हटाफट दौड़े दौड़े आए वो। उन्होंने सबसे पहले डीएम साहब ने और कमिश्नर साहब ने बधाई दी।
1: आपने ऐसा क्या किया है, आपके काम की क्या खासियत है, क्या काम करते हैं आप, इसके बारे में डिटेल से बताइए।
2: सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 1970 से बराबर काम कर रहा हूँ। बीच में बहुत कठिनाई, काम नहीं छोड़ा मैंने इस काम को देखते हुए। और जो मैंने बच्चों को ट्रेनिंग दी है, तो बोले कि भाई ये इनको जो है इनाम वनाम मिले हुए हैं पहले से ही, तो सब कुछ देख कर जो है उन्होंने ऐसा किया। ये
1: क्या क्या काम करते हैं आप, कैसी नक्काशी करते हैं?
2: जब हम 20-22 साल की उम्र में थे पढ़ाई करने के बाद, तो हम श्री अमर सिंह जी से हमने काम सीखा। ये काम सीखने के उपरांत तो वहाँ जो है 3 साल की ट्रेनिंग चली थी सरकारी, तो उसमें जो है हमने ट्रेनिंग पाई, तो 2 रुपये महीना भी हमें मिलता था और काम भी सिखाते थे वो। इसके उपरांत तो जो है हम 4-5 साल तक वो काम किया,

0: उच्च कोटि के हमने काम सीखे जो कि आज हमारे जो है जीवन में काम आ रहे हैं वो। और हमने मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है।
1: जी
0: तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है, इसलिए जो है सुबह को 4-5 घंटे या 3 घंटे काम किया जाता है। हमारी संगत जो रही वो ऐसी रही कि अपने ही मतलब सीनियर के साथ रहना, उनसे जानकारी लेना, उनके पास बैठना उठना, औजारों का भी हमें ज्ञान मिला।
1: काम के सिलसिले में आप पूरे देश में भी गए हैं और शीशों में भी गए हैं, तो वहां से क्या सीख मिली और क्या लेकर आए, क्या देकर आए वहां?
0: दिल्ली में गए थे, दिल्ली में जो है हमने बहुत प्रोग्राम किए हैं, कुतुब मीनार है, लाल किला है, तो वहां से हमें जानकारी मिली डिजाइनों की, और डिजाइन सेंटर भी घूमे हम वहां पर, डिजाइन लेके वो ही आइटम पर जो है उकेरा तो उन्हें आइडियन माना गया, तो हम जो है घूमते घूमते जो है ऑल इंडिया में पूरे घूम लिए, अपने काम का प्रदर्शन भी किया। और राजस्थान के हैं, और बेंगलोर में चित्रकला परिषद है, चित्रकला परिषद में जो है वहाँ पर हमने जो है पुरानी इमारतों का भी डिजाइन दिया, कैसे कैसे मतलब ये टहनी बनती है, कैसे डिजाइन बनते हैं, जो झालर वहाँ बन हुई है वही झालर हमने अपने आइटम पर बनाई है, तो उससे जो है नयापन आया।
1: विदेशों में कहाँ कहाँ आप गए, क्या क्या किया आपने?
0: विदेशों में हम बांग्लादेश गए, फ्रैंकफुर्ट जर्मन सिल्वर जर्मनी
1: जी,
0: तो वहाँ पर अपने काम का हमने डेमो किया, प्रदर्शन किया और बिक्री भी की।
1: तो अब जो है मौजूदा सरकार से, विशेष रूप से केंद्र सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
0: केंद्र सरकार सही काम कर रही है, बढ़ावा दे रही है या शिल्पियों को, इसके अलावा हम तो यही चाहेंगे सरकार जो है किसी तरह की ऐसी योजना बनाए जिससे कि ये लड़के नई पीढ़ी के बच्चे जो है काम सीखें।
1: आप क्या चाहते हैं कि नई पीढ़ी इस काम के लिए आगे आए?
0: हम तो चाहते हैं कि भाई कम से कम 30-40 बच्चों को ट्रेनिंग दें, तो उसमें से अगर 10 भी कामयाब हो गए तो काम बढ़ेगा।
1: आपने अपने घर में बच्चों को कितना ये हुनर जो है बांटा है, सिखाया है?
0: वैसे तो हमारी फैमिली में सभी लोग काम करते थे, हमारी वाइफ भी करती थी, हमारे दो बेटे हैं ये भी करते, कुप सिंह जी है, इनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, स्टेट अवार्ड मिला हुआ है, ये काम कर रहे हैं और हमारा भी हाथ बटाते हैं।
1: इस काम को लेकर भविष्य कैसा दिखता आपको?
0: हाँ, भविष्य सही है, क्योंकि हमारा जो काम है वो साधारण काम नहीं है, हमारा उच्च कोटि का काम है, इसके कारीगर बहुत ही कम है।
1: तो आप चाहते हैं कि आप जैसे जो आपकी विशेषता है वो और नई पीढ़ी पे भी आए और लोग बताए?
0: हाँ, हम तो चाहते हैं कि कोई ना कोई भी हमारी मृत्यु के बाद जो है कम से कम नाम तो रहे कि भाई हमें जो है वहां से जानकारी मिली है, प्राप्त हुआ है, उनके शागिर्द हैं, काम सीखे कोई ना कोई लड़का, तो हम बता सकते हैं।
1: सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो कुछ ऐसा काम करे जो ये आपका नक्काशी का काम लोग इंटरेस्ट लें उसमें, युवा इंटरेस्ट लें?
0: हाँ, कम से कम 1 साल का तो वो ट्रेनिंग जो है प्रशिक्षण ले, वो लड़का 1 साल में कारीगर बन जाएगा वो, इसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर खोले, उसमें मास्टर प्राप्त में उनके पद पर जो है वो चुने, हमें चुने या किसी को चुने, तो काम सीखना चाहिए, लगन से भी काम सिखाए उस आदमी को जो है मौका मिलना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, 1982 में मुझे मास्टर क्राफ्ट में के पद पर चयनित किया था, तो मैं उड़ीसा स्टेट गया था डिस्ट्रिक्ट पुरी, तो वहाँ मैंने लगभग 200 कारीगरों को काम सिखाया वहाँ पर, तो वहाँ कामयाब हो गए, तो मैंने 2 साल तक वहाँ पर रहा हमने।
1: आपको ये काम करते हुए कुछ सम्मान भी मिले हैं, क्या क्या अवार्ड मिले हैं अब तक?
0: मैं 1970 से तो काम में जुड़ा हुआ हूँ, काम करते करते उच्च कोटि का भी जो काम है उसकी गुणवत्ता जो हासिल की है मैंने, इसके बाद में जो है स्टेट अवार्ड मुझे 2 बार मिल गया, के बाद में नेशनल अवार्ड मिला, नेशनल के बाद में शिल्प गुरु मिला, शिल्प गुरु के बाद में इसकी घोषणा हो गई। और मैंने जो अब तक प्रोग्राम किए हैं प्राइवेट नहीं किए हैं, सारे सरकारी हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के जो एग्जीबिशन लगती हैं, ताल कटोरा, प्रगति मैदान, इंडिया गेट पे, सूरजकुंड मेला है, आगरा ताजमहोत्सव है, तो मैंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए हैं, तो वहाँ मेरी चर्चा होती है, सब टीवी पर दिखाते हैं।
1: आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है और क्या क्वालिफिकेशन आड़े आई इसमें?
0: हाँ, 7वीं पास किया था, मैं तो बहुत ही गरीब परिवार से हूँ जिसका कि मतलब बड़ा मुश्किल था आलन पालन, तो बस पढ़ाई करने के बाद इस काम में लग गया। काम करने के बाद तो मेरे मन में यही इच्छा थी कि भाई हम जो है मजदूरी ना करके जो है सप्लाई का काम करें, खुद बना के बिक्री करें, तो जो हमारे सीनियर थे घासीराम जी उनके साथ मिलकर मैंने काम किया ही है, तो सप्लाई का काम भी मेरा चल गया, और सप्लाई काम ऐसा चला कि अब हर स्टेट में हमारा माल जाता है, सरकारी शोरूम में मेरी सप्लाई रहती है।
1: आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आदमी हुनर सीख ले तो बहुत ऊंचे मकाम
0: जी,
1: तो अपना

0: रोजगार जो है खुद मोहम्मद चला सकता
1: और फेमस भी हो सकता, फेम भी पा सकता।
0: मुझे एग्जाम में गए थे वही विदिशा प्रोग्राम में, तो आए उन्होंने बधाई दी, बोले चिरंजीवी लाल आप ही हो क्या? मैंने कहा हाँ जी। बोले वेशभूषा से और आपके आचरण से तो नहीं मालूम होता है। तो मैंने कहा मैं तो साहब साधारण रहता हूँ, मैं तो कारीगर आदमी हूँ। तो बहुत खुश हुए वो।
1: तो ये अगर रोजगार इसमें कमाना चाहते हैं जो युवा है खास तौर से, तो उनके लिए क्या कहने चाहे?
0: देखो युवा जो है ना वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन रुचि होनी चाहिए मन में। तो जब रुचि होगी जब तो काम कर पाएगा। रुचि है उसको कंप्यूटर के काम में, तो हम उनसे कहते हैं कि भाई ये वो भी करो, इसमें भी तो आप थोड़ा सा समय दो, वो भी काम करेगा आपका कंप्यूटर भी।
1: तो सरकार ऐसा क्या करे जो, क्योंकि ये जो हमारी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, बड़ी ये महत्वपूर्ण है और हमारी विरासत है एक तरह से ही, ये जिंदा रहे।
0: ट्रेनिंग सेंटर कौन ले चाहिए? और ऐसा नहीं नक्काशी के काम का हो, रंग भराई का हो, होल्डिंग का हो, दो दो मतलब वो रखनी चाहिए कि सिलाई का हो, बेल्डिंग का हो,
1: इसका जो पूरा काम है वो सारा सिखाया जाए।
0: जहाँ जहाँ इसके उद्योग हैं, जैसे यहाँ पर पीतल का उद्योग है तो मुरादाबाद में होना चाहिए, अमरोहा में लकड़ी ढोलक का काम है तो होना चाहिए, अलीगढ़ में है जहाँ छपाई का वहाँ होना चाहिए, इससे वृद्धि भी होगी।
1: तो आपकी ये जो उपलब्धि है, ये सम्मान मिला है, तो इसका श्रेय किसे किसे देना चाहिए?
0: सबसे पहले तो मैं अपने जो गुरुजी हैं हमारे जिनसे काम सीखा है, तो उनका भी मतलब मैं वो कहूँगा कि भी पता नहीं क्या भाग्य किस्मत की बात है जो कि वहाँ से हमें काम सिखाया उन्होंने लगन से, वो हमने भी रुचि से सीखा। और मुझे जो है इस काम की लगभग 55 साल का अनुभव है।
1: अच्छा,
0: हम बराबर काम कर रहे हैं। बीच में बहुत अड़चन आई 1980 में जब दंगा फिसाद हुए थे, तो बड़ा मुश्किल था घर से बाहर निकलना, उस समय बहुत परेशानी का सामना करना।
1: घर वालों का क्या सहयोग रहा है?
0: तो ये तो मतलब हौसला बुलंद रखते थे, यार चिंता मत करो सब हो जाना, कैसे खाना पीना का काम चलेगा वो सब हो जाना। तो हमारी मिसेस ने भी जो जोड़े हुए पैसे थे वो निकाले, बुरे वक्त पे जब हम ऐसे पैसे खर्च नहीं करेंगे तो कब करेंगे, तो काम चलता रहे, मतलब हिम्मत नहीं आ रही, हम काम छोड़ा नहीं, तो आज उसी की बदौलत है जो इस काम मतलब उन्नति पाई है हमने।
1: तो ये थे मुरादाबाद निवासी चिरंजीवी लाल यादव, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी पीतल पर नक्काशी के विशिष्ट कलाकार चिरंजीवी लाल यादव के साथ विशेष बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे संजय तिवारी। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर बहार।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को शीला दुर्गापाल का नमस्कार। सुरबहार कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं सच्चे प्रेम के खूबसूरत एहसास से सजी साल 1976 में आई क्लासिक कल्ट सुपरहिट फिल्म कभी कभी के सदाबहार सुरीले गीत। कार्यक्रम का पहला गीत प्रेम की कोमल अनुभूति से लिपटा ये गीत और इस गीत के बोलों में पिरोए मोहब्बत के एहसास सीधे रूह में उतर जाते हैं। आइए सुनते हैं ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में।

दोस्तों, जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म कभी कभी भारतीय सिनेमा की कालजयी फिल्म है। अदाकार अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, ऋषि कपूर, अदाकारा राखी, वहीदा रहमान, सिमी ग्रेवाल और नीतू सिंह की शानदार अदाकारी से सजी ये फिल्म अपने अमरगीत संगीत के लिए भी जानी जाती है। आइए सुनते हैं अमिताभ बच्चन साहब की पहचान बना कभी कभी फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज़ में। इस गीत के बोल जीवन की क्षणभंगुरता और कड़वी सच्चाई को बेहद सरल शब्दों में बयां करते हैं।

आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर बहार। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुपरहिट फिल्म कभी कभी के सुरीले गीत सुना रहे हैं। दोस्तों, फिल्म की कहानी एक साधारण प्रेम प्रसंग से आरंभ होकर धीरे धीरे जीवन के गहरे दर्शन को साथ लेकर आगे बढ़ती है। कहानी में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं और फिर नायक नायिका की अधूरी मोहब्बत उनके साथ ही उनकी अगली पीढ़ी को भी प्रभावित करती है। इस फिल्म में कलाकारों की डायलॉग अदायगी, खामोशी और सादगी भरा सजीव अभिनय, लाजवाब अदाकारी दर्शकों को अंत तक फिल्म से जोड़े रखती है। पेश है मोहब्बत के सुरूर में डूबे अपने आसपास से बेखबर प्रेमी दिलों के दिल का हाल बयां करता ये गीत।

दोस्तों, म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म कभी कभी के कालजयी अमर संगीत के लिए खय्याम साहब को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, लुधियानवी साहब को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और मुकेश साहब को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला था। अपनी मार्मिक कहानी, बेहतरीन संवाद और सदाबहार गीतों के लिए ये फिल्म आज भी खूब पसंद की जाती है। इस फिल्म में इंसान की ज़िंदगी के अनकहे अनछुए जज्बात, पारिवारिक रिश्तों की गर्माहट और कोमल भावनाओं और संवेदनाओं को रूपहले पर्दे पर बड़ी संजीदगी से फिल्माया गया है। कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं प्रेम और जीवन के प्रति सकारात्मक भाव जगाता, जवां दिलों की उमंगों से भरा ये गीत।

दोस्तों, सच्ची मोहब्बत भले ही अधूरी रह जाए मगर हमेशा साथ रहती है, यादों में बसी रहती है, दिल के किसी कोने में चुपचाप छुपी रहती है। यही संदेश देती है फिल्म कभी कभी। सुरबहार कार्यक्रम में आज इतना ही। शीला दुर्गापाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

सुर बहार, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाहन के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था उपकार फिल्म से महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में। गुलशन बावरा के बोलों को संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने। आइए सुनते हैं दिल तेरा आशिक फिल्म का गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में, गीतकार समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए, FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाहन के 11:10 होने वाले हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनिए जम्मू कश्मीर में समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने गए समाज सेवी ब्रिजलाल भट्ट के साथ हुई विशेष बातचीत। चर्चा का संचालन कर रहे हैं जगमोहन शर्मा।
2: नमस्कार, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की जिन्हें इस वर्ष पद्मश्री जम्मू कश्मीर से समाज सेवा के क्षेत्र में देने की घोषणा की गई है। हमारे साथ हैं ब्रिजलाल भट्ट जी, आपका आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि आपको किन किन कामों के लिए ये मिल रहा है।
3: देखिए, अभी जो आपने बताया मुबारकबाद मुझे आप दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ विवेकानंद राख मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, तो ऑब्जेक्टिव है मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान। ये स्पिरिचुअली ओरिएंटेड सर्विस मिशन के जरिए होता है, इसलिए ये मैं समर्पित करता हूँ विवेकानंद राख मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को, जिन्होंने मुझे अवसर दिया नागडंडी के माध्यम से समाज सेवा कश्मीर में करने का। मैं ये समर्पित करता हूँ अपने जो हंड्रेड्स कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हैं, काम करते हैं, हमारी एक्टिविटीज में शामिल हैं। मैं खास तौर पर ये समर्पित करता हूँ कश्मीर में जो नई पौध है, हमारा जो यूथ है उनको।
2: आपके बारे में हम जानते हैं कि आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं और अब आप समाज सेवा के साथ जुड़े हैं। आपका ये सफर समाज सेवा के साथ जुड़ने का कब शुरू हुआ और कैसे आप प्रेरित हुए, आपका रुझान इस तरफ किस तरह से हुआ?
3: मैं गांव की पैदावार हूँ, अनंतनाग का रहने वाला हूँ। नागडंडी अनंतनाग से 7-8 किलोमीटर दूर है, तो बचपन से जुड़ा था, लेकिन सेवा में था, सेवा के सारा आयामों में, और खास तौर पर 90 में पलायन हो गया, निकल गए, तो उस टाइम मेरे दिल में ये बात आ गई कि ये जो सर्विस के बाद मैं कश्मीर में ही रहूं ताकि ऐसे कुछ कार्य करें जिससे ये विस्थापित समाज जो है फिर से अपने जड़ों के साथ जुड़े
2: जी।
3: तो नॉर्मल अगर आप देखेंगे 850 ये जो प्रकल्प, जिसमें नागडंडी भी एक प्रकल्प है
2: जी,
3: तो सब प्रकल्प में या जितने भी 1000 केंद्र हैं सारे भारतवर्ष में, उनमें सारे एक्टिविटी चलती रहती है, संस्कार वर्ग में हो, योग वर्ग में हो, स्वाध्याय वर्ग में हो, केंद्र वर्ग में हो, ये एक्टिविटी नॉर्मल सब यूनिट्स में चलती है। लेकिन कन्याकुमारी मैनेजमेंट ने सोचा कि इन एक्टिविटीज के साथ जो ऑब्जेक्टिव में हमारे हैं, कुछ हम ऐसे ऑब्जेक्टिव एडिशनली जोड़े जिससे ये जो विस्थापित समाज है फिर से अपने जड़ों के साथ जुड़े, जिससे कश्मीर में पीस प्रमोट हो और इंट्रा एंड इंटर स्टेट इंटीग्रेशन प्रमोट हो फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी
2: जी। आपने विवेकानंद की बात की, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था भाईचारे का, और जैसा भारत का संदेश है वसुधैव कुटुंबकम कि पूरा विश्व जो है एक कुटुंब है, आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं, किन किन एक्टिविटीज के जरिए आप कश्मीर घाटी में प्यार का, अमन का संदेश पहुंचा रहे हैं?
3: हम विवेकानंद थॉट मिशन को लेके वहां काम करते हैं, तो नेशनल एक्टिविटीज में हमारा 10 दिन का योग शिक्षा शिविर होता है नागडंडी में, जिसमें 15-20 स्टेट्स का पार्टिसिपेशन होता है
2: जी।
3: आपको छोटा सा भारत नजर आ

0: आता है वहाँ पर स्पिरिचुअल रिट्रीट प्रोग्राम होता है वो उसमें भी बाहर के स्टेट्स का पार्टिसिपेशन और हमारे JKUT का भी पार्टिसिपेशन होता है वो आध्यात्मिक उस रूप में करते हैं हमारा संस्कार वर्ग में बच्चों का प्रोग्राम्स होते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज जो कश्मीर में हम करते हैं वहाँ हमारे बच्चे या बच्चियां काम करते हैं सर्विस करते हैं हम उनके बच्चों के बारे में सोचते हैं
1: जी
0: तो उनको हम संस्कार वर्ग में उनके साथ उनको जोड़ना चाहते हैं नागडंडी के साथ जुड़े भी हैं अभी हमने 3 दिन का हमने संस्कार वर्ग में प्रोग्राम किया ऐसे अब ये जो हम पीस प्रोसेस वहां करते हैं पीस प्रोसेस जो मेरा मानना है तब तक पीस प्रोसेस बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकती जब तक सिविल सोसाइटी मीट्स ना हो
1: जी
0: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ उनकी नजदीकियां ना बढ़े
1: जी
0: वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई
1: थी
0: उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करना है मैं तो ये समझूंगा इस वक्त जो टॉर्च बेयरर्स कश्मीर में हैं जो मैं काम करता रहता हूँ मुझे लगता है ये यही यूथ है चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी का हो या माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो हमें तो अब फॉलो करना चाहिए हमें इनके पीछे पीछे चलना चाहिए अगर हमने सोच रखी होती 89-90 में हमने बुजुर्गों ने अपना रोल अदा किया होता तो ये 36 साल का पलायन नहीं हमने देखना पड़ता तो इस वक्त जो यूथ काम कर रहा है यूथ समझ गया है ICYC एक्टिविटी से कुछ नहीं निकलेगा जो कुछ निकलेगा पेन से निकलेगा और इसके रिजल्ट्स निकल गए अभी मैं बता रहा हूँ अपना तजुर्बा 2010 से मैं मुख्य सेवक के रूप में हूँ मेरा टीम है बहुत बड़ा उसमें हमारी मातृशक्ति भी है उसमें हमारी युवा शक्ति भी है तो हमने ये देखा कि इस वक्त एक चेंज नजर आई है हर जगह हमारा ये जो दीप जल रहे हैं जहां जहां अंधकार है वहां रोशनी हो रही है और इस वक्त आप नौजवान के हाथ में कलम देख रहे हैं और रिजल्ट है हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है गांव का एक नौजवान वो हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है कंपटीशन से आया है इसी तरह कुलगाम में यंग बॉय कंपटीशन से आया है श्रीनगर में यूथ है कंपटीशन से आया है तो ये रियलाइजेशन आने लगी और खास तौर पर पेरेंट्स जो हैं वो समझने लगे बच्चों को हमें संस्कार वर्ग में ट्रेनिंग देनी है पढ़ाई की ट्रेनिंग देनी है तो इसमें मैंने आपको बता दिया योग शिक्षा शिविर होते हैं स्पिरिचुअल रिट्रीट प्रोग्राम होते हैं आपका ये जो बाकी प्रोग्राम यूथ मीट्स होते हैं तो संस्कार ये नेशनल प्रोग्राम्स है हर जगह होते हैं एडिशनली जो हमने कश्मीर के लिए किया है वो ट्रेडिशनल जो हम इवेंट्स किया करते थे जैसे रामनवमी का हवन है वहाँ हर साल होता है नागपंचमी का हवन है हर साल होता है ज्येष्ठ अष्टमी माता खीर भवानी का हर साल होता है बल्कि 97 में एक हमने सोचा कि हम एक ऐसी जगह लें कश्मीर में सेंट्रली लोकेटेड हो कश्मीर में जहां हर साइड से हर डिस्ट्रिक्ट से आराम से लोग आ सके ये प्रोस्पेक्टिव में हमने देखा उस टाइम के सिचुएशन को नहीं आगे क्या होगा तो हम ऐसी जगह का चयन करें जो मैनेजेबल हो फेयरली फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम ऐसी जगह लें जिस पर टोटल आस्था हो कम्युनिटी की
1: जी
0: डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी तो खीर भवानी का चयन हो गया वो जगह ले ली आपको मैं बताऊं मैं उस टाइम ब्यूरोक्रेसी में था लेकिन नागडंडी के साथ जुड़ा था तो 2 ट्रक्स में नागडंडी से सामान आया 300 GI शीट्स पोल्स लाए और लेबर 20-25 लाए लेकिन वो जो हमारा यूथ है तो वहां शेड बनाया खीर भवानी में ताकि उसके शेड के नीचे हम ये भंडारा सेवा शुरू करें तो 97 में शुरू किया 400-500 लोग थे लेकिन चलते चलते इस साल हमारा 27वां साल था तो 30,000-35,000 लोग वहां आए विस्थापित लोग उसमें हमारी बहनें हमारे जो भाई बच्चे उसमें होते हैं इतने ही मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी वहां होते हैं
1: जी
0: अब इट्स नॉट ओनली दैट मैंने देखा ये जो 97 से वैसे मैं फिर 2010 से चेयरमैन भी रहा हूं मैं देखता रहा एवरी एनुअली ग्रेजुअल इंक्रीज
1: जी
0: तो वहां केंद्र बना फिर देन इट बिकेम अवर पॉइंट ऑफ कंसर्न कि इसको हम ये जो पीस वहां खड़ा हो गया आराम से लोग आते हैं करते हैं ये पीस कैसे लेटरली परकुलेट हो
1: जी
0: तो अभी आपको मैं बताऊं और खुशी है मुझे कि ये 15-20 जगह ऐसे हवन होते हैं कश्मीर में चाहे आप बारामूला कुपवाड़ा में देखो शुपियन मंजगांव में देखो आप दिवसर कुलगाम में देखो लोगरीपोरा में देखो अकिनगांव में देखो लुगबोन में देखो सारे कश्मीर में ज्येष्ठ अष्टमी के ऐसे हवन होते हैं तो पीस प्रोसेस हो गई और ये हवन भी इसमें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का लॉजिस्टिक सपोर्ट रहता है इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें सपोर्ट एनकरेजमेंट होता है तो ये चलते आ रहे हैं तो ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं इसका हर साल ये असर होता है
1: अच्छा

0: जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो इसको भारत के सर का ताज कहा जाता है और अपने आप में ही एक छोटा हिंदुस्तान है क्योंकि यहाँ भी अलग अलग मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले अलग अलग जबान बोलने वाले लोग यहाँ पर मिलकर रहते हैं। और जम्मू कश्मीर की हम पूरी बात करें, जम्मू शहर जो बसा यहाँ शेर और बकरी को इकट्ठे पानी पीते देखा, कश्मीर की हम बात करें तो वहाँ अरमदारे कश्मीर जिन्हें नंद ऋषि भी कहते हैं वहाँ पर हिंदुओं और मुसलमानों की एक जैसी आस्था रही है। आप महाराजा हरि सिंह के समय की बात करें तो वहाँ एक मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू राजा और सभी खुशहाल उसमें रहते हैं, ये खूबसूरती है हमारे जम्मू कश्मीर की। लेकिन बदकिस्मती से एक दौर ऐसा आया कि हम अंधेरे की तरफ चले गए, गुमराह हो गए या जिस तरह से भी। आज आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से जम्मू कश्मीर तेजी से खुशहाली तरक्की अमन के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है?
1: देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने ऐसी बात छेड़ी आपने विद रेफरेंस रिकॉर्ड, मैं प्रैक्टिकली आपसे बताता हूँ। हमारी ज्वाइंट फैमिली थी अनंतनाग में, 40-50 लोग इस फैमिली में थे, एक साथ रहते थे, इंटीग्रेटेड थे। तो सब बच्चों का, हमारे सारे बच्चे जो हैं ईश्वर की कृपा से अच्छे अच्छे पोस्ट पर रहे हैं। तो हमारा ये था कि सवेरे उठना, 4:15 उठना, तो इंद्रनाग है वहां पर चश्मा है, उधर नहाना, फिर केंद्र में जाना, गुरुद्वारा में जाना, वहां से प्रसाद लेना, उसके बाद हम देवी बल था उधर प्रसाद लेना, ऋषि साहब के जियारत के पास जाना प्रसाद लेना, वो देते थे शीरीन, वहां हम चक्कर लगा के फिर हम घर जाते थे, फिर हमें चाय मिलती थी। ऐसा मेरा ही नहीं, सब बच्चों का ऐसा होता था। यही हमारे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे हैं उनमें भी यही संस्कार थे और इन संस्कारों की वजह से हमारा बचपन जो ऐसा है, मैं इस वक्त सोचता हूँ मेरे दोस्त उस टाइम कहाँ थे, वही मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे। जबानी याद, गुरुद्वारा एक जगह, मंदिर एक जगह और शेरबाग नीचे, तीनों एक जगह थे, किसी ने किसी का एक इंच नहीं खाया
0: जी।
1: अब इसको तो मैं कह रहा हूँ, और बचपन में जब हम जाते थे निकलते थे मुझे आशीर्वाद मिलता था, जो हमारे मुस्लिम मेजॉरिटी की फैमिली एल्डर्स, मेरे पिताजी के दोस्त और अपने पंडित बरादरी के जो एल्डर्स थे दोस्त, इतना हमारा भय रहता था उनका, हम गलत काम नहीं कर सकते थे। मैं मुस्लिम वाले में ही रहता था, मुसलमान का बच्चा जो मेरे से छोटा मेरे साथ तेजी से भी नहीं बात कर सकता था। अगर मैं बोलूंगा वो हो गया ये हो गया तो मैं रिवर्स गियर में जा रहा हूँ, हमको आगे चलना है। हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे जो हैं एक साथ हैं। और आपको एक खास तौर पर मैं सारे नेशन को बताना चाहता हूँ, ये जो 5-6 हजार बच्चे विस्थापित समुदाय के वहां गए हैं, आई कीप टेलिंग देम यू आर द एम्बेसडर्स, आप में हिस्ट्री में आपका नाम लिखा जाएगा। दे हैव नॉट गॉन देयर टू सर्व मॉनेटरी बेन्स के लिए, वो तो करना है, वो इसलिए गए हैं कि उनको अपनी मातृभूमि की खुशबू ने लाया है। आई हैव इंस्टेंसेस मोस्ट ऑफ देम, एक कोपाड़ा बारामूला में रोहित रैना है, वो अच्छे काम कर रहा था बाहर, तनख्वाह भी अच्छी ले रहा था, मिसेज भी सर्विस कर रही थी। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो वापस आ गए हैं, वहां अपने कोपाड़ा में सेटल हो गए हैं, बारामूला में सेटल, ऐसे बहुत से बच्चे हमारे हैं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वो वहां काम कर रहे हैं। ये जो हमारे बच्चे हैं सारे 5-6 हजार बच्चे जिनको मैंने कहा एम्बेसडर, इतने ही नए बच्चे मेजॉरिटी कम्युनिटी के, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने समझ लिया कि ये जो कंपोजिट कल्चर है ये क्या था
0: जी,
1: कश्मीरी पंडित क्या था,
0: असली खूबसूरती
1: वही थी, एक गुलदस्ता था, अलग अलग फूल थे
0: जी।
1: और वही होगा जो इस वक्त का मैं देख रहा हूँ। देखे रिटायरमेंट के बाद आई शुड ऑल्सो हैव बीन विथ माई चिल्ड्रन, आई शुड हैव गॉन, इधर उधर सब जाते हैं। मुझे फख्र है कि आई एंजॉय द डिस्टिंक्शन कि मैंने फैसला किया उसके बाद नहीं, मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए।
0: भट्ट साहब, आखिर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आज जो माहौल है खुशनुमा माहौल है, हम तेजी से अमन की तरफ, तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इसमें हर एक इंसान का, हर एक जम्मू कश्मीर वासी का क्या फर्ज बनता है कि इस माहौल को और सपोर्ट करें और एक बार फिर जम्मू कश्मीर वही जम्मू कश्मीर बन जाए जो कुछ वर्ष पहले हुआ करता था?
1: देखिए एक माहौल था कश्मीर में, बच्चा कोई गलती नहीं करता था, कहीं से भी बाहर से भी शिकायत आई या कहीं से भी आभास हो गया पिताजी को या माताजी को कि बच्चे ने ये कर दिया, उसको डांटते थे
0: जी,
1: वो समझते थे, पेरेंट्स विजिलेंट थे। लेकिन थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ ये जो वॉच नहीं रहा, ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चे को पेरेंट चाहे तो बच्चा कोई गलत काम करे, अगर करता है दैट इज द पेरेंट फेलियर
0: जी। नहीं, यही आप कहना चाहते हैं कि हर एक नागरिक को एक विजिलेंट होके काम करना है,
1: correct.
0: एक निगरान बनना है, अपने बच्चों पे नजर रखनी है, नौजवानों पे नजर रखनी है, ताकि दोबारा से हम पटरी पर जो आ गए हैं दोबारा से हम पथ भ्रष्ट ना हो, पटरी से ना गिरे।
1: एक चीज और बताना चाहता हूँ, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड एंड अंडरस्टूड वेरी क्लियर, ये जो मैं कह रहा हूँ, देखिए इसको कैश करने की जरूरत है। हमारा जो नौजवान इस वक्त कश्मीर में है, उनका जोश और पेरेंट्स का होश
0: जी,
1: जब एक यूनिसन में आएगा, कश्मीर फिर वही गोशवारा बनेगा, कश्मीर वही फिर गुलदस्ता बनेगा, कश्मीर वही फिर टॉर्च बेरर बनेगा, नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर होल ऑफ वर्ल्ड, बिकॉज वी बिलीव इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और मुझे उम्मीद है भारत को विश्व गुरु ले जाने के लिए हमारे कश्मीर के यूथ का, चाहे किसी भी फेथ से हो, आगे आगे हमारा यूथ होगा, ऐसा मेरा मानना
0: जी। तो भट्ट साहब, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी, जिसके अंतर्गत आपने सुना जम्मू कश्मीर में समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने गए समाज सेवी ब्रजलाल भट्ट के साथ हुई विशेष बातचीत। चर्चा का संचालन कर रहे थे जगमोहन शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपने प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
4: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। शुभारंभ कर रहे हैं कुमाऊनी लोकगीत के साथ, कलाकार हैं किशन चंद्र सिराड़ी और साथी।

0: वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: लोक सुर कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, यह है कुमाऊँ लोकगीत। कलाकार हैं किशन चंद्र सिराड़ी और साथी।

लोकसुर कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं, जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का आनंद इस समय आप ले रहे हैं। और अब गढ़वाली लोकगीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, कलाकार हैं नरेंद्र सिंह नेगी।

नरेंद्र सिंह नेगी के गाय से गढ़वाली लोकगीत के साथ लोकसुर कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहले सुनिए कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का गाना। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत आर डी बर्मन का। आइए सुनते हैं ये गाना।

अगला गाना आपकी खातिर फिल्म से सुनिधि चौहान, कैलाश खेर और जसपिंदर नरूला ने इसे गाया है। समीर ने इस गीत को लिखा है और सुरों में ढाला है हिमेश रेशमिया ने।

एपर कार्यक्रम सुने सरस्वता दोगलन के आप लोगों को रेडियो दगरी दीपा जोशी नमस्कार स्वागत है आप सब लोगों ना आज के पर कार्यक्रम में। दोगरी आज के कार्यक्रम में हम आप लोगों दगर बात करूँ अल्पसंख्यक निजी एक योजना छो फ्री कोचिंग योजना एक बार में और दगर आप लोगों लीजिए एक क्षेत्र संकलित बातचीत हम ले आ रही हैं आप श्रोता दगर ने हम बात करी फ्यूचर शॉपिंग खरीदारी है बचो तो दगड़ आप लोगों मनोरंजन करूँ और भला भल गीत आप लोगों को सुनूँ तो कार्यक्रम में पछात अगर हमारे घर बढ़ी रहा। भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए उन्हें भलाई के लिए कतु कई योजनाएं चलाई जाने लग रही। नगरी यो योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक शिक्षा कौशल विकास रोजगार और बुनियादी ढांचा विकास के माध्यम उन्हें सशक्त बनाने छू तो ये ऐसा कतु का योजना छन और उनमटी का एक छू एक जो योजना चल रहा है वो छू अल्पसंख्यकों के लिए फ्री कोचिंग योजना। यह योजना को उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के सशक्त बनोन और उनके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना छू ताकि सरकारी और निजी नौकरियों में उन्हें भागीदारी में सुधार आऊँ। यह योजना अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के चयनित कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग जो संस्थान होने उनमें निःशुल्क यानी मुफ्त कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता दें। योजना का उद्देश्य छू कि जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग विधि चिकित्सा प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि जैसे तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए परीक्षाएँ और विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिला के लिए भाषा अभिवृत्ति परीक्षाएं और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जैसे कि बैंक हगुए बीमा कंपनियां हगाए उन्हें दगड़ दगड़ स्वायत्त निकायों सहित केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत समूह क ख और ग सेवाओं और विक समतुल्य पदों को भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के फ्री कोचिंग यानी मुफ्त में उनके परीक्षाओं की तैयारी कराई जाए। दगड़ियों दगड़ियों जो लोग अल्पसंख्यकों के लिए यो योजना यानी कि फ्री कोचिंग योजना के पात्र छन और यह के लिए आवेदन करना चाहनी तो उन्हर पास जो जरूरी कागजात जरूरी दस्तावेज होने चाहिए उन्होंने मठी पैर छू कि सब योग्य अभ्यर्थियों के पास उन्हर आधार कार्ड जरूर होने चाहिए और दोहर विद्यार्थियों के पास बैंक खाता पासबुक ले होने चाहिए। यह के अलावा जो पिछड़ा कक्षा उन्होंने पास कर रखी पिछड़ा कक्षा पास करना प्रमाण पत्र होने लगे बहुत जरूरी छू यह दगड़ है निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर दगड़ दगड़ है पासपोर्ट साइज फोटो होने लगे बहुत जरूरी छन। तो जो लोग रहे अल्पसंख्यकों के लिए फ्री कोचिंग योजना के पात्र छन उनके यो योजना का फैद जरूर उठन चाहिए। यो बातचीत हम करी दगड़ियों फ्री कोचिंग योजना के बारे में और अगले का कार्यक्रम में आप लोगों को मनोरंजन कर लो और सुनो योगी गीत।

0: स्वागत हमारे कार्यक्रम अर्पण में।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: ऐसा महिलाओं का आदत है ना कि वो फिजूल खर्ची बहुत करनी, तो हम उनके फिजूल खर्ची या ये फिजूल शॉपिंग या खरीदारी है कैसे बचन चाहे, यह के बारे में आपको विचार हम जान जानू।
1: मैं सबू है पहली सबू कौन चाल की जब बात हूँ फिजूल खर्ची सबू पहली हम के एक पेपर लिवे वो में पैनल अपन डिटेल बना लिंचे की के सामान बहुत जरूरी थी, जैसी उन्हीं की खाना का सामान लत्ता कपड़ा जो जरूरी चन वो चीजों के लेन चैन और फिजूल खर्ची नहीं करन चैन। और जो जरूरी आवश्यक चीजें छन दवाई छू खान पीन छू ये चीजों में अपन एक बजट बटने हुए चलो चाहे हम।
0: बहुत है बड़ी एक लाइन में अपन कह दे कि हम इनका कैसे अपन घर का बजट बनो छू, पहले एक लिस्ट तैयार कर लेना चाहिए कि हमारा जरूरी सामान छू, एक बाद हम बाकी सामान के खरीदो। तो मीनाक्षी जी आप जान चाहो कि जैसा आजकल ना ऑनलाइन शॉपिंग बहुत लोग करनी, तो ये ऑनलाइन खरीदारी के बारे में आपको क्या?
1: हाँ मैं कौन चाहूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग एक रोग ले छू और दूसरा भल ले छू, क्योंकि भलाई तरपल जब हम देखनू कि ऑनलाइन में कदू बार बहुत भल भल ऑफर होनी तो के जरूरी चीज छू, तो ऑफर में एक चीज हम के मंगा लेन चैन हम के बीमारी नहीं लागन चैन कि हम 10 चीज एक जैसी मंगा लियो। फिर के हूँ जैसे सीजन न जा वही बात हूँ कि नई सीजन में फैशन लेनी हूँ वे और वे बात के हूँ 3-4 चीज एक जैसा जानी फिर फैशन चेंज हो जा वो चीज धरी का धरी रह जा। ये लीजिए हम के अपन बजट देख वे रन ये देखन चाहे कि हम के चीज सस्ते मिल लो के मैं ऑफर छू के मैं छूट चल रहे हैं के मैं सेल चल रहे है और जो जरूरी सामान छू वो ऑनलाइन जरूर मांगू चाहे मैं ये आप हूँ फोन।
0: जैसे ऑनलाइन में हम देखने ना कतो बखा कि हम एक चीज मंगाए के लेकिन डबल तो हम उनका ऐसे बटू बटे निकालवे देना था, अगर हम ऐसे डबल देने तो थोड़ा लागू कि हम डबल देने, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना लग रहा था तो पत्ते नहीं चलन की कतो डबल हमारे है गो करे।
1: हाँ यस तो छू ऑनलाइन बहुत डबल जानी कबे कबे के हूँ कि जो चीज हमारे मतलब है नहीं हूँ पर हम उनके पसंद है जा। पर मैं एक बात यो कहूँ कि रात टाइम में हम उनके कभी सामान नहीं देखन चैन कि हमेशा रात के जब हम सामान देखू तो हमें पत्ते नहीं लागन कि हम उनके कदू चीज ऑर्डर कर ली, तो ये बेल में कौन चाल की सिर्फ जरूरत है चीजें ही ऑनलाइन मंगोन चाहे हम उनके और फालतू सामान नहीं मंगोन चाहे अपू बजट देख वे चलन चाहे। जैसी ऑनलाइन में एक के हूँ जैसी हम अकाउंट बनू तो वे मैं की वेटिंग में हम अपन सामान डाल दिन है ना वेटिंग वाली जी कि यो हम उनके पसंद है रो विवाद हम देखनू कि अगर हम उनके जरूरत धरण चाहे में जैसे कि हम उनके पते चलन चाहे कि हम पाई यो चीज छू भी थे ये क्या हमें जरूरत नहीं है तो हम उनके विवाद उनके डिलीट कर जाने।
0: तो यह एक बहुत ऑप्शन छू कि सोचना हम उनको बखत मिल जाकर वो तो भगा जल्दीबाजी में हमको पता नहीं चलना कि वो सामान हमारे भीतर पहले बटी पड़े छू हम फिर से ऑर्डर कर दू ने।
1: हाँ यो जरूरी कि उनके हम जो सामान स्टोर में वेटिंग में ऑफर में हम इकट्ठे कर रखनू उनका हम उनका डिलीट कर दें।
0: ये तो भल जानकारी आप दे कि कुछ बखत हम उनके वेटिंग में अपन सामान के धरवे कुछ बखत हम उनके खरीदारी के लिए मिल जाए। और जैसे बहुत सा महिलाओं की आदत है कि वो एक सामान के देखा फिर जरूरत नीला होनी उकला खरीदनी और खरीदना है पहले वो सोचन समझन नहातन के बिना सोची समझे खरीद लेने ने, तो उन महिलाओं ने जी के कोना
1: वो महिलाओं में कौन कि सब है पहली जहाँ शिक्षा जरूरी छू हमारे खान पीन जरूरी छू और लत कपड़े एक लिमिट है खून चैनी कबे कबे हम बजट बटे इतने बहर नहीं जानी, अगर बजट छू शौक छू तो अलग बात छू। कई कई बार मैं लिए ले देख रखो कि बजट है जद कपड़ों में डबल नहीं जानी और खान पीने लीजिए फिर उनर पास डबल नहीं हो तो उनका बहुत परेशानी सामना करना पड़ो। और सब है ज्यादा जब उनर दुख तकलीफ वो बीमार होनी उनर पास एक डबल लेनी हो ऑनलाइन हो ये रोग ले बहुत श्रेणियों का आजकल लग रहा जैसी क्रीम छू ठुल ठुल क्रीमा डब ऑफर में एक दगड़ एक फ्री मिल लो क्योंकि एक्सपायरी डेट है जहाँ फिर वो कामक नहीं रून तो ये वेल हम उनके सिर्फ जो हमें जरूरत छो जरूरत को सामान मंगून जाए।
0: बहुत बड़ी बात अपन का कि हमन के सामान के खरीदना है पहली सोच समझ लेना चाहे वे के बाद हमन के खरीदारी करना चाहे फिजूल खर्ची फिजूल खरीदारी है हमन के बचना चाहे। आप बहुत बड़ी बड़ी बात हमारे दगड़न के बताई हमारे श्रोता दगड़न थे आप के कौन चला के संदेश छो आप
1: श्रोता दगड़ी हूँ मैं संदेश छू कि पहले अपन बजट बना लियो वे बार आप जो जरूरी सामान छो उनका ऑर्डर करो एक सामान के पहले एक बार देख लियो कि ये भल छू या नहती कई बार के उन्हें ऑनलाइन कुछ और दिखूनी और वे बार सामान के और रह जा कभी के छू कि हम उनका बजट बना लेनी चाहिए जैसे हम स्टोर कर लेनु वे बात हम उनके दिमाग लगे वे एक बार जब हम बेवकूफ बन जानू हम उनका बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग बंद कर दें चाहे मैं तो यही कौन जान और सोच समझ पे आप बजट का देखते हुए ऑनलाइन शॉपिंग करन चाहिए।
0: बहुत बढ़िया बढ़िया बात आप मीनाक्षी जी हमन का बताई अपन अमूल्य वक्त दे देख लीजिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: कार्यक्रम में हमारे जुड़ रही बीना डाला कुटी बीना जो आपसे जान

0: शानू कि जब आपू बाजार जा ना सामान तो हर कोई खरीदू घर की जरूरत है तो जब ला आपू सामान खरीदू बाजार जा तो कैसे आपू सामान खरीदा के बातों ध्यान धर छा।
1: जब सामान खरीदने जाना बाजार पर तो पहली ये देखनो कि वो सामान क्वालिटी कस, पहली क्वालिटी देखो फिर मोल भाव करनू कि यह कस ठीक छ ना तो यह सब हमन का ये तो ध्यान में धरना और नकली तो ना तो आजकल की लकी ये सहगो कि बहुत चीजों में सामान में मिलावट है गे बहुत ज्यादा तो उसका सब देखना पड़ो ध्यान में धरवे तब हम खरीदारी करना चाहे और ये देखना चाहे कि हमारे जो डबल छन ओला हमारे बजट अनुसार हमारे बजट का ठीक होना चाहे कह कोई हमन का ठगण तो ना लग रहा है पैस ज्यादा तो नहीं लेना है सामान कमक से हमन थे ज्यादा तो नहीं मांगना डबल ये सब देखना पड़ो उस सोच समझ में हमको पहली घर में हिसाब किताब लगाना पड़ो कि हम कैसे सामान खरीदू।
0: बिल्कुल जब आप सामान खरीदू जा तो सामान के लिखवे ले जैसे की
1: लिखवे ले जान पड़ो पे न तरी ध्यान ना नहीं रहन के लिखने से के नहीं से पत्ता चढ़ना के और ले जान लेनो जानिया के और लियो नहीं आवे।
0: ये बात आप बिल्कुल सही कहे की महिलाओं को जैसे की कहे सेल लग रहे हैं या कहे की दुकान में छूट मिल रहा है तो उस सामान के खरीदो हम पहले नहीं जाने हाँ। बारे में आपको क्यों बोलना
1: ती देखो जैसे हम कब घर के हम सामान लेने जानी है तो हम बाजार जाने जाने हम उनका कहें दुकान पर लग रहा कि सेल लग रहा है हम वो नहीं जानू हम जो मेन सामान से हमारे मेन हम चीज क्या भूल जानू बस फिर लास्ट में क्यों हूँ जो घर सामान हुई लीजिए डबल न बचन तो यह सब फिर मतलब हम उनका सब सोच विचार करके जाना चाहे कि हम उल्के कारण से कस खरीदना चाहे यह सब चीज हमें ध्यान में धरना चाहे।
0: तो जैसे आप सामान खरीद तो सामान जैसे एक दुकान में गया बटे ले लिछा के दो चार दुकानों में पत्ते कर
1: ना ना दो चार दुकानों में जानू पत्ते करनू का मोल भाव सब जग एक का रेट है री या कह कम लहरो कोई महंग को ना हम ते या कोई कह और यहाँ पे सस्ता है रो तब चार पांच दुकान में जानू जहाँ सही लागू वहाँ पे हम सामान खरीद
0: सामान लगो
1: डबल ला कम लागो सामान क्वालिटी ले भल होने चाहिए और डबल ला जहाँ कम लग रही वहाँ पे हम सामान खरीद यह चीज हमन का देखना पड़ा।
0: आपको के पाला के हमारे जो श्रोता खरीदारी कारण हमन के सावधानी बरतन चाहिए या समझदारी खरीदारी करना चाहिए।
1: अपन श्रोताओं से मैं ये कहना चाहूँ कि हम जहाँ सामान खरीदने जानू पहले हमन का यह सोचना चाहे कि हमारे बजट का तुच्छ उके ध्यान में धरना चाहे और बाजार जान बखत हमन के अपन लिस्ट बना ली जाना चाहे पहली और वही बात हमन के चार पांच दुकान में देखना चाहे कि कहाँ सामान सस्ता है रो कहाँ महंगा है रो और वही हिसाब हमन का सामान लेना चाहे और अपन क्वालिटी ले ध्यान धरना चाहे अपन डबल नकल हमन के देखना चाहे कि हमार जो डबल छन ओला हमार ज्यादा खर्च न हो एक मतलब हिसाब हमार बजट ले ठीक ठाक हो और सामान ले हमार भलो।
0: तो आप बजट कैसे बढ़ो छा
1: जैसे कि हमारे डबल आनी हमारे पैसे सोनी जैसे हम निकालनो डबल तो अपन हम हिसाब बड़ा रखनो जैसे कि हम इतना लीजिए के खरीदना से को हमारे जरूरी सामान से पहले वो खरीदो आवश्यक आवश्यकता है जो हमारे राशन जो हमारे मेहनत हूँ वही लीजिए हम उनको देखना पड़ू और पे हम हिसाब चल लू और कुछ हम डबल इसलिए कर लू की बचा दे लू की थोड़ा हमारे बचत रह जो बिजली बिल है गए राशन है गए और कभी पानी बिल आ जाओ वो है गए या कभी के इसलिए है जाए की और लेस खर्च है जानी जो नंतनु फीस है गए या कोई मेहमान है गए घर पर हम वो ये देख लू की हम उनके थोड़ा बचत ला करना चाहिए कि अचानक कभी कोई हम पर आफत आ जाओ तो वह हमारे वो काम हो वो कल हमको देखना पड़ो।
0: तो आपको बजट बढ़ो छो और बजट बढ़ा भी जो जो सामान आपको लेना छो वही का हिसाब ले छो
1: हाँ वही का हिसाब ले लो जो जो हमको सामान लेना चाहिए
0: हमारे बहुत सारा बिगड़ी है सुनी की जो अनावश्यक रूप में खर्च कर देने ने तो ये कर लीजिए कही जाए की जो लोग हम खरीदारी करो खरीदारी में समझदारी होना बहुत जरूरी
1: बहुत जरूरी हो समझदारी बहुत जरूरी है हिसाब चरण से मतलब अपन हिसाब अनाप समाप खर्च नहीं करो ताकि तुम उनका कभी कोई दिक्कत है जो तो वही लीजिए लो तुम्हारे पास डबल मतलब बचत होना चाहिए तुम्हारे पास।
0: बहुत पहल बात अपूल करी कि हमन के अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए जरूरी जो सामान छो पहले उनको खरीदना चाहिए अपूल अपना बखत दे या कीजिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: कार्यक्रम में आखिर का हमारे दगर जुड़ रही श्रीमती ममता जोशी हर कह के अपन घर में सामान्य जरूरत अगर हम साग सब्जी ला उगनो घर के आसपास तो लेकिन कुछ सामान तो हमको बाजार पर लेना पड़ो ना घर का जो सामान आपको खरीदा वो सामान्य खरीदारी आपको खुद कर छा कि कोई और करो घर में
2: इमें आप सामान खरीदारी खुद करनो।
0: अच्छा तो सामान खरीद भगे सब है पहले के बातों ध्यान धर छा
2: सामान लेण बखी यह बात ध्यान धरनो पहले में आप घर में देखनो की के चीज खत्म है के नी है रे हिसाब में सामान लीनो लिस्ट बढ़ूनो और एक पर्चे में लिख लो के चैन के नी चैन वही हिसाब में सामान लियो नो।
0: तो जो लो सामान आपको बाजार बटी खरीद छा उके एक अदगड़ खरीद ले छा की के हिसाब खरीद
2: जो राशन पान छू उको में मेहड़ में इकट्ठा लियो नो और जो खराब होने छू जैसे की साग फल फूल या दूध दे उको में जरूरत टाइम पर लियो नो जब जरूरत पड़ी उबत लियो।

0: ये तो बहुत बड़ी बात है पुल बहते कि खराब होने वाला सामान हो को रोज हिसाब खरीद राशन पानी का आपको महीने हिसाब खरीद छा। तो ममता सामान के जब आपको खरीद बाजार जैसा ने तो खरीदारी करते समय और के बातों का ध्यान धर छा।
1: पहले तो मैं सामान को देखनू कि को सामान कस छू कस उड़ा और के वी रेट छन पहले वी बाद में को खरीदनू। पहले तो मैं वो दुकान को देखनू जो नजदीक हो और मिकल लून में वहाँ बटी सज हो और सही रेट में हो तब जब मैं वो लूनू और भल सामान हो उगर लूनू।
0: और बगाए आप देख छा की साफ सुथरू छू सामान या कस छू या बातों का ध्यान धर छा।
1: हो उगो देखनू की सामान कस छू साफ छ नीचू उमे को माट पाथर ढूंग छन बहुत पुराना तो नहीं या कीड़ लागी नहीं और जो पैकेट वाला सामान छू वो कुछ देख लेनू की एक्सपायरी छू नीचू या अभी डेट कधीन छू
0: और के बातों का ध्यान धर
1: और यह चीज ध्यान धरनू की कब तक वे सामान सस्ते लाए जा कब तक यह सो की जो सामान कब तक ये सस्ते आ गयो तो मैं वो सामान का ज्यादा लियोनू न तरी तो जो सामान खराब होनी भया को कम लियोनू। सामान लियोनू बगट में और बात अगला ध्यान धरनू कि सामान तो सस्ते है और मैं ज्यादा ले लियू लेकिन इधर ज्यादा ले नी लीन की वो खराब हो जो और मैं बजट बिगड़ जो।
0: बिल्कुल ममता जस की तुमको लाग रहा है कदू बखत ऐसा की सामान सस्ते हूँ और वो चक्कर में हम उसे ज्यादा ले लेनु वो बात तो सही छू लेकिन इतुक ज्यादा ले लेने चाहिए और चीजों के लिए हमारा डबला ना बचो ना वही सामान का हम ज्यादा लियो। तो यह के अलावा और के बातों का ध्यान धर छा
1: अपन बजट देख में सामान लेनो जो सामान सब ज्यादा जरूरी था वी लेनो मैं अपन सब सामान लेन बाद इमरजेंसी अपन डबल का धर रखनो तब तक के जरूरत पड़ सके हमको यह लीजिए मैं लिमिट सामान का लेनो ताकि हमको अगिल जबे और सुविधा है कुछ डबल टा अपने पास बचा रखनो ताकि अगिल कब तक के जरूरत पड़ गई हम उसको खर्च कर सकनो।
0: बहुत बड़ी बात अपुल कहे कि हमन के कुछ डबल अपने पास बचा बिना धरन चाहिए
1: कदू बख हजा की हम अपन दगड़ी दगड़ बाजार जानू और वो सामान खरीदनी तो हमर मन ले हजा को ली हूँ
0: बिल्कुल
1: जबकि हमको जरूरत ले नहीं फिर हम ले लू किला देखा देगी यह लीजिए हमारे लिए मन कर जाओ को ली हूँ और हम ले लू ना बजट खराब है जा हमारे यस नहीं करना चाहे यह बात ध्यान जरूर धरण चाहे अपन हिसाब सामान अगर लेना चाहे दोहरों को देखे नहीं लेना चाहे।
0: बिल्कुल सही अपुल कह ममता की हमको देखा देखी बिल्कुल निकलन चाहे। तो हमारे श्रोता दगड़े थे आपको क्या कौन चला
1: भी इधु का कौन चाहू की जे सामान ला खरीद सा तुम अपन सोचल और अपन हिसाब लिया और अपन बजट का सो समझ भी लिया अपन जरूरता का हिसाब उको तुम ले सकता हमको सामान लीन बखे हमेशा जागरूक रोण चे कई बार हम ठगी शिकार है जानू हमको डबल कमोड़ में इधु मेहनत लगू यह लीजिए हमको सोच समझ भी अपन खर्च करण चे और सामान का लेन चे और सब यह कौन चाहू की जे सामान तुम लिछा आप सोच समझ भी अपन जरूरत हिसाब
0: बिल्कुल बहुत सही बात अपुल बताए कि हमन के खरीदारी जो छो समझ भी करन चाहे अमूल्य वक्त देव हम तुम अपन या किसी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जो शॉपिंग खरीदारी है बच्चों या विषय पर अपन श्रोता देखो नगर खरीदी छीते संकल्प बातचीत हम आप लोगों को सुनाए। उम्मीद करनो कि ये बातचीत आप लोगों का भल लागू नील और ये में जो भल बात छी उनका आप लोग जरूर अपन जीवन में लागू करला और खरीदारी जो छू वो हमेशा सोच समझ भी करला और फिजूल खर्ची और खरीदारी है बचला। तो कार्यक्रम में आखिर के आप लोगों को मनोरंजन कर लो और सोनू योगी।

नरेंद्र सिंह नेगी गए ही है गीतक दगड़ आज ज्ञापन कार्यक्रम संपन्न होना बखत हो लग अपन रेडियो दगड़ी दीपा जोशी का अनुमति दियो कार्यक्रम प्रस्तुत करता ची दीपिका पंत आगे का फिर भेंट हो नमस्कार।

0: अर्पण, अभी महिलाएं अपना यह कार्यक्रम सुन रही थीं। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: क्या सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नाफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74,00,000 किसानों की सेवा कर रहा है।
1: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को SIT का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट होवित्जर तोपों के रखरखाव के लिए 23 करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स

सुन रहे थे 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 1:10 होने को है। अब थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:20 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। पहले सुनिए पंकज उधास के स्वर में जमीर काजमी का नगमा।

सुगम संगीत में लीजिए, अब सुनिए नुसरत फतेह अली खां और साथियों का गाया नगमा। ये नगमा है जावेद अख्तर का।

अभी श्रोता सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आज सुनिए कड़ी संख्या 1312।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गाँव गणेश धाम परसुरी पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना? हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना? लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओं, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओं, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि ये नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पूरा पाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीमबेटका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीमबेटका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीमबेटका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री बसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
2: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस मां के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन।
1: बसंती, अरे बसी, ओ बसी कहाँ है तू?
2: अरे बुआ क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ बुरांस के फूल चुन रही हूँ।
1: अरे क्या करेगी इनका तू? है
2: क्या करूँगी? गमकुआ इतर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बसी तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हाँ चल घर चल। अरे चल सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।
2: नहीं।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

अरे बसंती, बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी।

0: मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है, मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो। ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको। तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबरा कर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी। वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चल चल।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका तो उपाय क्या है, क्या करें हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गईं कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है।
2: हाँ।
1: गाँव का कोई आदमी

0: कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
1: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
0: आमा, इसका जवाब तेरे पास है।
1: मेरे पास?
0: हाँ, तेरे पास। आमा, तुम इन सब को बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है?
1: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
2: और क्या?
0: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
2: घटेगा?
1: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। खाली हमारे समझने से क्या होता है? हम अकेले क्या कर सके हैं?
0: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
1: चलो, इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
2: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो।
3: चलो चलो
2: चलो,
3: हाँ
2: जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।
4: और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सेल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।

अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजे हैं और इस समय श्रोता सुनते हैं उत्तराखंड के लोकगीत। शुभारंभ कर रहे हैं गढ़वाली लोकगीत के साथ, गायिका है अनीता रावत।

और लीजिए अब सुनिए कुमाऊनी लोकगीत, कलाकार हैं शंकर दत्त उप्रेती।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं उत्तराखंड के लोक गीत। अब समापन में सुनिए अनीशा गोसाई के स्वर में गढ़वाली लोक गीत।

0: श्रोता भी सुन रहे थे उत्तराखंड के लोकगीत। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

0: अजित डोभाल ने कहा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी, पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरोड़ी का ही होता है। तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूट जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
4: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
4: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय

0: निश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से ना आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
0: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स डॉट इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरो मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 30 दिन भी बारिश हो रही है।
4: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं और इस समय श्रोताओं के लिए हम प्रतिदिन लेकर आते हैं खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है पर्वतीय क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली। जानकारी दे रहे हैं श्री दिनेश चंद्र मिश्रा।

0: किसान भाइयों, आप जानते हैं कि हमारा सामाजिक एवं आर्थिक ढांचा कृषि पर निर्भर है। समुचित एवं समय पर सिंचाई अधिक उत्पादन का प्रमुख कारक है। साथ ही खाद एवं उच्च प्रजाति के बीजों का प्रयोग प्रमुखतया सिंचाई पर निर्भर करता है। सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता अगले 10 से 15 वर्षों में लगातार कम होती जाएगी। प्रायः यह देखा गया है कि पर्वतीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सिंचाई की कमी सबसे बड़ी बाधा है। पर्वतीय क्षेत्रों में प्रयुक्त उत्थित सिंचाई अर्थात लिफ्ट इरिगेशन का व्यय बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें पानी को 40 से 80 मीटर तक ऊपर उठाना पड़ता है। इस जल को सतही सिंचाई विधियों से प्रयोग में लाया जाता है। यद्यपि इन सतही सिंचाई विधियों में कम लागत लगती है, लेकिन जब हम इनके तकनीकी एवं फसल उत्पादन के पहलुओं के बारे में सोचते हैं तो पता चलता है कि इनसे अनेक हानियां हैं। पारंपरिक विधियों से सिंचाई करने में सिंचित जल का 30-35% भाग ही पौधों के उपयोग हेतु उपलब्ध हो पाता है, शेष भाग का अपव्यय हो जाता है। इसके साथ ही अन्य परेशानियां जुड़ी हैं, जैसे कम जल प्रयोग क्षमता एवं जल के साथ रासायनिक पदार्थों के गहरे रिसाव के कारण भूमिगत जल का प्रदूषण। इसके अतिरिक्त यह विधि पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती है, ना कि फसल की आवश्यकता पर। अतः इस विधि में पानी की उपलब्धता तथा आवश्यकता के बीच सामंजस्य नहीं होता है। इसलिए अधिकतम जल उत्पादकता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली इजराइल में विकसित की गई है। इसे विश्व की अत्याधुनिक तकनीक माना जाता है। यह प्रणाली जल की अत्यधिक कमी वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। जनसंख्या वृद्धि के साथ फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि अधिक भूमि को सिंचित बनाया जाए। यह तभी संभव है जब हम कुछ फसलों के लिए सतही सिंचाई का क्षेत्रफल घटाकर सूक्ष्म सिंचाई प्रारंभ करें। किसान भाइयों, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में जल का प्रयोग कम मात्रा में बार बार सीधे पौधों की जड़ों में और दबाव की वितरण प्रणाली द्वारा किया जाता है, या कह सकते हैं कि यह प्रणाली प्रेशराइज्ड सिस्टम पर आधारित होती है। इसमें ड्रिप स्प्रे एवं अवभूमि विधियों का प्रयोग किया जाता है। सिंचाई उपकरण द्वारा जल के मुख्य स्रोत से पौधों की जड़ों तक कुछ पुर्जों के साथ साथ प्लास्टिक के पाइपों द्वारा पूरे प्रक्षेत्र में एक जाल सा बिछा दिया जाता है। कृषक जल के जिस स्रोत से प्रक्षेत्र की सिंचाई कर रहा है, उसी स्रोत से इस उपकरण को मुख्य पाइप द्वारा जोड़ा जाता है। जल मुख्य पाइप के द्वारा उप मुख्य पाइप में आता है, जहां पर यह फिल्टर से गुजरता है। फिल्टर द्वारा जल को छन्नी से छानकर एवं बजरी एवं बालू से गुजारकर शुद्ध किया जाता है, और इसके बाद यह जल पार्श्विक पाइप में आता है, जिसको हम लेटरल पाइप कहते हैं, एवं अंत में माइक्रो ट्यूब अथवा ड्रिपर अथवा इनलाइन ड्रिपर अथवा स्प्रिंकलर के द्वारा पौधे के पास गिरने लगता है। सूक्ष्म सिंचाई में जल का दबाव उत्पन्न करना आवश्यक होता है, जिसके लिए उपलब्ध का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसान भाइयों, यह पद्धति ग्रेविटी गुरुत्व पर आधारित है। ऊपर के खेत में पॉलीटैंक बनाकर टैंक से बाहर की ओर जाने वाले पाइप से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को जोड़कर नीचे के खेतों में गुरुत्व आधारित सूक्ष्म सिंचाई की जाती है। यदि निचाई से जल उठाना है तो सौर ऊर्जा अथवा विद्युत से चलने वाली मोटर पर आधारित पंप का प्रयोग कर सकते हैं। यह अपकेंद्रीय पंप होते हैं, जिन्हें हम सेंट्रिफ्यूगल पंप कहते हैं। चूषण पाइप के द्वारा पानी आंतर नोदक के मध्य में प्रवेश करता है, यानी कि सक्शन के द्वारा। इसमें जैसे आंतर नोदक घूमता है, यह पानी को बाहरी किनारों की ओर फेंकता है। वॉल्यूट के अंदर का पानी तब तक दाब में रहता है जब तक यह बाहर नहीं आ जाता है। किसान भाइयों, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के घटक मुख्य पाइप, उप मुख्य पाइप, पार्श्विक पाइप, ड्रिपर, फिल्टर एवं वेंचुरी हैं। जंग व अवरोध को कम करने के लिए साधारणतः ठोस पीवीसी अर्थात पॉलीविनाइल क्लोराइड और एसडीपी अर्थात हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पदार्थ के बने मुख्य पाइप प्रयोग में लाए जाते हैं। साधारणतः मुख्य पाइप को भूमि के नीचे रखा जाता है और ये उपमुख्य पाइप को पानी उपलब्ध करता है। पाइप जिनका व्यास 65 मिलीमीटर और उससे ज्यादा हो और जो 4 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दबाव को सह सकते हैं, मुख्य पाइप के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। उपमुख्य पाइप एक प्रवाह नियंत्रक की तरह कार्य करता है, जिसका उपयोग पानी के दाब को अनुकूल बनाए रखना है, जिससे कि पानी की एक निश्चित मात्रा ही पार्श्विक पाइप में पहुंचे। उपमुख्य पाइप के लिए पीवीसी एवं एसडीपी आदि का उपयोग किया जाता है। पाइप जिनका व्यास 32 मिलीमीटर या उससे अधिक हो और जो 4 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दाब सह सकते हैं, उनका प्रयोग उपमुख्य पाइप के लिए किया जाता है। उपमुख्य पाइप को आवश्यकता अनुसार भूमि के ऊपर या नीचे रखा जाता है। यह जल लेकर पार्श्विक पाइप को उपलब्ध कराते हैं। इन पाइपों में पार्श्विक पाइप जुड़े जाते हैं। किसान भाइयों, पार्श्विक पाइप जिन्हें हम लेटरल पाइप कहते हैं, वह LLDPE अर्थात लीनियर लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन से निर्मित पतले पाइप होते हैं जिनको उपमुख्य पाइप से जोड़ा जाता है। ये दो साइजों में आते हैं, 12 मिलीमीटर एवं 16 मिलीमीटर। ये पाइप पौधों के तनों के आसपास फैले रहते हैं। पार्श्विक पाइप में बाहर से ड्रिपर जुड़े होते हैं अथवा इनलाइन ड्रिपर पार्श्विक पाइप में ही समाहित होते हैं। ड्रिपर प्लास्टिक से निर्मित एक छोटा सा पुर्जा है जिसको पार्श्विक पाइप से जोड़ा जाता है। इसके द्वारा ही पौधे को बूंद बूंद कर जल प्राप्त होता रहता है। यह विभिन्न निस्तरण क्षमताओं के होते हैं, जैसे 4 लीटर प्रति घंटा, 6 लीटर प्रति घंटा आदि। ड्रिपर की संख्या पौधों की जल आवश्यकता अनुसार रखी जाती है। बागवानी हेतु सामान्यतः 2 या 3 ड्रिपर प्रति पौधे की आवश्यकता होती है। पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 सेंटीमीटर वाली सब्जियों जैसे जाड़ों में पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, लाही एवं गर्मियों में शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन आदि हेतु मात्र एक ड्रिपर 4 पौधों हेतु पर्याप्त है। प्रयोग हेतु पीसी अर्थात प्रेशर कंपनसेटिंग ड्रिपर उपलब्ध हो गए हैं। प्रेशर कंपनसेटिंग ड्रिपर की यह विशेषता होती है कि वह खेत की ऊंचाई एवं निचाई के अनुसार समायोजन करके एक समान निस्तरण क्षमता से पौधे को जल उपलब्ध कराता है। किसान भाइयों, फिल्टर सिंचाई के स्रोत से पौधे तक भेजे जाने वाले जल को शुद्ध करता है। सामान्यतः स्क्रीन फिल्टर ही इस कार्य हेतु उपयुक्त है जिसमें छन्नी का प्रयोग किया जाता है, परंतु उन विशेष परिस्थिति में जब सिंचाई का जल जो है हम गधेरे से या गूल से ले रहे हों जिसके जल में बालू मिली हो सकती है या अन्य माध्यमों का प्रदूषित जल उपयोग में लाया जा रहा हो, तो उस दशा में मीडिया फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। मीडिया रूप में बजरी एवं बालू भरी रहती है। मीडिया फिल्टर में अशुद्धि जमा हो जाने पर उसमें जल प्रवाह की दिशा विपरीत करके बैक वॉशिंग की जाती है। फिल्टर का प्रयोग करने से ड्रिपर में अशुद्धि नहीं आती है जिससे उनकी आयु बढ़ जाती है। किसान भाइयों, मैं आपको एक अति आधुनिक तकनीक के बारे में बताऊंगा जिसे वर्तमान में विकसित देशों के किसान प्रयोग में ला रहे हैं, किंतु हमारे देश के किसान इसका नाके बराबर ही प्रयोग कर रहे हैं। इस अति आधुनिक तकनीक का नाम है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन का अर्थ है सिंचाई के जल के साथ ही खाद का प्रयोग। वेंचुरी द्वारा खाद इंजेक्ट करते हैं। जब जल संकीर्ण नली से होकर गुजरता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, दाब यानी कि प्रेशर कम हो जाता है और यह एक चूषक प्रभाव का निर्माण करती है यानी कि सक्शन पैदा होता है। चूषक प्रभाव के कारण तरल खाद खाद कुंड से एक नली की मदद से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में प्रवेश करती है। नाइट्रोजन और पोटेशियम ऐसे दो मुख्य तरल पोषक तत्व है जिनका प्रयोग फर्टिगेशन के दौरान ज्यादा कुशलता से किया जा सकता है। फर्टिगेशन में ज्यादातर यूरिया अन्य नाइट्रोजनीकृत खादों की अपेक्षा अधिक सरलता से प्रयोग की जाती है। यूरिया जो है वो घुलनशील खाद है और यह साधारणतः पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है और साथ ही माइक्रोट्यूब या डिपर में अवरोधन भी पैदा नहीं करती है यानी उनको चोक नहीं करती है। यदि आवश्यक हो तो पोटाशिक खाद जैसे पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग भी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के साथ किया जा सकता है। किसान भाइयों, उबड़ खाबड़ भूमि में सूक्ष्म सिंचाई सुगमता पूर्वक कार्य करती है। कृषक अथवा बागवान को भूमि में मेड़ या नाली बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। सतही सिंचाई में मेड़ या नाली बनाने में श्रम तो लगता ही है, साथ ही भूमि भी व्यर्थ चली जाती है। इस पद्धति द्वारा सिंचाई के साथ ही उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग किया जा सकता है। इससे न केवल इनकी बचत होती है बल्कि श्रम व समय भी बचता है। सतही सिंचाई की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई द्वारा उपज की पैदावार एवं गुणवत्ता में वृद्धि होती है, जल की बचत होती है एवं उपज समय से पूर्व प्राप्त होती है। सूक्ष्म सिंचाई द्वारा सिंचित फसलों में खरपतवार कम उगते हैं क्योंकि इसमें जल आवश्यकता अनुसार केवल पौधों की जड़ में ही दिया जाता है। 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हेतु सूक्ष्म सिंचाई का व्यय जो है वो 7,500 रुपए है एवं इसकी आयु लगभग 10 वर्ष की है। उत्तराखंड में कृषकों एवं बागवानों को सूक्ष्म सिंचाई का उपकरण क्रय करने तथा स्थापना आदि की लागत पर अनुदान की व्यवस्था केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा की गई है। सूक्ष्म सिंचाई हेतु 60% अनुदान छोटे सीमांत कृषकों हेतु है। अन्य किसानों हेतु 45% अनुदान उपलब्ध है। अनुदान का 90% केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त है। हर खेत को पानी के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल को सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत मुख्य पाइप, उपमुख्य पाइप, लेटरल पाइप, ड्रिपर कनेक्टर, स्क्रीन फिल्टर एवं इसकी स्थापना पर अनुदान अनुमन्य है। अनुदान के अतिरिक्त अवशेष धनराशि की व्यवस्था बैंकों से ऋण के माध्यम से कराए जाने की व्यवस्था है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने हेतु फर्मों का पंजीकरण किया गया है। फर्म यह कार्य अपने अधिकृत डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से करती है। तकनीकी प्लान से लेकर रखरखाव तक के सभी कार्य वही करते हैं।
1: पर्वतीय क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, इस विषय पर खेती की बातें कार्यक्रम में श्रोता भी सुन रहे थे श्री दिनेश चंद्र मिश्रा।

से जानकारी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से इस सभा के शेष और सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में 2:45 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार पेश किया जाएगा। आज के फनकार होंगे मशहूर अभिनेता राज बब्बर। अपराह्न 3:10 पर पीपल्स पद्मा और आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होगा। श्रोताओं, आज हमारी विशेष सभा आरंभ होगी शाम 4:00, जिसमें 4:10 पर आप सुनेंगे पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। शाम 5:00 राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुना जा सकेगा। और रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। शाम 4:10 पर पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी देहरादून केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में चर्चा सुनिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती और स्वस्थ निद्रा चक्र के लिए योग विषय पर भी चर्चा सुनवाई जाएगी। श्रोताओं, आज रात 10:00 खेल दर्पण कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले होगा, जिसमें आज आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रस्तुति रहेगी, जिसमें खिलाड़ी कोच एवं रेफरी वंदना सिंह से भेंटवार्ता प्रसारित होगी। 16वें एशियन जूनियर चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडल विजेता अखिलेश सिंह से भेंटवार्ता और माउंटेन बाइकर भरत साह से गीता कनवाल की भेंटवार्ता भी सुनवाई जाएगी। प्रस्तुतकर्ता होंगे संजय जोशी। समय याद रखिएगा, आज रात 10:00 खेल दर्पण कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले होगा। शाम 6:41 पर भक्ति संगीत सुनवाया जाएगा, जिसमें आज आप सुनेंगे भजन। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, संध्या 7:30 पर देहरादून केंद्र से रिले होंगे। शाम 7:00 किसान वाणी कार्यक्रम में आज की बातें खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण विषय पर होंगी। खेती बचाव अभियान के तहत सुनेगा जैविक खेती के फायदे विषय पर क्षेत्र संकलित कार्यक्रम। इसके अलावा चर्चा सुनिएगा ड्रोन का कृषि में उपयोग। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का उपयोग और लाभ उठाकर फसल विविधीकरण के माध्यम से आय अर्जन, इस विषय पर गोपाल दद्दानी से भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे शाम 7:40 पर और रात 9:15 पर इंद्रधनुष में। रात 8:00 सुनिएगा सुगम संगीत सबरस और रात 9:30 पर श्रोता गजलों का साप्ताहिक फरमाइशी प्रोग्राम सुनेंगे महफिल। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एक ही फनकार फिल्म संगीत का कार्यक्रम। एक ही फनकार फिल्म संगीत के हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, और कीजिए स्वीकार अपने दोस्त अंजू पांगते का स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, एक ऐसे मशहूर कलाकार हैं, अभिनेता हैं, समाज सेवी हैं, राजनेता हैं, यानी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी कलाकार हैं। उनकी फिल्म में जब एक मधुर तराना छेड़ा गया तो उनके होठों से वो गाना छू गया तो अमर हो गया वो गीत भी और वो किरदार भी। समझ गए होंगे आप, आज के फनकार हैं जाने माने मशहूर अभिनेता राज बब्बर। आज उनका जन्मदिन है

कार्यक्रम की ओर से हम उन्हें ढेर सारी असीम अनंत शुभकामनाएं देते हैं और आज उन्हीं की अभिनीत फिल्मों का सफर तय करते हैं एक ही फनकार में।

श्रोताओं, 23 जून 1952 को राज बब्बर का जन्म उत्तर प्रदेश के टुंडला आगरा में हुआ। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने आगरा से ही की और 1975 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उन्होंने एक्टिंग का कोर्स पूरा किया और फिर उनका सफ़र शुरू हुआ एक्टिंग की दुनिया में। एक अपने साक्षात्कार में राज बब्बर ने बताया था कि एक्टिंग का शौक़

के सिने करियर की शुरुआत हुई और इस साल 100 दिन सास के इस फिल्म से उन्हें पहली बार फिल्मी दुनिया में कदम रखने का मौका मिला।

श्रोताओं, राज बब्बर ने अपने सिनेमा करियर की जो शुरुआत की, साल 1980 में प्रदर्शित इस फिल्म का जिक्र मैंने अभी आपसे किया, सऊदीन सास के से की थी, और इस फिल्म में उन्होंने अभिनेत्री रीना रॉय के पति की भूमिका निभाई थी। हालांकि ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई, लेकिन ये नायिका प्रधान फिल्म होने के कारण राज बब्बर को ज़्यादा नोटिस नहीं किया गया, और ये सफल फिल्म होने के बावजूद अभिनेता को, बतौर अभिनेता राज बब्बर को फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था। आश्वासन तो सभी देते थे, लेकिन उन्हें काम करने का अवसर कोई नहीं देता था। इस बीच राज बब्बर को कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने छोटे छोटे रोल से शुरुआत की, लेकिन फिल्में वो करते रहे जिनमें जो चर्चित फिल्मों का वो हिस्सा रहे, जैसे नजराना प्यार का, साजन मेरे मैं साजन की, जज्बात, आप तो ऐसे न थे, जैसी चर्चित फिल्मों में उन्हें काम करने का मौका मिला, और यहीं से धीरे धीरे उनकी पहचान बढ़ने लगी।

श्रोताओं, साल 1980 में ही प्रदर्शित फिल्म इंसाफ का तराजू, जो फिल्म आई, इस फिल्म से किस्मत चमकी राज बब्बर की। और फिल्म निर्माण के समय की बात करें तो बीआर चोपड़ा ने इस फिल्म के लिए कई लोगों को फिल्म की कहानी सुनाई, लेकिन कोई भी बतौर अभिनेता इस फिल्म में काम करने को तैयार नहीं हुआ। बाद में जब उन्होंने फिल्म की कहानी राज बब्बर को सुनाई तो उन्होंने इस फिल्म को चुनौती के तौर पर लिया और हामी भर दी, और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और वो काफ़ी हद तक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। हालांकि इस फिल्म में नकारात्मक उनकी भूमिका थी, लेकिन उस फिल्म के ज़रिए ही वो अपने को स्थापित कलाकार के तौर पर जाने जाने लगे।

साल 1984 में प्रदर्शित हुई फिल्म आज की आवाज, और इस फिल्म में वो नजर आए स्मिता पाटिल के साथ एक प्रोफेसर के किरदार में। और इस रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन भी मिला था, और इस फिल्म का किरदार भी आज तक दर्शक भूले नहीं हैं।

तो श्रोताओं, खलनायक की इमेज की परवाह किए बिना रोमांटिक फिल्मों में उन्होंने अपना अभिनय जारी रखा और कई फिल्मों में वो जानी मानी नायिकाओं के साथ नज़र आए, जिनमें पूनम ढिल्लो के साथ पूनम और अनीता राज के साथ प्रेम गीत ये फिल्में सुपरहिट रहीं। इसके अलावा वो वारिस, एतबार, भीगी पलकें जैसी कई अन्य फिल्मों में भी उनके किरदार को सराहा गया।

श्रोताओं, अस्मिता पाटिल के अपने अफेयर की वजह से चर्चाओं में रहने वाले राज बब्बर ने दो विवाह किए। उनकी पहली पत्नी नादिरा बब्बर हैं और नादिरा बब्बर से राज बब्बर के दो बच्चे हैं, आर्य बब्बर और जूही बब्बर। और उन्होंने दूसरा विवाह मशहूर अभिनेत्री अस्मिता पाटिल से किया और जल्द ही, लेकिन उनका साथ छूट गया, अपने पहले बच्चे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के कुछ ही दिनों में अस्मिता पाटिल का निधन हो गया। और इसके बाद राज बब्बर फिर से नादिरा के पास लौट आए और आज भी वो फिल्मों में सक्रिय हैं।

श्रोताओं, अपने ज़बरदस्त अभिनय कौशल के लिए जाने जाते हैं राज बब्बर। उनके हर कई किरदार को फिल्मों में जो भी उन्होंने भूमिकाएं निभाई हैं उन्हें दर्शकों ने खूब प्यार दिया और ज़्यादातर खलनायक के रोल में वो पसंद किए गए। और बॉलीवुड में काम करने के साथ ही उन्होंने राजनीति में भी अपना दमखम दिखाया और राज बब्बर बाद में चरित्र अभिनेता के तौर पर भी फिल्मों में नज़र आए, जिनमें कॉरपोरेट, बॉडीगार्ड, कर्ज, फैशन, साहब बीवी और गैंगस्टर 2, बुलेट राजा, तेवर जैसी फिल्मों में उन्होंने

बेहतरीन अभिनय किया और आज भी वो चाहे राजनीति की दुनिया हो, समाज सेवा की दुनिया हो और फिल्मों में वो सक्रिय हैं। हम यही कामना करते हैं उनके जन्मदिन पर कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा सक्रिय रहें।

तो आज का एक ही फनकार प्रोग्राम केंद्रित था। जाने माने मशहूर अभिनेता, राजनेता, समाजसेवी राज बब्बर पर एक ही फनकार में बस आज इतना ही। इजाज़त दीजिए अंजू पांखी को। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। 3:10 होने को हैं। अगला प्रसारण देहरादून केंद्र से रिले होगा।

0: FM 100.9
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। हमारी विशेष सभा में संध्या 4 बजे हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी विशेष सभा आरंभ हो रही है। शाम के 4 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

आकाशवाणी देहरादून है। अब आप आशुतोष सुनियाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण स्मरण किया। मानसून सीजन के मद्देनजर राज्य सरकार ने पर्वतीय जिलों के दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर तैयारी पूरी की। इसके तहत जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का राशन एक साथ उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था की गई है। आगामी 1 जुलाई से इस त्रैमासिक राशन का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में सचिव समिति की बैठक ली। राज्य के विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए संबंधित अधिकारियों को केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और वित्तीय प्रबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। राजधानी देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र स्थित लालपुर के पास एक सिटी बस की चपेट में आने से 6 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लिया है और मामले की जांच की जा रही है। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रतिनिधियों से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के सफल संचालन में सहयोग की अपेक्षा की। साथ ही अभियान को समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार मीणा ने 31वीं वाहिनी PAC रुद्रपुर में 3 दिवसीय पुलिस हैंडबॉल और बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में चंपावत, पिथौरागढ़ और उधमसिंह नगर सहित राज्य के 9 जिलों के 176 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में ऊखीमठ ब्लॉक के मक्कूमठ ग्राम पंचायत में

0: बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में चंपावत, पिथौरागढ़ और उधमसिंह नगर सहित राज्य के 9 जिलों के 176 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में ऊखीमठ ब्लॉक के मक्कूमठ ग्राम पंचायत में आयोजित 14 दिवसीय रिंगाल व बांस शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्रामीणों को विभिन्न उत्पाद बनाना सिखाया जा रहा है, साथ ही उद्यमिता, लागत लाभ, ब्रांडिंग और बैंक ऋण की जानकारी दी जा रही है। और मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 4:02 हुए हैं। लीजिए शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिए पंडित शिवराम का हारमोनियम पर बजाय राग पूरिया धनाश्री।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित शिवराम का हारमोनियम पर बजाय राग पूरिया धनाश्री। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 4:10 हुए, थोड़ी ही देर में अब अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित शिवराम का हारमोनियम पर बजाय राग पूरिया धनाश्री। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 4:10 हुए, थोड़ी ही देर में अब अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनिए साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुनी गई प्रोफेसर मंगला कपूर के साथ हुई विशेष बातचीत, जो बचपन में एसिड अटैक का सामना भी कर चुकी हैं। इस संवाद में उन्होंने अपने जीवन संघर्ष, करियर और सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। चर्चा का संचालन कर रहे हैं मनीष सिंह।
1: नमस्कार, मैं मनीष सिंह वाराणसी में हूँ और हमारे सामने हैं मंगला कपूर जी। आइए जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा और कैसा बीता ये बचपन?
2: बचपन क्या होता है मैं जानती नहीं, क्योंकि 12 वर्ष की अवस्था थी तब मुझ पे एसिड अटैक किया गया, तो उसके बाद का जो जीवन है सारा हॉस्पिटल में ही बीता। तो बचपन नाम की जो चीज होती, जो खेलते कूदते बिताते हैं लोग, वैसा कुछ तो मेरे साथ गुजरा नहीं। फिर लगातार हॉस्पिटल में थी, ऑपरेशन होते गए शरीर के जगह जगह के, यहाँ भी हुए, कुछ पटना में हुए, तो कुल 36-37 ऑपरेशन मेरे हुए।
1: किस तरीके से एसिड अटैक के बाद आपकी जिंदगी बदल गई?
2: ऐसा है, एसिड अटैक के बाद तो ऐसा ही नहीं था कि शायद जी पाऊंगी, लेकिन पहले तो जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब जी गई थी तो फिर उसमें परिवार वालों की मेहनत, माता पिता का पूरा सहयोग, और ठीक होते होते ही मुझे बहुत समय लग गया। उसके बाद बाहर निकलना या समाज में उठना बैठना, मैं तो खैर टूट ही गई थी। सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, हर तरह से हम लोग पूरा परिवार डिस्टर्ब था। तो वो यात्रा बड़ी दुखद रही और बहुत संघर्ष भरी रही।
1: किस तरीके से, कौन सी ऐसी शक्ति थी, कौन सी ऐसी हिम्मत थी कि आपने फिर से सर्वाइव किया?
2: देखिए, पारिवारिक जो परिवेश हमारा रहा है वो आध्यात्मिक रहा है, और शक्ति की बात तक देखिए, छोटी बच्ची में या यंग हो रही थी उस समय तक इतनी कोई शक्ति तो अंदर आती नहीं है। पढ़ने लिखने की उम्र में तो मैं बेड पे पड़ गई, और जब बेड पे पड़ गई तो ये जरूर है कि मुझे बचाने का, उठ खड़ा करने का श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। तो जब मैं ठीक हुई, घर में बैठी, तो मेरे पिताजी को हमेशा ही चिंता रहती थी कि बच तो गई है लेकिन जीवन कैसे होगा, जीवन कैसे चलेगा, पढ़ना लिखना भी छूट ही गया था उसकी वजह से। तो वो बराबर प्रेरित करते रहे कि मतलब बेटा तुम्हें कुछ करना है, फिर से पढ़ाई चालू करो। और संगीत में बचपन से बहुत रुचि रही, तो उनको ये लगा कि ना वो संगीत ही सिखाए ताकि इसका मन भी उसमें उलझा रहे और कुछ कर सके उसमें। तो उन्होंने म्यूजिक स्कूल में मुझे डलवा दिया था, फिर वहां मैंने संगीत सीखना शुरू किया और फिर तब लोगों का सामना करना शुरू किया, नहीं तो मैं तो बिल्कुल निराश हताश सी घर के कोने में बंद हो गई थी। और ये जो उम्र बढ़ रही थी, डिप्रेशन टाइप का हो रहा था मुझे कि ये तो बड़ा हादसा हो गया, मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगी आगे। तो पिताजी हमेशा हिम्मत दिलाते थे, फिर मैंने राह पकड़ी संगीत की।
1: संगीत की दुनिया में आने का मन में कैसे ख्याल आया और क्या मिला संगीत से?
2: ऐसा है, मेरे पिताजी सितार बजाते थे तो उनको संगीत बहुत पसंद था, और मेरा गला बाकी बचपन से बहुत अच्छा था, तो बड़े बड़े संगीतज्ञ भी जो पिताजी के दोस्त थे घर पे आया करते थे, तो मेरा गला अच्छा था तो कभी कुछ बंदेश, कभी कुछ सिखा जाते थे। वो तो सांगीतिक माहौल जो है वो पिताजी से ही मिला, और उन्होंने ही ये सजेस्ट किया कि इसको म्यूजिक में डालना चाहिए, ये सोच के नहीं ये कभी मेरा प्रोफेशन बन जाएगा, यहाँ कहीं ना कहीं उलझी रहे, कुछ करती रहे, उसी बहाने लोगों का सामना करना सीखे, लोगों से बात करना सीखे। तो फिर संगीत को पकड़ा, उसके बाद फिर उसी पे चलती गई। फिर बीएचयू में मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ से पीएचडी तक की पढ़ाई मैंने की, और स्टेट प्रोग्राम फिर मैं करने लगी जहाँ मुझे काफी मान सम्मान मिला। मेरी आवाज को लोगों ने हाथों हाथ लिया, मुझे काशी की लता का सम्मान भी मिला है। तो इस तरह करके वो यात्रा वैसे शुरू हुई। और विशेष बात बताने लायक यही है कि जब मैं पीएचडी करने के बाद जब नौकरी ढूंढने लगी, तो फिर बीएचयू में मुझे नौकरी मिल गई, और फिर वहाँ अध्यापन का कार्य मैंने शुरू किया, तो बच्चों के साथ रम गई, फिर अच्छी तरह अपने कर्म को निभाती रही, सिखाना बच्चों के साथ। फिर मैं लेक्चरर के पद पे हुई थी, फिर लीडर प्रोफेसर तक की जर्नी मैंने वहाँ।
1: क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव लगा बीएचयू में शिक्षक के दौरान?
2: बीएचयू ने तो मुझे बहुत प्रेम दिया, जब मैं सीख रही थी, मेरे गुरुजनों का बहुत आशीर्वाद था, वो मुझे मतलब बराबर प्रेरित करते रहते थे आगे बढ़ने। उन लोगों से भी बहुत स्नेह मिला कि नहीं मतलब बहुत अच्छा गाती है तो तुम्हें तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच ही जाओगी। तो वाकई आवाज अच्छी थी जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ती चली गई। और मेरा बच्चों के साथ जो एक्सपीरियंस है, मैंने 15 बच्चों को पीएचडी भी कराई मेरे अंदर में, तो लोग मुझे कभी उन्होंने न टीचर मुझे समझा न मैंने समझा कि स्टूडेंट है, अपने बच्चों की तरफ वो समझते, और वो लोग मातृवत और बहुत अच्छे मुझे माँ ही कहते थे अभी तक। हालांकि सभी बच्चे कहीं ना कहीं अच्छी जगह स्थापित हो गए हैं, लेकिन तो प्यार करते हैं उनका, फोन वगैरह आता रहता, आते हैं तो मिलने भी आते हैं, तो वो चल रहा है। जो मैं आपको बता रही हूँ कि बचपन से जो कहानी मेरी शुरू हुई, तो उन संघर्षों को मैंने सीरत के अंतर्गत लिखा है ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले जो थोड़ी सी नाकामयाबी से संघर्ष करने से चुराते हैं जी, नहीं करना चाहते हैं, तो उन लोगों को एक प्रेरणा मिले। सीरत मैंने इसीलिए लिखी और उसको लिखवाने के पीछे भी एक महिला हमारे कॉलेज में ही हिंदी की प्रोफेसर थी, उन्होंने जब मेरे बारे में थोड़ा सा सुना तो उन्होंने कहा कि ममता अपनी कहानी को लिख डाली और लोगों को बहुत प्रेरणा देगी। तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर इस तरह सीरत सामने आई। तो फिर बॉम्बे तक जब उसकी वो पहुंची तो फिर वहां से डायरेक्टर आए थे, मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी, उसके बाद फिर पूरी फिल्म जो है मराठी में बनी और महाराष्ट्र में वो प्रदर्शित भी की गई, देखने को मिलेगी सभी को।
1: पद्मश्री सम्मान क्या खास मायने हैं इस सम्मान के आपकी जिंदगी में?
2: अरे मुझे बहुत मायने रखता है कि मतलब सोच नहीं सकती। उसके पहले भी मुझे देखिए स्टेट लेवल के भी अवार्ड मिले हैं, अच्छे अच्छे अवार्ड काफी मिले हैं। मेरा काम देख करके मेरी लगन और मेरी निष्ठा, यानी 36 ऑपरेशन के बाद शरीर टूट जाता है, मेरी हड्डी इतनी कमजोर हो गई, पैर सा भी कहीं गिर जाती हूँ तो टूट जाती है, लेकिन वो भी झेला। सब झेलते हुए भी मैं अपने कर्म में लगी हुई हूँ और अभी तक रिटायर हो गई हूँ लेकिन मैंने कर्म नहीं छोड़ा है। मैं अभी भी फील्ड वर्क करती हूँ, दिव्यांगों के साथ जुड़ के काम करती हूँ और भी संस्थाओं से जुड़ी हूँ, बैठी नहीं हूँ, कुछ न कुछ करती रहती हूँ। और छठी पुस्तक का लेखन अभी आधे से ज्यादा हो चुका है, फिर वो भी जल्दी ही आ जाएगी।
1: शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों के लिए कौन सा संदेश देना चाहेंगे?
2: शरीर बहुत मायने नहीं रखता, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को दिखा है। एक उम्र के बाद एक विकृति सभी की चेहरे पर आ जाती है, फिर वो चार्म नहीं रह जाता है कि जो उम्र के साथ साथ बढ़ना ही है, बाद में बहुत खूबसूरती नहीं रह जाती है तो शरीर खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन आपका कर्म जो है वो हमेशा जीवित रहेगा। जो बहुत खूबसूरत रह जाने वाले लोग थे लेकिन अंत में देखिए लोग कैसे लाचार हो जाते हैं, तो वो तो देखिए शरीर का धर्म है, होगा ही। लेकिन मेरे साथ विशेष इसलिए था कि मेरे ऊपर एसिड अटैक से मेरी नाक गल के निकल गई, कान खराब हो गया, चेहरा विकृत हो गया, तो ये विशेष रूप से जो विकृति आई जो कि बचपन से ही शुरू हो गई। मुझे संबोधन मिलते थे इसका मुंह कैसा है, और उस समय मैं नील थी, मेरे पास कुछ था नहीं, लेकिन इतनी उम्र बीतने के बाद ये समझ में आया कि आपके अंदर जो अंदर की जो खूबसूरती है, यानी आपके अंदर कोई विशेष बात है, आपने किसी फील्ड में कुछ विशेष अलग हटके किया है, तो उसको दुनिया सम्मान से देखती है और देखती रहेगी। कर्म लेकिन अच्छा करते रहे। कितने सारे एसिड अटैक विक्टिम तो बहुत सारे लोग काफी हुए। बस यही कहना चाहूंगी कि देखिए अपनी जो इच्छा शक्ति है, अपना जो विल पावर है, क्षति हो गई कहीं से कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर की जो प्रतिभा है उसको कोई नहीं जला सकता। आपके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा तो होगी किसी क्षेत्र में, अगर आप जिंदा हैं तो फिर से लड़िए समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई है। और आज तो बहुत सारे विकल्प हैं, आप इस क्षेत्र में कंप्यूटर के चले जाइए तो संगीत में, म्यूजिक में भी, ये सारे और परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, इतने रियलिटी शोज आते हैं, तो जिसमें जो भी प्रतिभा हो वो आगे बढ़ के उसको अपना संवारे और वही एक रास्ता पकड़ के हिम्मत नहीं हारे, उस पे चलता रहे जब तक जीवित, लोगों के लिए प्रेरणा बने।
1: क्या बाकी रह गया आप कुछ करने के लिए कला के क्षेत्र में?
2: कोई भी क्षेत्र हो, मुझे ये नहीं लगता कर्म के लिए कोई उम्र नहीं होती है, और आदमी जब तक जीता है तब तक कर्म करते रहना चाहिए, जब तक शरीर चल रहा है। अगर आप शरीर को चलाते रह रहे हैं तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है, अंतिम समय तक लड़ना चाहिए। और जो भी मुझसे अच्छे से अच्छा हो पाएगा वो करना चाहूंगी, अभी भी कर रही हूँ, आगे भी जब तक है जिंदगी, जब तक मैं सक्षम हूँ चलने फिरने में, मैं बिल्कुल करूंगी।
1: आकाशवाणी से बात करने के आपका बहुत बहुत आभार,
2: धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी, जिसके अंतर्गत आपने सुना साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुनी गई प्रोफेसर मंगला कपूर के साथ हुई विशेष बातचीत। चर्चा का संचालन कर रहे थे मनीष सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट न्यूज, योर अल्टीमेट
4: FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। शाम के 4:20 हुए हैं। लीजिए शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिए पंडित सियाराम का ध्रुपद गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग शंकरा।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित सियाराम का ध्रुपद गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग शंकरा। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक कलाकार। श्रोताओं, कार्यक्रम एक कलाकार में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के कलाकार हैं फिल्म अभिनेता, राजनेता और

सामाजिक समाजसेवी राज बब्बर। आज के इस कार्यक्रम में हम बातें करेंगे इनके जीवन से जुड़ी बातों पर, साथ ही सुनवाएंगे आपको इन पर फिल्माए गए फिल्मी गीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इन पर फिल्माए गए इस गीत के साथ।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम में कलाकार। आज के कलाकार हैं अभिनेता राज बब्बर। श्रोताओं, अभिनेता राज बब्बर का जन्म आज ही के दिन 23 जून 1952 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के टुंडला गांव में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा आगरा में ही संपन्न हुई। बचपन से इनका रुझान रंगमंच और नाटकों की ओर था और अभिनय के प्रति इसी जुनून ने इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया और यहाँ से स्नातक करने के बाद उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई का रुख किया और जहाँ पर इन्होंने एक अपना संघर्षमय शुरुआती दौर देखा। इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे, सुन पाते हैं इन पर फिल्माया गया कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया और इसके बाद शोतम राजबब्बर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1980 और 90 के दशक में इन्होंने कई ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनय किया है जिन्हें खूब सराहना मिली है। उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध फिल्में रही हैं हम पाँच, उमराव जान, प्रेम गीत, निकाहा, आज की आवाज़, मजदूर, दिलवाले आदि। शोतम ने कहा और आज की आवाज़ ऐसी फिल्में रही हैं जो जिसमें उनकी अभिनय को एक अलग मुकाम पर पहुंचाया है। आइए आपको सुनवाते हैं इनके द्वारा अभिनीत फिल्म से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: श्रोताओं, अभिनेता राज बब्बर ने हिंदी फिल्मों के अलावा पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिनमें मरहिदा, दीवा, लौंगदा लश्कारा जैसी कलात्मक फिल्मों में अभिनय किया है। साथ ही इन्होंने और भी अनेक पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया है। साथ ही इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर बब्बर्स फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी भी शुरू की है। श्रोताओं, अभिनेता राज बब्बर एक अभिनेता के साथ साथ एक अच्छे राजनेता भी रहे हैं, साथ ही सामाजिक सेवा के कार्यों से भी जुड़े हैं, जिन्होंने नशा मुक्ति, एड्स की रोकथाम और मानसिक रूप से अक्षम लोगों की सेवा के लिए अनेक कार्य किए हैं। श्रोताओं, इस प्रकार राज बब्बर बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जो आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं। आज जन्मदिन के अवसर पर इन्हें ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सुनवाते हैं इनकी फिल्म से कार्यक्रम में ये अंतिम गीत। जगजीत सिंह की आवाज में फिल्म का नाम है प्रेम गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार। आज के कलाकार थे अभिनेता राज बब्बर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर।
1: बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग
0: ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। अब आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

पुरस्कारों से विभूषित होने वाली विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित करेंगी। मैं शालिनी मित्तल अपने साथी अंग्रेजी कमेंटेटर नितेश अरोड़ा के साथ आकाशवाणी की ओर से इस गरिमामय समारोह का सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में मौजूद हैं। ये अवसर केवल पुरस्कार वितरण का नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान देने वाले उन व्यक्तित्वों के प्रति भारत की सामूहिक कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जिन्होंने अपने कार्य समर्पण और

और उत्कृष्ट उपलब्धियों से देश का गौरव बढ़ाया है। 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रथम नागरिक समारोह जो 25 मई को आयोजित किया गया था, आज इसका दूसरा समारोह है, जिसमें 67 विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं और सूची में विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के 6 व्यक्ति और 16 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी शामिल हैं। श्रोताओं, राष्ट्रपति भवन का गणतंत्र मंडप आज अपनी पूरी भव्यता के साथ सुसज्जित है। भारतीय कला, स्थापत्य और लोकतांत्रिक

0: देश के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और अब हम देख रहे हैं गणतंत्र मंडप में आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और अपने स्थान की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री सबको अभिवादन स्वीकार करते हुए, सबको नमस्कार करते हुए और अपनी जगह पर बैठते हुए, सभी लोग उनके साथ खड़े हो चुके थे और अब सब अपने स्थान पर वापस बैठ चुके हैं। नितिश,
1: A warm welcome to all the listeners of Akashvani from Ganatantra Mandap, Rashtrapati Bhavan. In a short while from now, Honorable President Draupadi Murmu will confer the Padma Awards 2026 at the second civil investiture ceremony of this year. The President will confer 65 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 7 Padma Bhushan and 56 Padma Shri. Instituted in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinguished and is of work of distinction, and it is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and ट्रेड एंड इंडस्ट्री।
0: और नितिश, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ गए हैं क्योंकि माननीय उपराष्ट्रपति का आगमन हो रहा है। सीपी राधाकृष्णन अभी यहाँ आगमन हुआ है उनका गणतंत्र मंडप में, सभी को नमस्कार करते हुए।
1: Well, the first citizen of the nation, Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, will be honoring the most distinguished Indians for their exemplary work in various fields. What a proud moment, Shalini, for any citizen when his or her work is recognized by the nation. Proud are the family members of the recipients who are seated here to cheer their family members when the nation is giving to reward their dear ones. A day like this comes once in a lifetime.
0: Indeed, बिल्कुल सही कहा नितिश, यही वो क्षण होता है जब वर्षों की साधना, सेवा और उपलब्धियों को राष्ट्र की सर्वोच्च मान्यता प्राप्त होती है। ये सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि का प्रतीक है बल्कि उस क्षेत्र विशेष के महत्व और उसकी राष्ट्रीय स्वीकार्यता का भी परिचायक है। श्रोताओं, पद्म पुरस्कारों की विशेषता यह है कि इनमें भारत के महानगरों से लेकर दूरस्थ गांवों तक के वो लोग शामिल होते हैं जिन्होंने बिना किसी प्रचार प्रसार के समाज सेवा, लोक कला, जनजातीय संस्कृति, शिक्षा, चिकित्सा और मानवीय कल्याण के क्षेत्र में असाधारण कार्य किए हैं। यही कारण है कि पद्म पुरस्कार भारत की विविधता और समावेशी विकास की भावना का जीवंत प्रतिबिंब माने जाते हैं। हर पुरस्कार के साथ एक प्रेरक जीवन यात्रा जुड़ी होती है नितिश। इन सम्मानित व्यक्तियों ने अपने अथक परिश्रम, नवाचार, सेवा और प्रतिबद्धता से देश को नई ऊर्जा प्रदान की है। आज का ये समारोह भारत की उस भावना का उत्सव है जिसमें उत्कृष्टता को पहचान और सम्मान दिया जाता है।
1: Well, Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The awards are given in various disciplines and the fields of activities that include art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil service, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, Padma Bhushan for distinguished service of high order and Padma Shri for distinguished service in any field. The awards are announced on the occasion of Republic Day every year. And the bugler announced the arrival of Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu.

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की धुन सभागार में मौजूद महार रेजिमेंट सेंटर के मिलिट्री बैंड द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंड मास्टर सूबेदार बीपी गुरुंग के नेतृत्व में।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए। धन्यवाद।
0: और अब औपचारिक रूप से एक स्वीकृति ले गई माननीय राष्ट्रपति से कि आज विधिवत
1: पद्म विभूषण
0: की शुरुआत की जा रही है।
1: श्री पी नारायणन, साहित्य एवं शिक्षा।
0: नारायण जी के नाम से लोकप्रिय श्री पी नारायण राष्ट्रवादी पत्रकारिता के दिग्गज और एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक आयोजक हैं, जिन्होंने केरल में कभी हाशिए पर रहने वाली विचारधारा को व्यक्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
2: Beyond journalism, Sri Narayanan made significant contributions as a scholarly author and a prolific translator. His work as a translator includes the works of V.D. Savarkar, M.S. Galwalkar and Deen Dayal Upadhyay from English and Hindi into Malayalam.
0: पद्म विभूषण माननीय राष्ट्र

0: राष्ट्रपति से ग्रहण करते हुए। बहुत ही गौरव का क्षण।
1: न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त के टी टॉमस लोक कार्य।
0: न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त के टी टॉमस भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। आपको आपराधिक कानून, पुलिस सुधार और निजी व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए काफी जाना जाता है। न्यायमूर्ति टॉमस को वर्ष 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें अन्य पुरस्कारों में भी सम्मानित किया जा चुका है और बहुत सारे उनको पुरस्कार दिए मिल चुके हैं।
2: This is right. Thomas is known for his contributions in the field of criminal law, police reforms and fight against corruption in private professional education fields. He is receiving the Padma Vibhushan from Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu.

0: Padma Bhushan, Dr. Vijay Amritraj, Khel Tennis.
1: डॉक्टर विजय अमृतराज भारत के महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने 14 साल की उम्र से जूनियर स्पर्धाओं में विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया और फिर ओपन इवेंट्स में गए। लगातार 20 वर्षों तक डेविस कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान मिला है, जिसने टीम को 2 बार फाइनल में पहुँचाया है। एक ऐसी उपलब्धि जो भारत के ओपन युग में इतिहास में एक बेजोड़ एग्जाम्पल मानी जाती है। अपना पुरस्कार देते हुए
0: डॉक्टर SKM महिला नंदन, समाज सेवा।
1: SKM कंपनी समूह के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर SKM मलिया नंदन एक प्रसिद्ध उद्यमी होने के साथ विभिन्न सामाजिक कल्याण ट्रस्टों के संस्थापक और एक उपभोक्ता कार्यकर्ता भी हैं।
2: Dr. Melanandan has received several awards and honors, Padma Shri Award for Social Work in 2013, National Productivity Awards, he got it for 8 times and National Safety Awards 2 times. Agriculture and Processed Food Products Export Promotion Awards 5 times.
1: अपना पुरस्कार ग्रहण करते हैं।
0: श्री ममूटी, कला फिल्म अभिनय।
1: ममूटी एक भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्माता है जो दक्षिण भारतीय भाषा के सिनेमा में है, लेकिन मुख्य रूप से मलयालम फिल्म उद्योग में काम करते हैं। 5 दशकों के करियर में श्री ममूटी ने 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें मुख्य रूप से मलयालम के साथ साथ कई तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी के कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है।
2: क्लैड इज इन ए फॉर्मल बंद गला। Shri Mamuti is widely respected as a goodwill ambassador for numerous social causes also and a patron for several
0: Shri Vellapalli Nateshan, Lok Karya.
1: Shri Vellapalli Nateshan, Kerala ke pramukh rajneetik neta aur pratishthit vyakti hain. Shri Nateshan ne के मार्गदर्शन में शिक्षा योगों का सबसे स्थायी योगदान रहा है। श्री नारायण ट्रस्ट के माध्यम से इस नेटवर्क में स्कूल, कॉलेज और तकनीकी केंद्रों सहित संस्थानों की संख्या 40 से बढ़कर 130 हो गई है।
2: एंड श्री नटेशन आल्सो इंट्रोड्यूस्ड फैमिली यूनिट्स एट द शाख लेवल, एक्सटेंडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस रीच इनटू हाउसहोल्ड्स एंड प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर वीमेन्स लीडरशिप, एजुकेशनल सपोर्ट, सेविंग्स प्रमोशन, सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी कोहिजन बियॉन्ड केरला। SNDP units were established in Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Delhi and Andhra, receiving the Padma Bhushan from Honorable President.
0: Dr. Datta Treyodu Nori, Chikitsa Oncology.
1: आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रशस्त ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, अग्रणी चिकित्सक और महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी नेता हैं। 4 दशकों से अधिक के अपने करियर के दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क में विश्व प्रसिद्ध कॉर्नल मेडिकल सेंटर और में ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर और अध्यक्ष के साथ ही कैंसर केंद्र के निदेशक के पद पर कार्य किया है।
2: डॉक्टर नोरी हैज एक्सटेंडेड हिज एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस टू वेरियस गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस टू एस्टैब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर्स इन नियरली 2000। In early 2000, he helped the government of Andhra Pradesh.
0: Shri Shibu Soren, Marnopranth, Lok Karya, unki patni, Shrimati Rupi Soren.
1: Shibu Soren ko Marnopranth ye award diya ja raha hai, jo unki patni lengi aur maane Rashtrapati niche utarte hue unko ye पदक प्रदान करने के लिए पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री सोरेन का 4 अगस्त 2025 में निधन हो गया था। उन्हें श्रद्धापूर्वक विश्वम गुरु के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रमुख आदिवासी जननेता, सामाजिक सुधारक तथा झारखंड आंदोलन के मुख्य शिल्पकारों में से वो एक थे।
2: फॉर मिलियंस श्री सोरेन वॉज मोर देन ए पॉलिटिकल लीडर, ही वॉज ए कस्टोडियन of memory, resistance
0: Shrimati
2: and hope.
0: Alka Yasmik, Kala, Parshugayan.
1: और अब नाम बुलाया गया है अलका याग्निक का, जो भारत की एक प्रख्यात पार्श्व गायिका है और कला के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित कलाकार है। माननीय प्रधानमंत्री को नमस्कार करते हुए झुककर प्रणाम कर रही हैं। हम देख पा रहे हैं चार दशक से अधिक की उल्लेखनीय गायन यात्रा में उनका मधुर स्वर, कलात्मक उत्कृष्टता और निरंतर समर्पण ने भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक विरासत को अत्यधिक समृद्ध किया है।
2: Born on 20th of March 1916 in Kolkata, West Bengal, Srimati Yagnik embarked upon her musical journey with a strong classical foundation that shaped her distinctive artistic sensibility and vocal identity. And her most famous song was Ek Do Teen.
1: बहुत सारे उनके गाने हैं जो अति
0: पद्म श्री श्री नूरुद्दीन अहमद कला निर्देशन।
2: Now we move on to Padma Shri awardees. And Shri Nuruddin Ahmed is a visionary art director, sculptor and set designer who has refined the visual landscape of Ahamiya art and culture through his pioneering work in mobile theater, films and television. The box.
1: आप एक दूरदर्शी कला निर्देशक, मूर्तिकार और सेट डिजाइनर हैं जिन्होंने मोबाइल थिएटर, फिल्मों और टेलीविजन तथा स्मारकीय सार्वजनिक चित्रों में अपनी अग्रणी कार्य के माध्यम से असमिया कला और संस्कृति के परिदृश्य को पुनः परिभाषित किया है। पुरस्कार ग्रहण करते हुए
0: श्री तिरुवरूर भक्त वसलम कला मृदंगम।
1: श्री तिरुवरूर भक्त वत्सलम एक प्रतिष्ठित मृदंगम कलाकार है और कर्नाटक संगीत के काल्य वाद्य परंपरा के सबसे विशिष्ट कलाकार है। श्री भक्त वत्सलम ने 9 वर्ष की आयु से ही अपनी माता के साथ संगीत समारोह में जाना प्रारंभ कर दिया था। और इनके साथ एक खास बात जो मैं बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को कि इनके असाधारण संगीत प्रतिभा के कारण आकाशवाणी ने उन्हें एक अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट सम्मान प्रदान किया। उन्हें बीच की बी हाई श्रेणी को पार करते हुए बी ग्रेड से सीधे ए ग्रेड में पदोन्नत कर दिया गया, जो उस समय अत्यंत असामान्य उपलब्धि मानी जाती थी। इसके कुछ ही समय बाद उन्हें प्रतिष्ठित ए टॉप ग्रेड भी प्राप्त हुआ अपना सम्मान।
2: Shri Thiruvarar Vatsalam was rooted in Tanjore style.
0: Dr. Krishnamurti Balasubramanyam, Vigyan Evam Engineering.
1: अब नाम पुकारा गया है डॉक्टर कृष्णमूर्ति बालासुब्रमण्यम का, जो एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपने योगदान के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं और एक संस्था निर्माता भी हैं। आपने IIT कानपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और प्रतिष्ठित एल्टन फेलोशिप से सम्मानित होने पर सीधे PhD करने के लिए मैकमास्टर यूनिवर्सिटी कनाडा में स्कूल ऑफ मेटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग।
0: श्री ब्रिज लाल भट्ट समाज सेवा।
2: श्री ब्रिजलाल भट्ट इज नोन फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सोशल सर्विस प्रमोटिंग पीस एंड हार्मनी आफ्टर हिज एग्जेम्पलरी कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग एक्टिव सर्विस इन जम्मू एंड कश्मीर। Under his payback stage of life now, Shri Bhatt is now working as Chairman Administrative Committee, Shri Ramakrishna Mahasammelan Ashram Vivekanand Kendra, Nagdandi, Anantnag, Kashmir. Clad in the bandgala, two-piece suit, receiving the Padma Shri from the president.
0: श्री तरुण भट्टाचार्य कला संतूर।
1: श्री तरुण भट्टाचार्य जी का जो प्रख्यात संतूर वादक हैं जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई पहचान दी है और शततंत्री वीणा वादन शैली में नए परिवर्तन की आधार शिक्षा रखी है। उनकी नई तकनीकों और तरीकों ने शततंत्री वीणा को एक व्यापक रूप से सीखा और प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र बना दिया है।
2: Credited for having created new Hindustani classical ragas, Rag Ganga, based on Swachh Ganga Abhiyan, and also having created
0: Shri Jyotish Devnath Kala Hatkarga Bunai.
1: और अगला नाम श्री ज्योतिष देवनाथ का, जो पारंपरिक हथकरघा बुनाई और मलमल और चांदनी साड़ियों में विशेषज्ञता प्राप्त एक प्रतिष्ठित प्रतिपादक हैं। ये बंगाल के

0: वस्त्र परंपराओं के प्रमुख शिल्पकार हैं, जिन्होंने अपना जीवन भारत की सबसे बारीक और ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण बुनाई विरासतों में से एक को संरक्षित करने और पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित किया है।
1: बियॉन्ड हिज पर्सनल आर्टिस्ट्री, श्री देवनाथ हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन एज ए मेंटर एंड
2: डॉक्टर लीडर। जोगेश देवरी कृषि।
0: अगला नाम डॉक्टर जोगेश देवरी का। आसाम एक प्रसिद्ध रेशम उत्पादन विशेषज्ञ है, जिन्हें रेशम उद्योग विशेष रूप से एरी रेशम में अपने अग्रणी योगदान के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है।
1: एब्सोल्युटली, डॉक्टर देवरी इज एरी सिल्क पायनियर, क्रेडिटेड विद मॉडर्नाइजिंग ट्रेडिशनल एरी सिल्क रेयरिंग मेथड्स। ही इज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर एरी सिल्क अहिंसा और नॉन वायलेंट सिल्क, व्यूइंग इट एज ए सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर असम्स इकोनॉमी एंड रूरल यूथ। आई थिंक ही इज वेयरिंग द एरी सिल्क।
2: श्री बिकलिया लाडकिया डिंडा, कला लोक संगीत।
0: अगला नाम श्री डिंडा, आप एक प्रतिष्ठित आदिवासी लोक संगीतकार हैं और वालवंडा गांव तालुका जवार के प्रतिष्ठित तरपा कलाकार हैं। उन्होंने 7 दशकों से अधिक समय से अपना जीवन आदिवासी सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न और पवित्र अंग तरपा संगीत को प्रशिक्षित करने में, संरक्षित करने में बताया है।
1: Well, in addition to being a master performer, Shri Dhinda has served the tribal community as a bhagat, that is a traditional...
2: Dr. Amida Fernandez, Chikitsa, Neonatology.
0: प्रसिद्ध न्यूनेटोलॉजी जिनके एक डॉक्टर अमिता फर्नांडिस को भारत में न्यूनेटोलॉजी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य में उनके अग्रणी योगदान के लिए जाना जाता है।
1: डॉक्टर फर्नांडिस वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मार्केटली रिड्यूसिंग द हाई मोर्टेलिटी रेट अमंग प्री टर्म एंड सिक न्यूनेटल्स एट LTMG हॉस्पिटल थ्रू लो कॉस्ट सस्टेनेबल इनोवेशंस। क्लैड इन अ ग्रीन सारी, शी proudly receiving this award from Honorable President
2: Dr. Chandramouli Gaddamunugu, Vigyan Evam Engineering.
0: आप एक भूतपूर्व उत्कृष्ट वैज्ञानिक, परियोजना निदेशक, आकाश रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद DRDO के कार्यक्रम निदेशक हैं।
1: Despite numerous hurdles over a demanding journey spanning more than 3 decades, Dr. Chandramouli remains steadfast in his focus, inspiring teams across diverse organizations, resolving complex technical challenges for surface-to-air missile technology.
2: Dr. Prem Lal Gautam, Vigyan Evam Engineering.
0: Dr. Prem Lal Gautam, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार के कुल अधिपति हैं। एक प्रख्यात पादप प्रजनक शिक्षक, मार्गदर्शक, अनुसंधान प्रबंधक, संस्था निर्माता हैं।
1: डॉक्टर गौतम वॉज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ 12 इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, पायनियर्ड नेशनल सिस्टम ऑफ प्लांट जर्मप्लाज्म रजिस्ट्रेशन, एक्सेलरेटेड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लांट वेराइटीज।
2: डॉक्टर राजा स्थापति कलियप्पा गौंडर, कला कांस्य शिल्प।
0: अगला नाम कांस्य कला के प्रसिद्ध शिल्पकार हैं, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। अपने कौशल को अगली पीढ़ी के साथ साझा करने के लिए डॉक्टर गौंडर ने अपने संस्थान में युवा पीढ़ी के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं शुरू की हैं।
1: And due to Dr. Gonder's avid interest in arts, he also started focusing on preserving the old temples, which was struggling due to financial stress and left without maintenance. He renovated more than 100 temples which were left to perish and rebuilt them, and finally conducted Kumbh Abhishekam. What a great achievement.
2: Dr. Padma Gurmed, Chikitsa, Sowa Rigpa.
0: डॉक्टर पद्मा गुरमेद राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान लेह के संस्थापक निदेशक और लद्दाख अमची सभा लेह लद्दाख के अध्यक्ष हैं। वे आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति को औपचारिक मान्यता दिलाने तथा लद्दाख एवं अन्य हिमालयी क्षेत्रों में इसके व्यवस्थित विकास के अग्रदूत में से एक माने जाते हैं। राष्ट्रपति महोदय से पद्मश्री ग्रहण करते हैं, एक अत्यंत गौरव का पल।
2: श्री अशोक कुमार हल्दर, साहित्य एवं शिक्षा।
1: Shri Ashok Kumar Haldar is a noted Indian writer

0: social thinker from Malda district of West Bengal. In addition to books, Sri Haldar has authored approximately 3,000 articles published in leading newspapers of West Bengal and Tripura. His first walked up to the Prime Minister Shri Narendra Modi and is now walking slowly to receive his Padma Shri award.
1: उन्होंने अपना जीवन साहित्य और सामाजिक चेतना तथा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया। पद्मश्री माननीय राष्ट्रपति के कार्यक्रम द्वारा लेते हुए श्री अशोक कुमार हल्दार।
2: डॉक्टर सुरेश हनगवाड़ी, चिकित्सा हीमोफीलिया।
0: Dr. Suresh Hanagwadi, founder and president of Karnataka Hemophilia Society, Devangiri, KHS, is a distinguished medical professional, visionary institution builder, and a tireless advocate for persons with hemophilia and rare bleeding disorders in India. Himself being suffering from severe hemophilia B, he transformed personal adversity into a lifelong mission of service, dedicating over four decades in improving diagnosis, treatment, rehabilitation and dignity for thousands of affected people.
1: Mananiya Rashtrapati Dr. Suresh Hanagwadi ko Padma Shri se sammanit karte hain.
0: A proud moment for his family members. We're all standing up and cheering.
2: Dr. Charan Hembram, Sahitya Evam Shiksha, संथाली।
1: श्री चरण हेम्ब्रम एक संथाली शिक्षाविद और सांस्कृतिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने उड़ीसा में संथाली भाषा, साहित्य, संस्कृति के प्रचार पर प्रसार और संस्थागत विकास में असाधारण योगदान दिया है। कई सरकारी और साहित्यिक पत्रिकाओं में उनके लेख भी प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने संथाली ऑडियो एल्बम के लिए गीत भी रचे और आज भी संथाली साहित्य और संगीत विरासत में योगदान दे रहे हैं।
0: श्री हेम्ब्रम प्लेड अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन संथाली एजुकेशन, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टेन्योर एज सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ संथाली एजुकेशन ओडिशा अंडर एएस ECA, Rai Rangpur, from 1992 to 2004.
2: Dr. Shubha Venkatesh Iyengar, Vigyan Evam Engineering.
1: डॉक्टर शुभा वेंकटेश अयंगर एक प्रख्यात वैज्ञानिक है, जिनके काम ने भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी परिदृश्य को बदल दिया है। उनका करियर स्वदेशी नवाचार की शक्ति का प्रमाण है, जो राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से प्रेरित है।
0: Receiving the Padma Shri, Dr. Iyengar's most significant innovations are Drishti visibility imaging system and aviation weather observation system, which have enhanced the safety of all Indian international airports as they are mandatory
2: Shri
0: equipments.
2: Shri T. T. Jagannathan, Marnoprant, Vyapar Evam Udyog, unke putra Shri Mukund Thatte.
1: Shri Jagannathan ko Marnoprant पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है, जो उनके पुत्र रिसीव करेंगे। 9 अक्टूबर 2025 को श्री जगन्नाथन का निधन हो गया था। आप भारत की सबसे बड़ी रसोई उपकरण और कुकवेयर कंपनी टीटी के प्रेस्टिज लिमिटेड का नेतृत्व 5 दशकों से अधिक समय तक निर्वहन किया था।
0: As chairman of the TTK group, श्री जगन्नाथ built a reputation for quality, innovation,
2: संत निरंजन दास जी आध्यात्म।
1: और अगला नाम पुकारा गया है पद्मश्री के लिए संत निरंजन दास जी, जो विश्व प्रसिद्ध डेरा सचखंड पल्लान के वर्तमान आध्यात्मिक प्रमुख हैं और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में श्री गोविंद रविदास जन्मस्थान मंदिर सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं।
0: सिंस अगस्त 9, 1994 संत निरंजन दास जी हैज बीन लीडिंग डेरा सचखंड पल्लान। हिज टेन्योर हैज बीन मार्क्ड बाय अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशंस टू सोशल वेलफेयर। He oversees the Sant Sarvandas Charitable Hospital in Jalandhar, a 150-bed multi-speciality facility providing affordable care.
2: Professor Vijayanathan Kamakoti, Vigyan Evam Engineering.
1: IIT Madras Chennai ke nideshak Professor Vijayanathan Kamakoti सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को मुख्य उत्पादों में बदलने हेतु अपने करियर को समर्पित करने के लिए जाने जाते हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
0: In the academic realm, Shri Kamakoti has guided around 20 PhD and 30 MS

0: research scholars. He has published over 200 extensively cited papers in
1: Professor Mangala Kapoor, Sahitya Evam Shiksha, Shastriya Sangeet.
2: अगला नाम पुकारा गया है प्रोफेसर मंगला कपूर का. आप एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका संगीतज्ञ शिक्षाविद हैं. आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संगीत में म्यूजिक में पीएचडी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और कई साल लगभग 30 वर्षों से अधिक समय तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सेवा की और वर्ष 2019 में संगीत विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हैं.
0: Professor Kapoor has made significant contributions to Indian classical music through performance and research. She is the author of the 5 books on music, including her autobiography, Seerat.
2: Professor Mangala Kapoor, Mananiya Rashtrapati se Padma Shri grahan karte hain.
1: Dr. Ashok Khare, Vyapar Evam Udyog.
2: अगला नाम डॉक्टर अशोक खाड़े का. आप डीएलएस ऑफशोर लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक जो व्यापक रूप से एक अग्रणी टेक्नोक्रेट उद्यमी के रूप में जाना जाता है जिन्होंने भारत की स्वदेशी अपत्य इंजीनियरिंग क्षमताओं को सुदृढ़ करने और विदेशी संविदाकारों पर निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
0: डॉक्टर खाड़े बिगेन हिज प्रोफेशनल करियर इन 1975 मुंबई
1: साहित्य एवं शिक्षा
0: ही वर्क्ड इन स्ट्रक्चर डिजाइन एंड क्वालिटी कंट्रोल.
2: और अब अगला नाम खोखलोवा. डॉक्टर खोखलोवा को भारतीय भाषा शास्त्र विभाग एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन संस्थान मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी रूस में आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं. वे इंडोलॉजिकल अध्ययन में उनको उनके योगदान के लिए दुनिया भर में वो प्रसिद्ध हैं.
0: At present, Dr. Khokhlova is teaching different linguistic courses at Moscow
1: Dr.
0: State University,
1: Prabhakar,
0: which are very popular
1: Basa
0: among
1: Prabhu
0: students, Hindi
1: Kore,
0: at BA and MA in Punjabi.
2: आप एक दूरदर्शी नेता, एक विख्यात शिक्षाविद और ग्रामीण उत्थान के लिए एक अथक योद्धा हैं. डॉक्टर कोरे का जीवन देश की स्वावलंबन और शैक्षिक उत्कृष्टता की यात्रा का दर्पण है.
0: Among his most significant achievements is the establishment and development of 2 universities, KLE Academy and Higher Education and Research, KHER, and KLE Technological University.
1: Shrimati Pakhila Lekthepi, Kala Karbi Geet.
2: Shrimati Pakhila Lekthepi, Assam ki Karbi Geeton ke prasiddh gayika hai. वर्ष 1978 में उन्हें आकाशवाणी गुवाहाटी में गाने का अवसर मिला जहां उन्होंने करबी आधुनिक और लोकगीत प्रस्तुत किए. उन्होंने दूरदर्शन गुवाहाटी में भी करबी आधुनिक गीत प्रस्तुत किए.
0: श्रीमती लेखथेपी स्टार्टेड कंपोजिंग ओन सॉन्ग एंड लिरिक्स ऑन करबी मॉडर्न सॉन्ग इन द ईयर 1975 फॉर करबी यूथ फेस्टिवल्स. शी गॉट फर्स्ट प्राइज फॉर हर ओन कंपोजिशन लिरिक सॉन्ग इन करबी यूथ फेस्टिवल इन 1976. अटायर्ड इन अ ट्रेडिशनल
2: पारंपरिक परिधान में असम के परिधान में माननीय राष्ट्रपति के समक्ष अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए और उनके परिजन उनके लिए ताली बजाते हुए.
1: श्री रामा रेड्डी मामिदी मरणोपरांत सहकारिता उनकी पत्नी श्रीमती श्यामला रेड्डी.
2: श्री रामा रेड्डी मामिदी को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है जो उनकी पत्नी माननीय राष्ट्रपति से ग्रहण करेंगे. आप भारत में व्यापक रूप से आधुनिक सहकारी कानून के मुख्य निर्माता के रूप में जाने जाते थे.
0: श्री मामिदी's achievements have transformed rural livelihoods, established 585 thrift and credit cooperatives benefiting over 2.69 lakh members in Telangana with an annual turnover of 570 crore. श्री मामिदी passed away on 26th October 2025. And the award is
1: Shri
0: received by her
1: Ra Vesu Mani, Civil Seva.
2: Shri RVS Mani, ek super parichit civil sevak hain. Shri Mani ne Bharat Sarkar ke Grih Mantralay mein apar सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी. अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में ही उन्हें चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं का सामना करना पड़ा. श्री मणि एक निष्ठावान सरकारी सेवक के रूप में पूरी तरह से राजनीति निरपेक्ष रहकर कार्य किया.
0: श्री मणि हैज रिटन 5 बुक्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड हैज वर्कड एज अ सिंसियर गवर्नमेंट सर्वेंट इन एन एपॉलिटिकल मैनर. क्रेडिट्स वर गिवन टू

0: for handling several sensitive
1: Shrimati
0: cases without
1: Kala
0: falling prey
1: Mandalam Vimla
0: to
1: Menon
0: any
1: Kala
0: vested interest.
1: Mohini Attam.
2: आप वर्तमान मोहिनी अट्टम शैली के पीछे की दृष्टि और प्रेरणा है, चाहे वो इसकी सुंदरता, वेशभूषा, केशभूषा, वाद्य यंत्र, यहाँ तक कि प्रस्तुति पैटर्न का तरीका हो, जो आज मोहिनी अट्टम की पहचान बन चुका है।
0: श्रीमती मेनन फ्रॉम द यंग एज रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ आर्ट एज ए नेशंस वाइटल सॉफ्ट पावर एंड डेवलप्ड हर जर्नी टू यूजिंग क्लासिकल डांस एज ए मीडियम फॉर पीस, यूनिटी, इंक्लूजन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट।

0: श्री व्लादिमीर मिस्ती वरिशवली मरणोपरांत खेल कुश्ती कोच, उनकी पत्नी श्रीमती मरीन सारिया।
1: 23 जून 2025 को इनका निधन हो गया था और मरणोपरांत व्लादिमीर मिस्ती वरिशवली को ये पद्मश्री सम्मानित किया जा रहा है, जो एक फ्री स्टाइल कुश्ती कोच थे। उनकी पत्नी ये सम्मान ग्रहण करते हुए माननीय राष्ट्रपति के कार्यक्रम द्वारा।
2: He is remembered as one of the greatest coaches in the world of freestyle wrestling, having trained numerous Olympic medals.
0: Shri Maganti Murli Mohan, Kala, Film, Abhinay.
1: श्री मुरली मोहन एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है और 85 वर्ष की उम्र में भी बहुत सक्रिय रहते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सदस्य रहे और आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में भी आपने कार्य किया।
2: In 1973, श्री मुरली मोहन entered the film industry and recently completed golden jubilee of his film career. He received numerous honors and played lead roles in over 350 films.
0: Shri Mohan Nagar, Samaj Seva.
1: मध्य प्रदेश के जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष और भारत भारती शिक्षा समिति बैतूल के सचिव श्री मोहन नागर को मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और शैक्षिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है।
2: श्री नागर हैज हैड लेड सेवरल लैंडमार्क कैंपेन्स। इन 2006 ही अंडरटुक ए पदयात्रा टू एडवांस एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मोबिलाइजिंग लोकल कम्युनिटीज to institutionalize Jal Mahotsav, a river festival in the Mathura river catchment area. Dr. Punyamurthy
0: Nateshan, Pashu Chikitsa.
1: Dr. Punyamurthy Nateshan, a pratishthit Pashu Aushadh Vigyani, शिक्षाविद और ट्रांसलेशन वैज्ञानिक है। उन्होंने 4 दशकों से अधिक के शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार कार्य के माध्यम से भारत में एथनो वेटरनरी चिकित्सा को उन्नत किया है।
2: A nationally and internationally acknowledged expert, Dr. Nateshan has served as a trainer and consultant to organizations such as Department of Animal Husbandry and Dairying.
0: Kala Ikat Bunai.
1: और अगला नाम पुकारा गया है श्री सरत कुमार पात्र का। आप एक प्रसिद्ध हरकरघर शिल्पकार हैं, जो इकत बुनाई में अपने योगदान के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। श्री पात्र द्वारा अतिरिक्त बाना तकनीक से बुने हुए कोणार्क वर्ष एक उल्लेखनीय कृति है।
2: श्री पात्र कोणार्क टेक्सटाइल यूजिंग एक्स्ट्रा वेफ्ट टेक्निक इज अनदर रिमार्केबल वर्क। ही सक्सेसफुली डेवलप्ड नियरली 50 शेड्स यूजिंग नेचुरल डाइज। His efforts in creating human figures and calligraphic art based on some famous literary arts. An eminent handloom craftsman, he is widely known for his contribution in ikat weaving.
0: Shri Simanchal Patra, Kala Lok Rangmanch.
1: श्री सीमांचल पात्र लोक रंगमंच की दुनिया के एक प्रसिद्ध हस्ती हैं। उन्हें कला जगत में भारत के एक प्रसिद्ध लोक रंगमंच प्रहलाद नाटक की भीष्म पितामह के रूप में जाना और सम्मानित किया जाता है। ये नाटक अपने जीवंत संगीत नाटकीय कथ्यों और सशक्त पात्रों के लिए जाना जाता है।
2: Born on 7th July 1927, श्री पात्रा hails from a poor rural family. And as per family tradition and culture, he is inclined to Vaishnavism. Shri Patra from the age of 7 learnt Sakhi Nata, said to be precursor of classical Odissi dance, where male boys act as female Sakhi, from Guru Shri Narsingh Pradhan,

0: गुरु संग्यु संग पोंगनर कला लोक कला।
1: गुरु पोंगनर नागा वादिर वेलफेयर कल्चरल क्लब के सह संस्थापक हैं। वो इसकी स्थापना के बाद से लोक नृत्य, संगीत और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। और आप सुन पा रहे हैं वो, क्योंकि अपने पारंपरिक परिधान में यहाँ पधारे हैं तो सभी लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत सा परिधान है नितिश, पारंपरिक परिधान है और इन्हें इनकी असाधारण उपलब्धियों और एओ नागा लोक कलाओं के अभिनव योगदान के फलस्वरूप
0: मिली है। गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद कला अभिनय।
2: Shri Gadde Babu Rajendra Prasad is a famous Telugu film actor. For over four decades, starting with his debut in 1977, Shri Gadde Babu graced more than 286 films across six languages, even stepping into international waters. His genius lies in his special touch, versatile roles in family stories, social messages and comedy that hit home, blended with skills like mind mimicry.
1: वो सभी को घूम के, उन्होंने घूम घूम के नमस्कार किया और अब माननीय राष्ट्रपति के पास पहुंचे हैं मुस्कुराते हुए। और पर्दे के पीछे नम्र, मेहनती और बिना किसी फिल्मी गॉडफादर के अपने मध्य वर्गीय संस्कारों से जुड़े हुए श्री गद्दे बाबू
0: सुश्री सविता पूनिया खेल हॉकी।
2: Ms. Savita Punia, the former captain and the current goalkeeper of the Indian women's national field hockey team, is one of India's most acclaimed sports personality. With an unprecedented 308 international caps, she is the first Indian woman goalkeeper to achieve this extraordinary milestone, exemplifying enduring resilience, skill and commitment. Truly the wall.
1: बिल्कुल, भारतीय महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और वर्तमान गोलकीपर सुश्री सविता पूनिया। माने
0: श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री कनद पुरकायस्थ।
1: अगला नाम श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ, जिनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है। 7 जनवरी 2026 को आपका निधन हो गया था। आप असम के एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व थे।
2: श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ breathed his last on 7th January 2026 and his son is receiving the Padma Shri on behalf of his father.
0: Shri Bhagwan Das Raikwar, Marnoparant, Khel, Bundeli Martial Art, unki putra Shri Rajkumar Raikwar.
1: Agla puraskar bhi Marnoparant Shri Bhagwan Das Raikwar ko diya ja raha hai, jo unke पुत्र माननीय राष्ट्रपति से ग्रहण करेंगे। श्री भगवान दास रायकवार पारंपरिक बुंदेली मार्शल आर्ट्स और लोक कलाओं के संरक्षक तथा गुरु के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित हैं।
2: श्री भगवान दास रायकवार इज वाइडली रिस्पेक्टेड एज ए पेट्रन एंड टीचर ऑफ ट्रेडिशनल बुंदेली मार्शल आर्ट्स एंड फोक आर्ट्स, इंक्लूडिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ वेपन ट्रेनिंग एंड मूवमेंट प्रैक्टिसेस।
0: प्रोफेसर के रामस्वामी, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग।
1: प्रोफेसर के रामस्वामी, कर्पगम अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि एक मानित विश्वविद्यालय है, के कुलपति कुल अधिपति चांसलर हैं। वो कृषि जैव द्रव्य के रूपांतरण, भारत में एनरोबिक माइक्रोबायोलॉजी के संस्थापक तथा प्राकृतिक खेती की दिशा में मृदा जैविकी के पुनरुद्धार के लिए कार्यरत हैं।
2: As a member of planning commission, Professor Ramaswamy pioneered the traditional agriculture through
0: Shri Madhavan Ranganathan kala abhinay.
1: और अब नाम पता लग गया श्री माधवन रंगनाथन का। और आप सुन पाएंगे श्रोताओं की तालियों की गड़गड़ाहट आप तक भी पहुंच रही होगी। और माधवन सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री के पास पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नमस्कार की मुद्रा में, और अब माननीय राष्ट्रपति की ओर कदम बढ़ाए हैं अपने पद्मश्री को ग्रहण करने के लिए। माननीय प्रधान राष्ट्रपति उनको ये सम्मान दे रही हैं। उनको मैडी के नाम से जाना जाता है, एक सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लोकप्रिय व्यक्ति हैं।
0: श्रीमती रंजनी एवं श्रीमती गायत्री कला कर्नाटक संगीत।
2: श्रीमती रंजनी एंड श्रीमती गायत्री आर एमिनेंट कर्नाटक म्यूजिशियंस रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर सस्टेन्ड कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एज ए परफॉर्मिंग।

0: studio for nearly 4 decades.
1: श्रीमती रंजनी और श्रीमती गायत्री को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए तमिलनाडु सरकार ने कलाई मा मणि पुरस्कार, समागान मंथगा पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार उन्हें हासिल हो चुके हैं। प्रतिष्ठित कर्नाटक संगीतकार हैं जिन्होंने लगभग 4 दशकों
2: श्रीमती गायत्री
1: गायन का कार्य कर रहे हैं और बहुत प्रतिष्ठित है इस क्षेत्र में।
0: श्रीमती गायत्री अलॉन्ग विद श्रीमती रंजनी हैव रिसीव्ड न्यूमरस ऑनर्स इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इंक्लूडिंग द Kalai Mamami Award from the government of Tamil Nadu.
2: Dr. Anil Kumar Rastogi, Kala, Natya Kala.
1: डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी एक कलाकार, एक वैज्ञानिक और एक परोपकारी का अनूठा मिश्रण है। डॉक्टर रस्तोगी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से जैव रसायन में MSc की डिग्री प्राप्त की और बाद में सूक्ष्म जीव विज्ञान में PhD की।
0: Dr. Rastogi has been working in the media and entertainment industry for 64 years, having staged around 1,000 shows of 100 plays all over the country. He staged his 100th play, Beyond the Curtain, in December 2025.
2: Professor Dr. Mahendra Nath Roy, Vigyan Evam Engineering.
1: प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र नाथ राय रसायन विज्ञान के प्रोफेसर, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में विज्ञान और कला संकायों में पूर्व डीन और अलीपुर द्वार विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति हैं।
0: बियॉन्ड एकेडमिया ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोशल वर्कर पर्टिकुलरली फॉर द एफर्ट्स इन अपलिफ्टिंग द कॉमन पीपल। ही हैज डोनेटेड ऑन सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्कूल्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज पेरेंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी।

0: श्री सतीश शाह मरणोपरांत कला अभिनय, उनके भाई श्री अरविंद मामनिया।
1: श्री सतीश शाह उनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है। उनका निधन 25 अक्टूबर 2025 को हो गया था। सतीश शाह रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा में भारत के सबसे सम्मानित तो लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे, जो अपनी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग, बहुमुखी प्रतिभा और गहरे मानवीय भावों के प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे।
2: His roles in the films like जाने भी दो यारो, मैं हूं ना, ओम शांति ओम एंड numerous other mainstream and parallel films।
0: प्रोफेसर प्रतीक शर्मा, चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
2: You'll be remembered by many. Next is Professor Pratik Sharma. He's a professor of medicine at the University of Kansas School of Medicine and holds the Renick Blaylock Endowed Professorship at the Kansas University Cancer Center.
1: प्रोफेसर शर्मा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एंडोस्कोपी और जीआई कैंसर क्षेत्र में एक विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। उन्होंने गैस्ट्रोएंटरोलाइटल रोगों के और
0: कैंसर के रोगों के गुरुनाथ शर्मा के लिए अपना खेल क्रिकेट।
2: The man in blue and also in whites when he plays test cricket today can be seen wearing a formal black bandgala two-piece suit walking up to the president to receive Padma Shri. मास्टर स्ट्रोक
1: बिल्कुल। और भारतीय खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते ऋषि शर्मा को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार और भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी प्राप्त है।
2: As captain of the Indian national team, Shri Sharma had led India to significant global triumphs, including ICC Men's T20 World Championship 2024.
1: अगला नाम सरदार इंद्रजीत सिंह सिद्धू। आप पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त एक प्रेरणादायक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें व्यापक रूप से झाड़ू योद्धा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने स्वच्छता के प्रति अपनी मौन लेकिन शक्तिशाली प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्रव्यापी प्रशंसा हासिल की है।
2: बॉर्न ऑन 6 जून 1938 इन विलेज गग्गरपुर डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब, श्री सिंधु स्टिल वॉकिंग टॉल टू रिसीव हिज अवार्ड। He joined the Punjab Police as an inspector in 1963. In 1981, he was promoted to the Indian Police Service, IPS.

0: he was awarded with Raghupat Singh Marnoparant Krishi, unki patni Shrimati Premvati.
1: Shri Raghupat Singh ko Marnoparant Padma Shri se sammanit kiya ja raha hai. Inka nidhan 1 July 2025 ko ho gaya tha. Aap ek prasiddh krishi vaigyanik the aur paramparik bijon ke sanrakshan aur prachar ke liye aapko jana jata hai. Muradabad zile ke Samthal gaon mein aap janme the.
0: Shri Singh passed away on 1 July 2025. He was also active in social life. He contested the Legislative Assembly elections from Chandosi constituency as an independent candidate in 1980 and 1985, but did not win. Later, he won the election as a member of the Block Panchayat Biladi in 1995 and again in 2020.
1: Shri Raghupat Singh ji ki dharmapatni ye samman grahan karte
2: hain. Shri Khemraj Sundaryal Kala Hatkargha Bunai.
1: उत्तराखंड के सुमरी गांव के एक साधारण परिवार में जन्मे श्री सुंदरियाल ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान श्रीनगर उत्तराखंड से हथकरघा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा हासिल किया. खेतों की जुताई से लेकर भारत में वस्त्र परिदृश्य को बदलने तक की उनकी यात्रा अद्वितीय दृढ़ता, अनुशासन और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण को दर्शाती है.
0: श्री सुंदरियाल आर्टिकुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड हट्टा टेक्निक इन पंज दरी लूम फॉर रिप्लेसिंग पंजा एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ वीवर्स. Also in 1980, he introduced polyester yarn in hand loom under Petrofil project.
2: Dr. Budhari Tati, Samaj Seva.
1: माता शंखिनी महिला उत्थान केंद्र हिरनार के अध्यक्ष डॉक्टर पुथरी ताती आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें स्वरोजगार में आत्मनिर्भर बनाने के अपने निरंतर प्रयासों के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक सेवा गतिविधियों में भी भाग लिया है.
0: डॉक्टर बुधरी विद द हेल्प ऑफ सोशल सपोर्ट स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर वीमेन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय कंस्ट्रक्टिंग ए परमानेंट वीमेन्स ट्रेनिंग सेंटर बिल्डिंग इन बारसू by building the Hiranar Women's Upliftment Center. They are working to empower women with self-reliance.
2: Dr. Kumarasamy Thangaraj, Vigyan Evam Engineering.
1: Dr. Thangaraj ke anuvanshik adhyan ने पहली बार यह स्थापित किया कि अंडमान जनजातियां प्रथम आधुनिक मानव हैं जो लगभग 65,000 साल पहले अफ्रीका से बाहर चले गए थे. यह प्रारंभिक मानव प्रवासन के स्पष्टीकरण में एक बड़ी सफलता है.
0: डॉक्टर कुमारस्वामी थंगराज इज द सीएसआईआर भटनगर फेलो एट द सीएसआईआर सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद.
2: मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा उनकी पत्नी श्रीमती हीरामणि टुडू.
1: श्री रबीलाल टुडू को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित है.

0: to Santhali literature and culture.
1: Shri Naresh Chandra Dev Verma, Sahitya Evam Shiksha.
2: और अब पद्मश्री में अगला नाम पुकारा गया है श्री नरेश चंद्र देव वर्मा का। आप त्रिपुरा राज्य में साहित्य, भाषा, संस्कृति और सामाजिक विषयों के क्षेत्र में अत्यंत प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति हैं, जिनका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से व्याप्त है। इन क्षेत्रों में उनके योगदान ने संपूर्ण समुदाय पर एक गहरा और चिरस्थायी प्रभाव छोड़ा है।
0: एट प्रेजेंट श्री वर्मा सर्व्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कोकोबोरोक साहित्य परिषद, ए लीडिंग लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द त्रिपुरी लैंग्वेज।
1: श्री शशि शेखर वेम्पटी, साहित्य।
2: श्री शशि शेखर वेम्पटी डीप टेक फॉर भारत फाउंडेशन के सह संस्थापक हैं। इससे पहले वो भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के सीईओ के रूप में कार्य कर चुके हैं। इन्हें दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण में इनके क्रांतिकारी नेतृत्व के लिए अपार प्रसिद्धि प्राप्त है।
0: द यंगेस्ट सीईओ ऑफ प्रसार भारती बिटवीन 2017 टू 2022 श्री वेम्पति रोज टू द चैलेंज बाय लॉन्चिंग द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स।
2: श्री चिरंजी लाल यादव उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कल उत्कीर्णक हैं। आपने विदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया है। वर्ष 2010 में ढाका बांग्लादेश गए और 2015 में उन्होंने भारत सरकार के हस्तशिल्प निर्यात वर्धन परिषद के माध्यम से फ्रैंकफर्ट जर्मनी में अपनी कला का प्रदर्शन किया।
0: श्री यादव सर्व्ड एज मास्टर क्राफ्ट्समैन फ्रॉम 1980 टू 1982। ही हैज टॉट ब्रास एनग्रेविंग टू 30 चिल्ड्रन इन पुरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। ही आल्सो ट्रेंड 10 children in carving work in Moradabad in 2011 through the office of the Ministry of Textiles, Government of

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की धुन, सभागार में मौजूद महार रेजिमेंट सेंटर के मिलिट्री बैंड द्वारा प्रस्तुत बैंड मास्टर सुबेर बीपी गोरुंग के नेतृत्व में।
1: और व्हाट अ वंडरफुल इवनिंग फॉर द रिसिपिएंट्स व्हेन दे केम टू दिस हॉल, दे वर स्टैंडिंग टॉल बट नाउ दे आर वेयरिंग दोस मेडल्स ऑन देयर चेस्ट। व्हाट अ प्राउड मोमेंट।
0: गर्व के पल होते हैं नितिश ये, और ज़िंदगी ये मेमोरीज रहती हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गंतव्य मंडप से बाहर प्रस्थान करते हुए सभी को नमस्कार करते हुए,
1: एंड ऑफ कोर्स द रिसिपिएंट्स विल नाउ स्टे पुट फॉर अ सेरेमोनियल फोटोग्राफ विद ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
0: इस समय हम देख रहे हैं सभी लोग अपने अपने स्थान पर पुनः बैठ गए हैं। सभागार का वातावरण गर्व, प्रेरणा और सम्मान की भावना से ओतप्रोत है। आज सम्मानित सभी विभूतियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और इसी के साथ वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों के दूसरे नागरिक सम्मान समारोह का सफलतापूर्वक समापन हुआ। यह समारोह राष्ट्र की ओर से उन महान व्यक्तित्वों को नमन है जिन्होंने अपने कर्म और योगदान से भारत को समृद्ध बनाया है। आकाशवाणी की ओर से सभी सम्मानित विभूतियों को हार्दिक बधाई। आप सुन रहे थे राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से पद्म पुरस्कार समारोह 2026 का सीधा प्रसारण। तकनीकी प्रमुख श्री जितेंद्र भरूथी के साथ तकनीकी टीम के सदस्य थे शक्तिधर ध्यानी, अशोक कुमार मिश्रित, सुमित कटियार और हेमराज मीना। ओबी इंचार्ज थे मधुलिका श्रीवास्तव। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार। और अब अपने साथी कमेंटेटर नितिश अरोड़ा के साथ मैं शालिनी मित्तल आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण दे रहे थे शालिनी मित्तल और नीतीश अरोड़ा।
3: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तरायण।

उत्तरायण कार्यक्रम सुने सभी श्रोताओं के मैं कृष्ण सिंह लटवालक नमस्कार। श्रोताओं, एक देश में जो निशान द्विप्रधान और द्विविधान नहीं चलल, यह एक उद्घोष कर भेद माँ भारती एकता और अखंड टाकलीजी अपने प्राणों के न्यौछावर कर देने वाले प्रखर राष्ट्रवादी विचारक, महान शिक्षाविद, जनसंघक संस्थापक और हमारे पथ प्रदर्शक सिद्धि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करनू। उनर जीवन त्याग तपस्या और राष्ट्रभक्ति एक अमित गाथा छू। आज जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारतक दिशा में अग्रसर होने लागलो, तब हम हर कदम पर उनर स्मरण कर भेर शक्ति प्रेरणा और मार्गदर्शन के प्राप्त करण लागरू। राष्ट्रक एकता और अखंडता के लिए समर्पित डॉक्टर श्यामा

साथ मुखर्जी संपूर्ण जीवन और बलिदान प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणादायी छू और यस महान राष्ट्रनायक चरणों में हम बारंबार नमन करनु। स्वतः श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई को हो 1901 में कल कोलकाता के एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार में जन्म हो। उन्हर पिता आशुतोष बाबूल अपन जमाना ख्याति प्राप्त शिक्षाविद और बहुमुखी प्रतिभाग धनी छी। तो यही से सब गुण छी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विरासत में मिला छी। उन्हर विवाह सुधा देवी तक है और उन्हर द्विपुत्र और द्विपुत्रियाँ छी। सुधा 22 वर्षक उम्र में MA की परीक्षा उत्तीर्ण करी और 24 वर्षक उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय सीनेटक सदस्य बढ़ी। उन्हर ध्यान गणितक ओर विशेष जी और एक अध्ययनक लिए जब वो विदेश गई तो उनके वहाँ लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में उनके सम्मानित सदस्य पढ़ाई गो। वहाँ बैठी लौटने के बाद डॉक्टर मुखर्जी वकालत और विश्वविद्यालय सेवा कार्य में लग गई। स्वतः डॉक्टर मुखर्जी सन 1939 में राजनीति में भाग ली और एक अपन कर्म क्षेत्र बढ़ा और आजीवन यही में लगी रही। उन्होंने गांधी जी और कांग्रेस नीति के लिए विरोध करो जमें हिंदू के हानि उठानी पड़ी थी। उन्होंने एक बार कहा कि वह उ दिन दूर नहतीन जब अहिंसावादी नीति अंधानुसरण फलस्वरूप हमारे जो पूर्व क्षेत्र छ वो विदेशी हाथों में रह जाए। तो उनके जो एक अलग विचार उन्हर छी तो अलग विचार हमारे जो भारतीय समाज में एक प्रतिष्ठित रूप में उनके देखी जा। स्वतः डॉक्टर मुखर्जी स्वतंत्र भारतक प्रथम मंत्रिमंडल में अगस्त 1947 में एक गैर कांग्रेसी मंत्री के रूप में वित्त मंत्रालय काम के लिए उन्होंने संभालो और उन्होंने चितरंजन में रेल इंजन और विशाखापट्टनम में जहाज और बिहार में खाद बनाना कारखाना आदि उन्होंने स्थापित करी। उन्हें सहयोगल हैदराबाद निजाम के लिए भारत में विलीन हो पड़ो। स्वतः जब 1950 में भारत तक जो दशा थी थोड़ा दयनीय थी तो ये स्थिति में डॉक्टर मुखर्जी मन के एक गहरा आघात लगो और उन्होंने भारत सरकार के अहिंसावादी नीति के फलस्वरूप मंत्रिमंडल में त्यागपत्र दिए। संसद में विरोधी पक्ष की भूमिका निर्वाह करना अपन जो कार्य थी वो करो और एक के देश में जो झंडे और जो निशान मिले उन्होंने कभी उनके स्वीकार नहीं थी और कश्मीर भारत में विलय करने के लिए उन्होंने बहुत जो प्रयत्न थी वो करी। उन्होंने जम्मू प्रजा परिषद पार्टी के दगे मिलभेद आंदोलन ने छेड़ दी। स्वतः जब डॉक्टर मुखर्जी 8 मई 1953 होकर जम्मू के लिए कूच करो तब सीमा प्रवेश के बाद उनके जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा गिरफ्तार कर ली गई और लगभग 40 दिन तक वो जेल में बंद रही। 23 जून 1953 होके जेल में रहस्यमय ढंग उन्हें निधन हो गए और ये तरीका एक भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राजनीतिक शिक्षा क्षेत्र में सुविख्यात रहे डॉक्टर मुखर्जी के हम उनके खून पड़ो। तो इसमें आज हम अपने कार्यक्रम के माध्यम उन्हें विचारों में चलने का आह्वान आप सब नहीं करूँ कि लेकिन हमारे देश के एकता अखंडता में विरोध में यस लोगों ने हमेशा योगदान छे और हम उनके अपन तरफ पे श्रद्धा सुमन ले अर्पित करनु और अब कार्यक्रम में अगला पोके सुनूं यो लोकगीत।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए हैं।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: श्रोताओं, आपको सुनने लग रहा था कार्यक्रम उत्तरायण। व्यस्त दिनचर्या और मानसिक तनाव आजकल हर कह लीजिए आम बात है। यह कारण ज़्यादातर लोगों के देर रात बखत तक जागने की आदत हैं, और युवाओं में यह चीज़ जो छू बहुत सामान्य छू। हम देर रात तक काम करने लग रहे हो, और रात के फिर देर में उठने जो आदत छू एक प्रकार एक नियमित हमार दिनचर्या बढ़ गए, और एक सीधा असर पड़ो हमारे स्वास्थ्य पर। दिन भर कमजोरी थकावट महसूस करें, और अपन उद्देश्य में हम जो कमी हमर हैं, और यह के दखने चिड़चिड़ापन हम हमार जो अधूरी नींदक मुख्य लक्षण छे। ये कुछ लोगों के नींद कम उण में या फिर हमेशा थकावट उण में जसले समस्याएं हैं जी। तो ये समस्याओं हल हमार जो छू वो छू हमार योग विधा में, किले की अगर हमन के भल स्वस्थ दिनचर्या अगर हम पालन करनू, और निद्रा चक्र के लिए हम योगक का पालन करनू, तो हम जो है एक बेहतर नींद प्राप्त कर सकनू, और बेहतर नींद हमार एक बेहतर दिन के लिए बढ़े। श्रोताओं, ये योगासन न सिर्फ हमार शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रभावित करो। तो नियमित रूप में योगा करने के वजह दिन भर ऊर्जावान जोन मिले, हमन के मदद मिली। ये हमारे मांसपेशियों और मस्तिष्क के आराम करने के लिए सेहत का और बेहतर बनाने में मदद करा। सुनो, कई रिसर्च में जो बात पत्र चल रहा है कि जो वृद्ध लोग छन, अगर उन्हें लंबे समय तक अगर उन्होंने योग करो तो उन्हें नींदक जो गुणवत्ता छ उसके सुधारण डगर डगड़े, उन्हें जो जीवन जीनक तरीक छ उन्हें एक भल हो। तो इसमें हम जो गहरी नींद हम लेनू वह लीजिए जो 3 योगासन छ बहुत ज़्यादा मददगार साबित है सकनी। एक छू सेतु बंधासन, अगर हम योग करण लागू तो हमन के सबसे पहले पीठक बल हमन के लेटन पड़ोन। अब हमन के अपन घुटनों के मोड़ भेर पैरों के सिद्ध करण चैन, और घुटनों और नीचे कुल्हों की चौड़ाई पर हमन के रखन चैन। सांस लेन चैन और कमर के थोड़ा मली उठा भेर यह तरीका रखन चैन कि अपन जो पीठक निचला हिस्सा छू वो सपाट त्रिकोण आकार में बड़ी रू। ये दौरान अगर अपन ब्लॉक कुल तरफ बह सकूँ तो हमन के यहाँ 10-15 बार सांस लेन चैन और 1 मिनट तक हमन के रुकन चैन। फिर हमन के सांस लेन चैन और अपन कूल्हों के हम ऊपर उठूँ, जरा अपन आसानी ब्लॉक के साइड में स्लाइड कर सकता। धीरे धीरे अपन के तली लूँ और फिर पीठक निचले हिस्से के चटाई पर हमन के रखन पड़ा। तो ये सेतु बंधासन कर भी आपको भल जो नीच वो कह ली सकता, इनमें अपन यो मददगार साबित है सकूँ। ये के दगड़े स्वशासन और बालासन यो ना हमन के जो भल नींद लेने के लिए मददगार साबित है सकनी। तो हमारे जो श्रोता बंधु एक स्वस्थ निद्रा चक्र के लिए योग करण चाहनी, तो उनके ये 3 तरीका के योग जो है आसान तरीका लुएगन के कर सकनी। तो हमन के अपन दिनचर्या के थोड़ा सा भल तरीकल कर भी, और नियमित व्यायाम योग का पालन कर भी हम अपन दिनचर्या में सुधार ले सकूँ, और अपन जो एक शारीरिक थकावट छ कमजोरी छ चिड़चिड़ापन छ या फिर हमारे जो अस्त व्यस्त दिनचर्या छ वो कह सुधार सकूँ सिर्फ और सिर्फ योगक बदौलत, नियमित व्यायाम बदौलत। और अब कार्यक्रम में आगे सुनूँ यो लोकगीत।

सदा दीवानकन वाला गई ये लोग गीतक दगड़ आज एक उत्तरायण कार्यक्रम इतने के संपन्न हूँ भोला पदगे फिर भेंट हो ले एला पदगड़े कृष्ण सिंह लटवाल के दो अनुमति नमस्कार सदा थोड़ी देर बाद उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र वे रिले करी जल कृपया प्रतीक्षा करा।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कर्णप्रयाग और नगरासू प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई जारी, श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई सचिव समिति की बैठक भूमि संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और डिजिटलीकरण सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने अल्मोड़ा में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की और मानसून से पहले राज्य के पर्वतीय जिलों के सरकारी गोदामों में पहुंचाया गया 3 महीने का राशन 1 जुलाई से होगा वितरण। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कर्णप्रयाग और नगरासू में सामने आई घटनाओं के संबंध में सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया गया है उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और सभी तथ्यों के आधार पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भ्रामक और भड़काऊ खबरें फैलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: कर्णप्रयाग में और नगरासू में जो भी घटना सामने आई है और सभी पक्षों को हमने निष्पक्ष रूप से सरकार प्रशासन पुलिस कार्रवाई कर रही है और सभी प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर प्रशासन के लोगों से मिले भी हैं और हमारे पुलिस महानिदेशक ने लगातार पिछले 2-3 दिनों से बात की है और सभी को बता दिया गया कोई अब इशू नहीं है और कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई आगे भी होगी। और सोशल मीडिया पर या भ्रामक जो समाचार फैला रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि अब जो भी जो है अब कानून अपने हाथ में इस प्रकार से लेगा, भ्रामक खबरें फैलाएगा, तो निश्चित रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर के सभी अस्पतालों, कोचिंग सेंटरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य सार्वजनिक उपयोग वाले भवनों का व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन में किसी भी प्रकार

0: की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन संस्थानों में अग्निशमन संबंधी व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें तत्काल चिन्हित कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग, जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर समयबद्ध ढंग से ऑडिट की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय में सचिव समिति की बैठक हुई। इस दौरान राज्य में भूमि संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, भूमि संबंधी प्रक्रियाओं के सरलीकरण, डिजिटलीकरण, विवाद निस्तारण और निवेश अनुकूल व्यवस्था विकसित करने के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड जैसे सीमित भूमि संसाधनों वाले राज्य में भूमि का वैज्ञानिक और पारदर्शी प्रबंधन समय की आवश्यकता है। उन्होंने भूमि प्रबंधन व सुधारों से जुड़े अधिकारियों को तात्कालिक और दीर्घकालिक सुधारों का विस्तृत अध्ययन कर एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने भूमि संबंधी मामलों की निगरानी और सुधारात्मक ढांचा तैयार करने के लिए सचिव दिलीप जावलकर, बीवीआरसी पुरुषोत्तम और एसएन पांडे को भूमि संबंधी प्रकरणों, चुनौतियों और उनके समाधान पर आधारित एक समग्र रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। ये टीम भूमि संबंधी सभी प्रक्रियाओं और प्रावधानों के लिए सुझाव प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त भूमि संबंधी दस्तावेजों के व्यापक अध्ययन, उनके अद्यतनकरण, डिजिटलीकरण और तकनीकी एकीकरण के लिए 3 सदस्यीय अधिकारियों की एक अलग टीम गठित करने के निर्देश भी दिए गए। ये समिति पुराने रिकॉर्ड, मैप आदि सभी का विस्तृत अध्ययन करेगी। मुख्य सचिव ने भूमि सर्वेक्षण और मैपिंग कार्यों के लिए नियुक्त की जाने वाली एजेंसियों के कार्यों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने आज अल्मोड़ा में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच ग्राम स्तर तक 100% सुनिश्चित की जाए तथा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध रूप से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने जिले में संचालित योजनाओं की प्रगति पर संतोष जताया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए स्थानीय महिलाओं और समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
3: शानदार काम कर रहे हैं, खास तौर पे जो हमारे महिला समूह हैं, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ जिस तरह से रोजमेरी का और रिंगाल का जो आर्टिफैक्ट्स इन्होंने बनाए हैं वो बहुत ही शानदार हैं और आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होंगे जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो हमारी लखपति दीदी योजना है उसमें इसका बड़ा योगदान होगा। उनको सरकार लगातार प्रमोट कर रही है।
0: मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश और भूस्खलन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य के पर्वतीय जिलों में जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था की है। अपर आयुक्त खाद्य पीएस पांगती ने बताया कि पर्वतीय जिलों के सुदूर और बेहद दुर्गम इलाकों के सरकारी गोदामों में 3 माह का राशन पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से राशन डीलरों के माध्यम से इसका वितरण शुरू कर दिया जाएगा। श्री पांगती ने बताया कि जुलाई माह के दौरान ही 3 महीने का राशन उपभोक्ताओं को समयबद्ध तरीके से वितरित कर दिया जाएगा, जिससे मानसून के दौरान खाद्यान्न आपूर्ति पूरी तरह सुचारू बनी रहे।
4: मानसून को लेकर के हम लोगों ने 3 माह का राशन पर्वतीय जनपदों को पूर्व में ही भेजना प्रारंभ कर दिया। लगभग सभी हमारे खाद्यान्न गोदामों में 3 माह का राशन पहुंच रहा है और हम 1 जुलाई से 3 माह का राशन जुलाई, अगस्त, सितंबर एक साथ हम वितरण करेंगे और उम्मीद रहेगी कि हम जुलाई में ही 3 माह का राशन पूरा वितरण सुनिश्चित कर लेंगे।
0: उधम सिंह नगर जिले में 31वीं वाहिनी पीएसी रुद्रपुर में आज से 3 दिवसीय प्रादेशिक हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता शुरू हो गई है। पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार मीणा ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में राज्य के चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर सहित 9 जिलों के 176 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं पुलिस कर्मियों में खेल भावनाओं को विकसित करने और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने में सहायक सिद्ध होती हैं।
5: ये प्रतियोगिताएं पुलिस में खेल भावनाओं को विकसित करने के लिए तथा आपस में भ्रातृत्वभाव को विकसित करने के लिए करवाई जाती है ताकि हमारे खेल का स्तर जो है वो उत्कृष्ट हो और प्रतियोगिता की भावना का विकास हो। देखिए एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हम लोग अपने खिलाड़ी तैयार करते हैं ताकि नेशनल पुलिस खेलों में हमारे राज्य का जो प्रदर्शन है वो उत्कृष्ट हो और सभी खेलों की प्रतियोगिताएं अलग अलग स्थानों पर आयोजित की जाती है।
0: वहीं खिलाड़ी गोपाल सिंह कन्याल ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन से पुलिस जवानों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है।
6: ये गेम अभी हमारे 31 वाहिनी पीएससी में चल रहे हैं, यहाँ से हमारी जनपद से और पीएससी आईआरबी टीमें आती हैं और ये गेम हमेशा होते रहने चाहिए। इससे हमें काफी अपनी फिटनेस का अच्छा एक हमें अनुभव मिलता है खेलने का और फिटनेस भी बनी रहती है और इन गेमों से ये होता है कि हमारे स्टेट टीम से भी हमारे सिलेक्शन होता है और आगे हम नेशनल खेलने जाते हैं, ऑल इंडिया पुलिस गेम खेलने जाते हैं, आगे का हमें अनुभव मिलता है, इससे हमें काफी बेनिफिट भी होते हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कर्णप्रयाग और नगरासू प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई जारी, श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई सचिव समिति की बैठक, भूमि संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और डिजिटलीकरण सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने अल्मोड़ा में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की और मानसून से पहले राज्य के पर्वतीय जिलों के सरकारी गोदामों में पहुंचाया गया 3 महीने का राशन 1 जुलाई से होगा वितरण। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। भक्ति संगीत कार्यक्रम में आइए पहले सुनते हैं ब्रज शारवारी की गाई है भक्ति रचना।

श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:50 हुए हैं। अब गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा कारी। बुआले की कर्णप्रयाग और नगरासु प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई जारी च, दोषियों पर वेली सख्त कार्रवाई। प्रदेश भर का जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों थे शिक्षा विभाग का प्रस्तावित त्रिस्तरीय ढांचा में शामिल करे जाल। मुख्य सचिव आनंद वर्धनन केंद्रीय योजनाओं में अपेक्षित तकनीकी और संस्थागत सुधारों थे तुरंत लागू करने का निर्देश दी। और 31वीं वाहिनी PSC रुद्रपुर में 3 दिवसीय प्रादेशिक हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता शुरू। अरब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्वालियर की कर्णप्रयाग और नगरासु में समीण आई घटनाओं का संबंध में सभी पक्षों ते ध्यान में रख दवे राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन आवश्यक कार्रवाई करनी छिन। उन ग्वालियर की जांच में जो भी दोषी पाया छिन उनका विरोध में कार्रवाई करी गई छ तथा सभी तथ्यों पर आधार पर अग्नि भी सख्त कार्रवाई वेली। आज सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने ग्वालियर की चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाला सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता छ। उन सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील कारी की वो देवभूमि उत्तराखंड का शांति वातावरण में अपनी यात्रा को पूर्ण आनंद ली और कई भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दी। उन साफ कारी की झूठी और भड़काऊ खबरें फैलाने वालों पर विरोध में कानूनी कार्रवाई करी जाएगी।
1: कर्णप्रयाग में और नगरासू में जो भी घटना सामने आई है और सभी पक्षों को हमने निष्पक्ष रूप से सरकार प्रशासन पुलिस कार्रवाई कर रही है और सभी प्रतिनिधि मंडल यहां पर प्रशासन के लोगों से मिले भी हैं और हमारे पुलिस महानिदेशक ने लगातार पिछले 2-3 दिनों से बात की है और सभी को बता दिया गया है कोई अब इशू नहीं है और कार्रवाई हो रही है कानूनी कार्रवाई। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई आगे भी होगी और सोशल मीडिया

0: पर या भ्रामक जो समाचार फैला रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि अब जो भी जो है अब कानून अपने हाथ में इस प्रकार से लेगा, भ्रामक खबरें फैलाएगा, तो निश्चित रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी।
1: प्रदेश भर का जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों थे शिक्षा विभाग का प्रस्तावित त्रिस्तरीय ढांचा में शामिल करे जाल। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी दियाई। उन बोले कि पुरानी पेंशन योजनाओं से वंचित शिक्षकों थे लाभ देने और अशासकीय विद्यालयों में पीटीए शिक्षकों की मांग से संबंधित प्रस्ताव भी जल्दी मंत्रिमंडल का समीक्षण लाए जाला। बैठक में डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों थे समान कार्य खुणे समान वेतन मान दीण और अशासकीय विद्यालयों में मानदेय प्राप्त शिक्षकों थे अस्थाय नियुक्ति प्रदान करण सहित अन्य विषयों पर विचार विमर्श करे गया। इन प्रकरणों को निस्तारण खुणे महानिदेशालय स्तर पर एक समिति बैठक करने का निर्णय लिएगी। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने नैनीताल जिला का काठगोदाम में भूमि धोखाधड़ी समिति की बैठक में भूमि धोखाधड़ी से जुड़िया 77 मामलों की समीक्षा कारी। विभिन्न जिलों बटी प्राप्त मामलों की जांच के बाद कुमाऊं आयुक्त ने 30 मामलों में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दी। उन्होंने बोले कि भूमि धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की रिपोर्ट जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का माध्यम से समिति तक पहुँच जाय का बाद प्रत्येक मामला की गंभीरता से समीक्षा होंद।
2: मामले अलग अलग जिलों से आए थे जिसमें हम एक तो रिपोर्ट मांगते हैं तहसील से, डीएम्स के थ्रू वो रिपोर्ट आती है। आजकल हमने पैरेलली एसएसपीस को भी हम रिपोर्ट दे रहे हैं कि वो भी इसको प्रोब कर ले। तो उस सब के बाद जो रिपोर्ट्स आज यहाँ पे आई थी, कुल मिला के 77 मामले ऐसे थे जो हमने रखे थे यहाँ बैठक के लिए, जिनमें रिपोर्ट मांगी गई थी। और यहाँ पे जो कमेटी बैठी उन्होंने इसको डिसाइड किया, तो हमने 30 मामलों में पाया कि ये लैंड फ्रॉड के मामले बनते हैं और इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो उसको कमेटी ने अप्रूव कर दिया है। इसके बाद ये एफआईआर दर्ज जाएंगी और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे चलेगी।
1: कुमाऊं आयुक्त ने बोले कि यदि सुनियोजित तरीके से भूमि धोखाधड़ी का मामला समय अंधीन है तो संबंधित लोगों का विरोध में संगठित अपराध का तहत भी कड़ी कार्रवाई करे जाएगी।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य का विकास कार्यों थे रफ्तार दीण खुणे संबंधित अधिकारियों थे केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और वित्तीय प्रबंधन थैले की कई महत्वपूर्ण निर्देश दीनी। आज सचिवालय में हुई सचिव समिति बैठक में मुख्य सचिव ने बोले कि सभी विभाग केंद्रीय योजनाओं में अपेक्षित तकनीकी और संस्थागत सुधारों थे तुरंत लागू करी। उन्होंने बोले कि याल केंद्र और बाह्य सहायतित परियोजनाओं मिलन वाली धनराशि समय पर और पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकेली। उन्होंने बोले कि जो विभाग ये नई आईटी आधारित सेवाओं और नवाचारों पर परीक्षण करण च वो बिना कह देरी का ये थे पूरा करी। दगड़ी ही जो योजनाओं पर काम पूर्व हो गया उनकी उपयोगिता प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज समय से प्रेषित करी। मुख्य सचिव ने बोले कि जख भी नई नीतियां बन या वर्तमान नीतियों में संशोधन करने की जरूरत है वह तत्काल प्रभावी कार्रवाई करे जा। उन्होंने स्पष्ट कारी कि राज्य में केंद्रीय सहायता चलना विकास कार्यों थे गति देना खुणे प्रशासनिक सुगमता और तकनीकी आत्मसातीकरण बेहद जरूरी है। यहाँ खुणे सभी अधिकारियों थे तत्परता से काम करण पौड़ल। मानसून सीजन का दौरान भारी बारिश और भूस्खलन जनी चुनौतियों से निपटना खुणे प्रदेश सरकार ने राज्य का पर्वतीय जिलों में जुलाई अगस्त और सितंबर मौकु राशन इकट्ठा उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था करी छ। अपर आयुक्त खाद्य पीएस पांगती ने बताई कि पर्वतीय जिलों का सुदूर और बेहद दुर्गम इलाकों का सरकारी गोदामों में 3 माह को राशन पहुंचे गया। उन्होंने बताई कि 1 जुलाई बटी राशन डिलीवरियों का माध्यम से यूं को वितरण शुरू हुए जाल। श्री पांगती ने बताई कि जुलाई माह का दौरान ही 3 महीनों को राशन उपभोक्ताओं थे समयबद्ध तरीके से वितरित करे जाल। जाल मानसून का दौरान खाद्यान्न आपूर्ति पूरी तरह सुचारू बनी रहली।
4: मानसून को लेकर के हम लोगों ने 3 माह का राशन पर्वतीय जनपदों को पूर्व में ही भेजना प्रारंभ कर दिया था। लगभग सभी हमारे खाद्यान्न गोदामों में 3 माह का राशन पहुंच रहा है और हम 1 जुलाई से 3 माह का राशन जुलाई

0: अगस्त सितंबर एक साथ हम वितरण करेंगे और उम्मीद रहेगी कि हम जुलाई में ही 3 माह का राशन पूरा वितरण सुनिश्चित कर लेंगे।
1: उधम सिंह नगर जिलामां 31वीं वाहिनी पीएससी रुद्रपुरमां आजबटी 3 दिवसीय प्रादेशिक हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता शुरू हो गई। पुलिस महानिदेशक सुनील कुमार मीणा ने प्रतियोगिता को शुभारंभ कारी। प्रतियोगिता में राज्य का चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर सहित 9 जिला का 176 खिलाड़ी भाग लेना छिन्न। ये अवसर पर पुलिस महानिदेशक ने बोले कि इस तरह की प्रतियोगिताएं पुलिस कर्मियों से खेल भावनाओं थे विकसित करण और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छु प्रदर्शन करण में सहायक सिद्ध हुएली।
2: ये प्रतियोगिताएं पुलिस में खेल भावनाओं को विकसित करने के लिए तथा आपस में भ्रातृत्व भाव को विकसित करने के लिए करवाई जाती है ताकि हमारे खेल का स्तर जो है वो उत्कृष्ट हो और प्रतियोगिता की भावना का विकास हो। देखिए, एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हम लोग अपने खिलाड़ी तैयार करते हैं ताकि नेशनल पुलिस खेलों में हमारे राज्य का जो प्रदर्शन है वो उत्कृष्ट हो और सभी खेलों की प्रतियोगिताएं अलग अलग स्थानों पर आयोजित की जाती
1: है। वकी खिलाड़ी गोपाल सिंह कन्याल ने बोले कि इस तरह की प्रतियोगिताओं आयोजन से पुलिस जवानों थे आगे बढ़ने को मौका मिल दो।
3: ये गेम अभी हमारे 31 वाहिनी पीएससी में चल रहे हैं, यहाँ से हमारे जनपद से और पीएससी आईआरबी टीमें आती हैं और ये गेम हमेशा होते रहने चाहिए। इससे हमें काफी अपनी फिटनेस का अच्छा एक हमें अनुभव मिलता है खेलने का और फिटनेस भी बनी रहती है और इन गेमों से ये होता है कि हमारे स्टेट टीम से भी हमारे सिलेक्शन होता है और आगे हम नेशनल खेलने जाते हैं, ऑल इंडिया पुलिस गेम खेलने जाते हैं, आगे का हमें अनुभव मिलता है, इससे हमें काफी बेनिफिट भी होते हैं।
1: टिहरी जिला का मुनि की रेती थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में शिवपुरी चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक विनोद कुमार शर्मा को निधन हो गया। ड्यूटी का दौरान मुनि की रेती बटी शिवपुरी चौकी जांदा भगत ऊंकु वाहन अनियंत्रित वे की गहरी खाई में गिर गई। SDRF और पुलिस संयुक्त टीम ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलेगी ऊंथे बाहर निकाल और उपचारक हुणे एम्स ऋषिकेश पहुंचाई जख चिकित्सकों ने ऊंथे मृत घोषित कर दिया। ई दुर्घटना पुलिस विभाग में शोक की लहर च। वखी राजधानी देहरादून में पटेल नगर क्षेत्र स्थित लालपुर का पास आज एक सिटी बस का चपेट में आन से 6 लोग घायल वेगी। घायलों थे अस्पताल में भर्ती करे गई। पुलिस ने बस चालक थे हिरासत में लियाल और मामला की जांच होनी च। अंत में मुख्य समाचार एक दा फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा कारी। बोले की कर्णप्रयाग और नगरासु प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई जारी, दोषियों पर वेली सख्त कार्रवाई। प्रदेश भर का जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों थे शिक्षा विभाग का प्रस्तावित त्रिस्तरीय ढांचा में शामिल करे जाल। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने केंद्रीय योजनाओं में अपेक्षित तकनीकी और संस्थागत सुधार थे तुरंत लागू करने का निर्देश दी और 31वीं वाहिनी PAC रुद्रपुर में 3 दिवसीय प्रादेशिक हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता शुरू। ये का दगड़ ही गढ़वली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुंदू। नमस्कार।

श्रोताओं, यो कार्यक्रमक प्रायोजक छिन् कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं, बात करनू खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण। खरीफ फसल में जैसे धान, मक्का, सोयाबीन आदि में खरपतवार का प्रकोप ज़्यादा हों और यक रोकने लीजिए गैर जुताई और प्रमाणित बीजों प्रयोग, बुआई 20-30 दिन बाद, फिर निराई गुड़ाई और ज़रूरत पड़ने पर उनमें खरपतवार नाशकों सही बखत में छिड़काव करना चाहिए। बुआई है पहली, जैसे हम बात करूं गर्मी में माटका पलटरी वाला हलल एक जुताई करण से, ताकि खरपतवार बीज और जड़ उमनियो। और फसल चक्र की हम बात करूँ तो एक का फसल बार बार उगने बजाय हम उनका अलग अलग फसल चक्र हिसाब फसल में बीण चे और कतारों में फसलों की बुआई करण चाहें। दूसरा,

0: बुआई 20-30 दिन बाद फिर निराई गुड़ाई और ज़रूरत पड़ने पर उनमें खरपतवार नाशकों सही बखत में छिड़काव करना चाहिए। बुआई है पहली जैसे हम बात करूं गर्मी में माट का पलटरी वाला हलल एक जुताई करण से ताकि खरपतवार बीज और जड़ उमनियो और फसल चक्र की हम बात करूँ तो एक का फसल बार बार उगुण बजाय हम उनका अलग अलग फसल चक्र हिसाब फसल में बेण चें और कतारों में फसलों की बुआई करण चें। दूसर फसल जो मुख्य दलहनी जैसे मूंग या सोयाबीन लगूड़ है पहली उमें अगर हम बोनू तो खरपतवार उमें नहीं हूँ। निराई गुड़ाई 20-30 दिनों के भीतर है हम उनके खुरपी या कुटवल उनका एक दीवार ये गुड़ाई अवश्य करण चाहें। पौधों के बीचक जो दूरी छ उनका हम कतारों हिसाब यानी कि लाइन वारी अगर हम उनको बेनू तो वो और भल है सकूँ। और जो हमार कीटनाशक जो दवाई छ उन्होंने अगर हम छिड़काव करूँ तो एक बार में हम उनका जानकारी होनी चाहें और जो हमार कृषि वैज्ञानिक छन उन था हुई एक बार में सलाह ली सकता। तो श्रोताओं यो तो छी आज एक बात कार्यक्रम में हम आपको सुनने लग जाए सरकार का 12 वर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उपयोग व लाभ उठबेर विविधीकरण माध्यम आय अर्जनक विषय पर श्री गोपाल दत्त दानीजू दग यो भेंटवार्ता इन दग बातचीत करण लग रही कृष्ण सिंह लटवाल।
1: सुतो नमस्कार। उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्रों में कृषक सब्जी उत्पादन और फल उत्पादन कर भेर आय अर्जित करण लग रही। हमारे यहाँ परंपरागत रूप में सब्जी उत्पादन तो पहली बेटी करी जान लग रो लेकिन कुछ किसान नवाचार दग जुड़ भेर और नई तकनीकों का अपने भेर कृषि में नवीनीकरण करण लग रही और एक नई तकनीकूल माध्यमल एक तो श्रमक अपन बचत करण लग रही बखतक बचत करण लग रही और दगड़ दगड़ में बहुत लाभ ले अर्जित करण लग रही। आज हम उन भेंटवार्ता में अपने स्टूडियो में एक यश कृषक का आमंत्रित कर रहे जो कृषि में नई प्रयोगों के माध्यमल बागवानी पशुपालन और खेती समेकित कृषि कर भेर अपन परिवार के पालन लग रही। हम उन स्टूडियो में आमंत्रित कर रहे श्रीमान गोपाल दत्त दानी जी के अपू हमर वहाँ रचा ग्राम सभा काष्टनौली पोस्ट ऑफिस जोरासी विकास खंड रामगढ़ जिला नैनीताल बटी। तो सबने पहले दानी जी अपन स्वागत छे हमारे कार्यक्रम में।
2: नमस्कार महोदय।
1: तो दानी जी पहले प्रश्न तो मेरा आप ही यही रहोल कि अपन पास कदुक जमीन छू।
2: महोदय हमारे पास है कृषि योग्य भूमि जो छ 28 नाली लगभग।
1: अच्छा
2: हाँ।
1: और कृषि अयोग्य भूमि का दुख छे।
2: कृषि अयोग्य भूमि अगर देखी जो तो हम लोगों पहुँच है जो दूर है जहाँ फसल कम पैदावार है तो उनको हम छोड़ देना जाके जानवरों घास पाता ली अलग से।
1: तो ये बताओ दानी जी कि अचाल आपूल अपन खेतन में के लगे रखा।
2: महोदय आजकल हम अपन खेतन में जौ है गए गेहूं है गए मसूर है गए ये चीज लगे रखे जैल की हमारे लीजिए अपन दरिया गुजरा जी जानवरों लीजिए जो है चारा ले जाए और अपन दरिया गुजरा अपना पेट और रोटी उल व्यवस्था है जी।
1: तो एला पुल जो रवि फसल छे उन बुआई आपूल कर रखी तो ये बताओ कि जो खरीफ फसल न जो तैयारी छी वह लीजिए आप करण लग रहा है चाल।
2: महोदय आजकल हम अपन खेतों को तैयार करने अगिन फसल लीजिए सब्जी लीजिए जैमे की जुताई चल रहा है और झाड़ी कटान से और खेतों सफाई मेड़ बांधन से जैसे कि हम मतलब अच्छे तरीके फसल अपन उग सकूं
1: जी। अच्छा ये बताओ कि रवि फसलों में आपूल मटर इत्यादि लगा रखा होना और कदुग संभावना से बार कदुग है जाल।
2: मटर अगर बारिश महोदय थोड़ा बहुत फुलाई मिल से मटर अगर ठीक ठाक बारिश है जाली तो मतलब पूरे मटर होने संभावना पाई आ रहे हम लोग।
1: ये बताओ दानी जी कि जब हम पर्वतीय क्षेत्र में हम कृषि करनू तो हमन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहूँ कि हम बीज कवल प्रयोग करो तो आप वो बीज कवल इस्तेमाल कर छा।
2: हम अगर देखी जो तो मटर में हम 555 वाल यूज कर लू और गेहूं में हम जो से मैं घर का अपन परंपरागत बीज इस्तेमाल कर लू जल के हम अब जो से उन्नत किस्म तरफ बढ़ रहे जल के हम जो से मतलब जानवरों घेर बाड़ जी थोड़ा बहुत परेशानी महसूस करूँ जल के हम इनका एक सही कर लो।
1: तो आपको जो हमारा जो स्थानीय रची बसी किस्म छ जो पहली बटी के हम देख रही के लिए हम उनको ये पत्थरों की वह उत्पादन ज्यादा है जहाँ

0: या कम है तो उनको आपको बढ़ने लग रहा था और अब धीरे धीरे उन्नत किस्मों को बढ़ने लग रहा था। तो ये जो उन्नत किस्मों की बात आप करिए, तो ये उन्नत किस्म जो बीज है वो आपको कहाँ मिल छा?
1: यह हम मार्केट में परचेज कर रहे जबकि हमारे स्थानीय बाजार जो है गर्म पानी में उपलब्ध है जानी।
0: अच्छा, तो जो यह कृषि विज्ञान केंद्र
1: कृषि इकाई मतलब हमको जो है मतलब रियायती रेटों में वाला उपलब्ध है जानी
0: जी। तो जब हम कोयले खेत करूँ तो मैं खाद और सिंचाई की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, आप गाँव में खाद और सिंचाई की व्यवस्था छे?
1: महोदय फिलहाल हमारे यहाँ जो है सिंचाई कोई व्यवस्था नहीं था, जो हम जो है बारिश के ऊपर डिपेंड रख लूँ, जो अगर समय पर बारिश होगी तो हम लोग फसल ठीक ठाक है जी, तो हम यही बारिश पर निर्भर हूँ फिलहाल।
0: अच्छा, और खाद?
1: खाद जो है हम जानवरों जो यूज कर लू जल के हमारे मतलब जानवर लो पाली जनी घास और फसल जी गोबर रहेगा।
0: अच्छा, खाद लाभ
1: खाद
0: हाँ, तो परंपरागत तरीके बड़ोछा या खाद के या कंपोस्टक रूप में बड़ोछा?
1: परंपरागत जब जगह देखते हुए जब हम जैसे परंपरागत दूप और हम कंपोस्ट पीट जो से गवर्नमेंट आजकल सरकार जो से हाँ लाग रहे हर कोई फैसिलिटी, तो कंपोस्ट पीट हम लोगों को अवेलेबल करा रही जैसे कि जहाँ तक संभव हो हाथ से तो हम लोग वो तरीके लो यूज करते कर।
0: तो खरीफ फसलों की तरफ बढ़ू, आप खरीफ फसलों में आप उनको क्या आगे के आप धान लगा ला और या एक दगर में आपको जो विभिन्न प्रकार जो बारह ना जा पद्धति हमारी अपनाई जाए, तो हमें कुछ दाल जो खरीफ में उगाई जानी जैसे घच भरछ इत्यादि सोयाबीन वगैरह, तो उनला उत्पादन आपको कर ला तो एक लीजिए आपको खेतक तैयारी आपको एयर करने लग रहा, तो वह लीजिए जो बीच आपको कशिक
1: ओला महोदय मतलब हम जो स्थानीय बाजार में और या भी कृषि इकाई कृषि केंद्र में उपलब्ध है रियायती रेट में।
0: तो आप घर जो पिछड़ बार जो आप उगी हुई थी उनके नहीं रखना?
1: न उनको भी उनको रख लू हम तो वो नहीं थी मतलब अगर जब वो कोई भी बात कोई हमारे रख रखाव में कोई कीड़ा इत्यादि अगर खराब कर दिया तो हमको बाजार में लेना।
0: तो आप जो गाँव छो ये सब्जी उत्पादन मेले भल काम करने लग रही है अपन गाँव के लोग और इमें आपू ला जोड़ रहा था, तो सब्जी उत्पादन में आपू के लगुनक तैयारियां चाल करन छा?
1: महोदय हम जो छो सब्जी में शिमला मिर्च है टमाटर है और बैगन से और सलादी मिर्च से, तो ये चीजों हम पैदावार करी करूँ।
0: तो यह लीजिए आप चलो पौध तैयार करने लग रहे
1: जी जी हमारे पौध लगभग तैयारी और से।
0: और बागवानी में आप के कर रखा?
1: बागवानी में महोदय करीब हमारे पास जो से मतलब एल 10 नाली में लगभग पेड़ पौध होनाल आड़ू जम के आड़ू पुलम खुमानी ये चीज से जो है एल फुलाई और से पुल जवानी में से फुलाई में
0: जी जी।
1: तो आने वाले टाइम में उम्मीद करें कि यह फसल हमारे बहुत बढ़िया तरीके
0: तो आप जो बाग स्थापित आपूर्ण कर रहा हूँ मैं प्रूनिंग वगैरह आपूर्ण पिछड़ बार करी होने ले और जो कीटनाशकों का छिड़काव छूला करो आप
1: जी।
0: अच्छा, जो कई बार हम देख लू की पर्वतीय क्षेत्र में बाग तो स्थापित है जानी
1: जी,
0: लेकिन वे एक बात उन्हें समुचित रख रखाव नहीं है पान, तो रख रखाव कैसे करना चाहिए कृषक के?
1: महोदय जो रख रखाव अगर हम बात करो तो एक तो जानवरों वाले रख रखाव बात हम करोले में और दूसरे हम रख रखाव करोल की मतलब जो हमारे फंगस लग जाए या फिर मतलब उसी सड़न गलन है जाए तो वो मैं बात करूँ। तो अगर जानवरों संबंधित हम बात करूँ तो अपन जो हमारे कृषि होगी जब हम बाग लगा रहो वो मतलब जानवरों लीजिए हम जो से भी जाल लगवे तो वही कर लू हम और जहाँ तक कि मतलब अगर कीड़ा वाल बात से फंगस से तो हम स्प्रे प्रयोग करी करना।
0: अच्छा, कोई स्प्रे आपको लगूचा?
1: हम डाइमैक्स और ये रेगोर इस्तेमाल करते हैं।
0: रोगोरक इस्तेमाल आपको करते हैं
1: जी?
0: तो एक तो यह इस्तेमाल एक तो रोग नहीं लगे ना
1: हाँ, और दूसरा पेड़ बनावट ठीक ठाक है मतलब जो है वो कोड़ इत्यादि पत्तियां बिल्कुल स्मूथ होनी।
0: कदुक मात्रा में करना चाहिए, थोड़ा बहुत में करना चाहिए, ज्यादा में करना चाहिए?
1: ना ना, हम पूरे एरिया में अगर हम कोई एरिया छोड़ दो ना तो फिर उसमें कोड़ होने संभावना है।
0: अच्छा
1: हाँ, फल मतलब तो सुडोल नहीं हो तो स्प्रे करना जरूरी है आज डेट में।
0: अच्छा, आप हमें क्यों बताओ कि यह तो आप खेती किसानी की बात आप करी
1: जी,
0: तो पशुपालन में अपने पास को जानवर छे?
1: महोदय एल हमारे पास जानवर जो छे चार जानवर छे जैसे कि दुधारू ले छे और गाभिन ले छे। अगर हम पशुपालन में बात करूँ तो मतलब कृषि दगड़ पशुपालन एक अभिन्न अंग से मतलब जो ना एक तो हमारे जो दूध दही ये चीज हम प्राप्त है, दूसरा खेती लीजिए हम गोबर ओबर प्राप्त है ना जैसे हम मतलब घर के हम अपन पैदावार कर सकूं।
0: कदुक दूध
1: खाद न लोन पड़ो?
0: कदुक दूध अपने पास है जा?
1: हम पास है 12 लीटर दूध से लगते।
0: तो घर रक्षा है बेचा है क्या?
1: ये हम डेयरी में करना।
0: तो यह अतिरिक्त आपको क्या काम करता है खाली वक्त में?
1: महोदय हम जो पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान काम करी करना मैं आप जो तो जैसे अपन आजीविका सुदृढ़ रह सको तो उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड से जो

0: ट्रेनिंग दीबे। हम अपन स्थानीय गाँव घरों में जान से तो जैसे आदमी जानवर हीट में होनी तो हम उस पीरियड में वहाँ जाए उनको कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था ला हम अपने गाँव में रह।
1: अच्छा दिनों तो कृत्रिम गर्भाधान की जो व्यवस्था आपको कर छा ये कृत्रिम गर्भाधान जो आपको करने लग रहा छा यज्ञ जी एक तो आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो फिर कोको गौनों में आपको यज्ञ जी जाचा
0: महोदय ये लीजिए उसी अगर गवर्नमेंट का तरफ देखी जो कि हमको 5 किलोमीटर दायरा सौंपी हुई है 5 किलोमीटर दायरा में तो हम जा सकते हो कोई लोग हमको अगर फोन करो तो
1: हाँ।
0: जैसे जानवर हीट में हो तो गाय भैंस
1: तो यह लीजिए जो संसाधन होनी वो आपको काबिल उछा
0: ये संसाधन अगर हम बात करो महोदय तो हमारा जो है ये लालकू बटी सीमन सप्लाई हो हम लोगों को तो हर महीने में जो है 1 तारीख हो गाड़ी हमारे यहाँ अवेलेबल है जैसे कि लिक्विड नाइट्रोजन हो तो उनमें सेफ रहो सीमन तो सेफ रखना लीजिए हर महीने में गाड़ी राउंड करें और घुमाऊ
1: तो कृषि बागवानी के और पशुपालन आपको एक बायफ में एक स्वतंत्र कर्मचारी रूप में काम करने लग रहा
0: जी
1: और जबेटे के लिए आपको कुछ अर्जित ये तो बहुत भल बात है क्योंकि कृषि जो समेकित रूप से उकनी कृषक अपने भेज यहाँ जो परिप्रेक्ष्य छु वहाँ जीवन यापन कर सकनी।
0: जी जी
1: अच्छा हम आप हैं ये लोग पूछना चाह कि भारत सरकार और राज्य सरकार किसानों के बहुत सारी सुविधाएं देने लग रहे हैं तो कोई राज सहायता आप उन्हें प्राप्त करें।
0: हाँ महोदय जो सी में हम प्रधानमंत्री बटी जो हमको 2000 रुपये राशि मिले तो वो हम लोगों को प्राप्त है जल्दी हम बीज अपन खाद वाद समय पर खरीद लो ये चीज मतलब एल गवर्नमेंट हमारे कृषि लीजिए बहुत ज्यादा।
1: तो ये बताओ चलते चलते हम आप हैं प्रश्न एक आई जानना चाह कि एक तो जो पर्वतीय क्षेत्र में कृषि के नुकसान के छू के द्वारा होना जंगली जानवरों द्वारा या होना या फिर कुछ मानवीय नुकसान न होने लग रहा एक तो यह जानना चाह और दोहर में आप हैं यही एक प्रश्न ये मैं पूछना चाह कि पर्वतीय क्षेत्र तक जो कृषक भाई बहनी कृषि कार्य करने लग रही उन्होंने का आपको के संदेश दिन चाला।
0: महोदय बहुत बड़ी बात कह बोल तो इसमें मैं कृषक महोदय हूँ यही कौन चाल की मतलब हमारे पलायन को रोकते हुए कृषि कार्य और पशुपालन को ज्यादा बढ़ावा दीबे हम अपन गांव घर में ही रह बेर ये चीज को पैदावार कर बेर अपन आजीविका प्राप्त कर सकनो जैल की अब हम गांव में रह बेर ये सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाए जाएंगे वे लाभ लीबेर अपने गांव में अपने वातावरण में पल बढ़े अपन आजीविका प्राप्त कर बे यही अपन निर्वहन करो।
1: जी तो गोपाल दानी जी अपूल हमारे तक बात करी और स्टूडियो में अच्छा अपन विचार साझा करी यह लीजिए अपन बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता मल्ल आप सुनिश्चय सरकार के 12 वर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उपयोग व लाभ उठावे विविधीकरणक माध्यम आय अर्जन विषय पर श्री गोपाल दत्त दानी जी दग ये बातचीत इन दग बात करना चाहिए कृष्ण सिंह लटवाल।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपको सुनू खेती बचाओ अभियान, जैविक खेती के फायदे पर ग्राम हरचनोली बेतालघाट जिला नैनीताला कृषक बालम सिंह बोराजू दगर क्षेत्र संकलित यो बातचीत।
7: तो आज हम बात करने लगे हैं ग्राम झिरोली हरचनोली बालम सिंह बोराजू। बोराजू जैसे आप खेत कर छा, तो खेत में क्या क्या कर छा?
8: नमस्कार, खेत में हम पहले जो फसल ही जी मसूर वगैरह रूर और यही मिली गेहूं और अच्छा। अभी यहाँ पर बरसात फसल लगाई जी, जब मैं सब दाल दलहन फसल ही
7: अच्छा।
8: जब मैं बहुत भट राजमा लोबी और ये मक्का ये प्रकार दाल दलहन फसल ही
7: अच्छा। मतलब ये सब आपको यहाँ है
8: हो? ये हमारे क्षेत्र जो से उसी तो मशीना नाम प्रसिद्ध से मर्च हल्द घड़ी कुशा घाटी
7: पिताल घाट डू मिली हूँ तुम्हारी ये भद्रवाज खान साइड पासवर्ड साइड जो छो मर्च और यो में ज्यादा फेमस छो
8: जी मिला जी बिल्कुल। अब अखिल ये मैं दिखा ला तुम ये चौमासी जो फसल ही ये बात सारा सबू पाक लाल मिलाल पहली ऊंची पर आज कमाई को भद्रवाज खान साइड में मिर्च हल्दी और इस प्रकार की पेटी लगती है बाजार लागी काश्तकार एक ही बेच दी
7: अच्छा। तो लगभग कद्दू जमीन होने लगे पास?
8: मेरे पास गुरु जी एल में यहाँ हरचनोल बेताल घाट पर यहाँ हमारे कोशी किनार पर एक जमीन से 15 आई अच्छा। और मात ट्री बिडर एक जगह पहाड़ में आई घाटी है पूर्वज हमारे मात ट्री बिडर में रही ने तो वहाँ हमारे खेत से आई बाजू से हमारे बाजू नामक से और यहाँ तक खैर हमारे नामक से तो वो वहाँ लगे थी और यहाँ लगे थी लगभग लगभग वहाँ होने 20-25 नाई वहाँ होने और 15 नाई लगभग यहाँ से
7: मतलब ज्यादा मोटा अनाज का उत्पादन ज्यादा कर
8: सोयाबीन है गाय और गोल वाल भट है गाय और गेहूँ है वो मर्च है ये लाल बैल पंतनगर
7: अच्छा।
8: जो तो हम यो तिराई करनू हरचनोल और घिरोई में जो ग्राम पंचायत में मैल रहा
7: अच्छा।
8: और जो हमारे बाजू वाली जमीन से हुआ मर्च राजमा और चप्त भट चप्त जो स्वास्थ्य लिए बहुत बढ़िया होनी चप्त भट आयरन और होनी वो माथा बेल्ट में होनी ये हाइट मच ना वाल बेल्ट हाँ तो वो ये चीज वहाँ होनी माथा ये बेल्ट में
7: अच्छा अच्छा। जैसे हम बात कर लू की अजान हो हम देखने कि उत्पादन को बढ़ोने लीजिए बहुत सारे लोग रासायनिक खाद में उपयोग करने लग रही तो आपके रासायनिक खाद का प्रयोग करता है या
8: बीजू हमर जो यो बेल्ट से यो रासायनिक खाद को प्रतिबंधित बेल्ट से कोशिया घाटी
7: अच्छा।
8: यहाँ जो लोग प्रोडक्ट से यहाँ तुमको कोई रासायनिक खाद नहीं मतलब ये यूरिया डीएपी ये चीज कोई नहीं मिला रामनगर में यदि कोई जालो पकड़ी ले जल और यो चीज यहाँ प्रतिबंधित दवाई और ये चीज प्रयोग ये साबन यहाँ लगभग लगभग जैविक खेती ये क्षेत्र में
7: जो हमारे सुनने वाले छे और आपको जो ये चीज के कारण लग रहा है खेती करना तो जैविक खेती के लाभ छे आज वक्त में
8: बीजो ये लाभ लाभ छे सब पहले लाभ तो स्वास्थ्य सब सब फुल धन स्वास्थ्य होते अपने शरीर सही से सब सही से
7: बिल्कुल सही बात
8: ये बात काश्तकारक हमको ईद जो बाजार कीमत ही ईद 10-20 रुपए किलो हमको बढ़ते मिले जोहर लाभ से हमारे कीमत पैस जोहर लाभ से हमको भटकन नहीं पड़न ये चीज लीजिए कि यहाँ बेचो वहाँ बेचो लोग हम पाओ नहीं हम पास चीज से तो लोग हम पाओ नहीं।
7: बहुत भली बात कह तुम्हें क्योंकि आजकल हम देखने की और लोग समझने लग रहे हैं कि हम मोटे अनाज का उत्पादन करूँ वही फैद हम उनका मिलने लग रही तो हम उनका फायदा उठाना चाहे और एक उत्पादन करना चाहिए लीजिए सरकार ने चाहे कि मोटे अनाज नो उत्पादन करो जो हमारे स्वास्थ्य लीजिए बहुत लाभदायक
8: बिल्कुल बिल्कुल बीजी बिल्कुल मैं सरकार को अनुरोध कि जो जैविक हुई इनू का भी बैकग्राउंड जीरो है, इनू को टेक्निकल और ज्ञान ले रहे, लेकिन और इवन सुधार कर भी ज्यादा से ज्यादा लोगों का हम लोग प्रेरित कर सको और ज्यादा से ज्यादा लोग हम जो खेत पर आवाज है सकू, चले की आज खेती रकबा कम होता वो
7: जैविक खेती की हम बात करूँ तो जैविक खेती हमारे पर्यावरण लीजिए जो बहुत भल छ
8: बिल्कुल तुम बीजू में मुखा बात छिंदी जो बाद में कह दी से बिल्कुल पर्यावरण जी केमिकल रसायन जो से ये हर तरीके पर्यावरण बजी स्वास्थ्य बजी खेती बजी और हर ये पानी बजी और वायु बजी सब चीज के खराब कर
7: रसायनिक जो खाद छू हमारे खेत जो उर्वर शक्ति छू को कम कर
8: जी बिल्कुल उर्वरा शक्ति कम कर दी यदि हम अपन खेत में डाले थे ये असर इथा उठा ही पड़े मनुष्य जीवन में पड़े फण मन पड़े यानी कि शरीर सांसद द्वारा लज दिमागी तौर पर लज और भोजन द्वारा
7: बिल्कुल बिल्कुल मिला बेर जो जैविक खाद वो हमारे स्वास्थ्य लीजिए बहुत लाभदायक है
8: बिल्कुल गुरुजी ये पहले का हमारे गुड़गढ़ जी हमेशा 100-110 और बिना दवाई घर दूध होती घर का अनाज होती श्रम होती सब खेत करना सब तुलसी श्रम तो हृष्ट पुष्ट रही और कम से कम 100 साल फिर वहाँ जीवित रही और आज हम दिखाणो कैसे हार्ट अटैक जानो कोई बीपी जानो कोई नई नई बीमारी जानो अल्पाई में आज नहीं जानो छटर ले जानो तो यो चीजा लीजिए बिल्कुल जैविक खेती के जरिए हम दोबारा अपने
7: मेरा एक अच्छा अनुभव कि जो आज जो मैं 30-35 साल जो पहले जो मैं लाई साग खाची या लोग खाची थी और जो साग खतर थी वो आज कम

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अल्लाह को यो गीत सुनने छा गायक छी शंकर उप्रेती। श्रोताओं, यो कार्यक्रमक प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, प्रस्तुति छी संजय जोशी। गोकुल का आज्ञा दियो, नमस्कार।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:30 हुए हैं। आपको मऊनी उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक जांच पड़ताल करी। उन्होंने कर्णप्रयाग और नगरासु प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई जारी, दोषियों पर होल सख्त कार्रवाई। प्रदेश भरक जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों के शिक्षा विभागक प्रस्तावित त्रिस्तरीय ढांचों में शामिल करी जल। मुख्य सचिव आनंद वर्धनल केंद्रीय योजनाओं में अपेक्षित तकनीकी और संस्थागत सुधार के तुरंत लागू करने निर्देश दिए। और 31वीं वाहिनी PAC रुद्रपुर में 3 दिवसीय प्रादेशिक हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता शुरू। अब समाचार विस्तार सुनो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को की कर्णप्रयाग और नगरासु में सामनी आई घटनाओं के संबंध में सभी पक्षों के ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन जरूरी कार्रवाई करने। उन्होंने कहा कि जांच में जो ले दोषी पाई जाल वो खिलाफ कार्रवाई ले करी जरे और सभी वास्तविक जानकारी के आधार पर अगिन के लिए सख्त कार्रवाई करी जाल। आज सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री को की चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रदेश सरकार सभी ठोल प्राथमिकता छू। उन सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने अपील कर रहे कि वो देवभूमि उत्तराखंड शांत वातावरण में अपू यात्रा के पूरा आनंद लियो और कोले प्रकारक अफवाह पर ध्यान नहीं दियो। उन्होंने साफ करो कि झूठ और भड़काऊ खबरें फैलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करी जाए।
1: कर्णप्रयाग में और नगरासु में जो भी घटना सामने आई है और सभी पक्षों को हमने निष्पक्ष रूप से सरकार प्रशासन पुलिस कार्रवाई कर रही है और सभी प्रतिनिधि मंडल यहां पर प्रशासन के लोगों से मिले भी हैं और हमारे पुलिस महानिदेशक ने लगातार पिछले 2-3 दिनों से बात की है और सभी को बता दिया गया है कोई अब इशू नहीं है और कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई आगे भी होगी। और सोशल मीडिया पर या भ्रामक जो समाचार फैला रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि अब जो भी जो है अब कानून अपने हाथ में इस प्रकार से लेगा, भ्रामक खबरें फैलाएगा, तो निश्चित रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी।
0: प्रदेश भरक जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों के शिक्षा विभागक प्रस्तावित त्रिस्तरीय ढांचमा शामिल करी जाल। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावतल देहरादून में विभागीय जांच पड़ताल बैठक के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुरान पेंशन योजना बटी वंचित शिक्षकों के लाभ देने और अशासकीय विद्यालयों में PTA शिक्षकों का मांग संबंधित प्रस्ताव ले जल्द मंत्रिमंडल के सामने लाई जाल। बैठक में DLED प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों सामान्य कार्यकलिजी समान वेतनमान देण और अशासकीय विद्यालयों में मानदेय

0: प्राप्त शिक्षकों के अस्थायी नियुक्ति प्रदान करनक दगड़ दोहर विषयों पर विचार विमर्श करीगो। यह प्रकरण निपटा रख लीजिए। महानिदेशालय स्तर पर एक समिति गठित करनक निर्णय ले लीगो। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावतल नैनीताल जिला काठगोदाम में जमीन धोखाधड़ी समिति की बैठक में जमीन धोखाधड़ी बटी जुड़ी 77 मामलों की जांच पड़ताल करी। अलग अलग जिलों बटी मिली मामलों की जांच के बाद कुमाऊं आयुक्तल 30 मामलों में मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दी। उन्होंने कहा कि जमीन धोखाधड़ी बटी संबंधित मामलों की रिपोर्ट जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक माध्यमल समिति ताले पहुँच जैक बाद हर एक मामले के गंभीरता जांच पड़ताल करी जाए।
1: मामले अलग अलग जिलों से आए थे जिसमें हम एक तो रिपोर्ट मांगते हैं तहसील से, डीएम्स के थ्रू वो रिपोर्ट आती है। आजकल हमने पैरेलली एसएसपीस को भी हम रिपोर्ट दे रहे हैं कि वो भी इसको प्रोब कर ले। तो उस सब के बाद जो रिपोर्ट्स आज यहाँ पे आई थी, कुल मिला के 77 मामले ऐसे थे जो हमने रखे थे यहाँ बैठक के लिए, जिनमें रिपोर्ट मांगी गई थी। और यहाँ पे जो कमेटी बैठी उन्होंने उसको डिसाइड किया, तो हमने 30 मामलों में पाया कि ये लैंड फ्रॉड के मामले बनते हैं और इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो उसको कमेटी ने अप्रूव कर दिया है। इसके बाद ये एफआईआर दर्ज और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे चलेगी।
0: कुमाऊं आयुक्तल को कि यदि योजनाबद्ध तरीकल जमीन धोखाधड़ी मामल सामने आनी तो संबंधित लोगों के विरुद्ध संगठित अपराधक अंतर्गत ले सख्त कार्रवाई करी जाए।
2: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के यो बुलेटिन अपु लोग आकाशवाणी देहरादून केंद्र बैठे सुनने लग रहा। इन समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड में उपलब्ध छन। ताजा समाचार नक लीजिए अपू लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता।
0: मुख्य सचिव आनंद वर्धनल राज्यक विकास कार्यों के रफ्तार दे नक लीजिए। संबंधित अधिकारियों के केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और वित्तीय प्रबंधन के लिबेर कई महत्वपूर्ण निर्देश दे रही। आज सचिवालय में हई सचिव समिति की बैठक में मुख्य सचिव को कि सभी विभाग केंद्रीय योजनाओं में उम्मीदक अनुसार तकनीकी और संस्थागत सुधार के तुरंत के लागू करूं। उन्होंने कहा कि यह केंद्र और बाहरी सहायतित परियोजनाओं धे मिलन वाल धनराशि बखत पर और पर्याप्त मात्रा में मा मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन विभागों के नई आईटी आधारित सेवाओं और नवाचारों परीक्षण करना छू उ बिना को देरी के यके पूरा करूं। दगड़े ही जिन योजनाओं पर काम पूर हैगो उनर उपयोगिता प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी कागजात बखत पर भेजी जाओ। मुख्य सचिव को कि जाले नई नीतियां बनाण या वर्तमान नीतियों में संशोधन की जरूरत छू वह तुरंत प्रभावी कार्रवाई करी जाओ। उन्होंने साफ करो कि राज्य में केंद्रीय सहायता चल नई विकास कार्यों के गति दृढ़ लीजिए। प्रशासनिक सुगमता और तकनीकी अपनाण बेहद जरूरी छू। यह लीजिए सभी अधिकारियों के तैयारी काम करण हॉल। मानसून सीजनक दौरान भारी दियो और भूमि धसाव जस चुनौतियों दे निपटनक लीजिए। प्रदेश सरकार राज्य पर्वतीय जिलों में जुलाई अगस्त और सितंबर महीनक राशन एक दगड़ उपलब्ध कराणक विशेष व्यवस्था कर रहे। अपर आयुक्त खाद्य पीएस पांगतिल बता कि पर्वतीय जिलों सुदूर और बेहद दुर्गम इलाकों सरकारी गोदामों में 3 महीनक राशन पहुँच है लो। उन्होंने बताया कि पहली जुलाई बटी राशन डीलरों के माध्यमल यके बाटन शुरू कर दी जाल। श्री पंक्तिल बता कि जुलाई महीनक दौरान ही 3 महीनों का राशन उपभोक्ताओं के समयबद्ध तरीकल बांट दी जाल। जेल की मानसूनक दौरान खाद्यान्न आपूर्ति पूरी तरीकल सुचारू बनी रो।
3: मानसून को लेकर के हम लोगों ने 3 माह का राशन पर्वतीय जनपदों को पूर्व में ही भेजना प्रारंभ कर दिया। लगभग सभी हमारे खाद्यान्न गोदामों में 3 माह का राशन पहुंच रहा है और हम 1 जुलाई से 3 माह का राशन जुलाई अगस्त सितंबर एक साथ हम वितरण करेंगे और उम्मीद रहेगी कि हम जुलाई में ही 3 माह का राशन पूरा वितरण सुनिश्चित कर लेंगे।
0: उधम सिंह नगर जेल में 31वीं वाहिनी पीएसी रुद्रपुर में आज बटी 3 दिवसीय प्रादेशिक हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता शुरू है गई। पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार मीणाल प्रतियोगिता का शुभारंभ करो। प्रतियोगिता में राज्य चंपावत पिथौरगढ़ नैनीताल और उधम सिंह नगर दगड़ा 9 जिलों के 176 खिलाड़ी भाग ली नहीं। यह अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक कल कह की यौ तरीका प्रतियोगिताएं पुलिस कर्मियों में खेल भावनाओं के विकसित करण और राष्ट्रीय स्तर पर भल प्रदर्शन करण में सहायक सिद्ध होनी।
4: ये प्रतियोगिताएं पुलिस में खेल भावनाओं को विकसित करने के लिए तथा

0: आपस में भ्रातृत्वभाव को विकसित करने के लिए करवाई जाती है, ताकि हमारे खेल का स्तर जो है वो उत्कृष्ट हो और प्रतियोगिता की भावना का विकास हो। देखिए, एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हम लोग अपने खिलाड़ी तैयार करते हैं ताकि नेशनल पुलिस खेलों में हमारे राज्य का जो प्रदर्शन है वो उत्कृष्ट हो और सभी खेलों की प्रतियोगिताएं अलग अलग स्थानों पर आयोजित की जाती है।
1: वे खिलाड़ी गोपाल सिंह कन्यालाल को की यो तरीके प्रतियोगिताओं का आयोजन पुलिस जवानों के अगिन के बर्णक मोकले मिलूं।
2: ये गेम अभी हमारे 31वीं पीएससी में चल रहे हैं, यहाँ से हमारे जनपद से और पीएससी आईआरबी टीमें आती हैं और ये गेम हमेशा होते रहने चाहिए। इससे हमें काफी अपनी फिटनेस का अच्छा एक हमें अनुभव मिलता है खेलने का और फिटनेस भी बनी रहती है और इन गेमों से ये होता है कि हमारे स्टेट टीम से भी हमारे सिलेक्शन होता है और आगे हम नेशनल खेलने जाते हैं, ऑल इंडिया पुलिस गेम खेलने जाते हैं, आगे का हमें अनुभव मिलता है, इससे हमें काफी बेनिफिट भी होते हैं।
1: टिहरी जिला मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा में शिवपुरी चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक विनोद कुमार शर्मा का निधन है गो। ड्यूटी के दौरान मुनिकीरेती बटी शिवपुरी चौकी जान बखत उनर गाड़ी अनियंत्रित हबे गहरी खाई में गुरी गई। SDRF और पुलिसक संयुक्त टीमल फॉरन रेस्क्यू अभियान चले बेर उनके भैर निकालो और उपचारक लीजी एम्स ऋषिकेश पहुंचा, जहां चिकित्सकों उनके मृत घोषित कर दी। यह दुर्घटना पुलिस विभाग में शोकक लहर छु। वह राजधानी देहरादून पटेल नगर क्षेत्र स्थित लालपुरक पास आज एक सिटी बसक चपेट में आण बजेल 6 लोग घायल है गई। घायलों के अस्पताल में भर्ती कराई गो। पुलिसल बस चालक के हिरासत में लिहेलो और मामले की जांच ले करी जाने। आखिर में मुख्य समाचार आई सुनो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक का जांच पड़ताल करी। उन्होंने कर्णप्रयाग और नगरासू प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई जारी, दोषियों पर होल सख्त कार्रवाई। प्रदेश भरक जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों के शिक्षा विभागक प्रस्तावित त्रिस्तरीय ढांचमा शामिल करी जल। मुख्य सचिव आनंद वर्धनल केंद्रीय योजनाओं में अपेक्षित तकनीकी और संस्थागत सुधार के तुरंत लागू करने का निर्देश दी। और 31वीं वाहिनी PAC रुद्रपुरमा 3 दिवसीय प्रादेशिक हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता शुरू। योक दगड़े ही कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचारों यो अंक इति के समाप्त हूँ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम। आइए पहले सुनते हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर को। फिल्म है पहचान, गीत रचना इंदिवर की और संगीत रचना शंकर जयकिशन की।

एक नज़र आइए अब सुनते हैं इस फिल्म में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

तो इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और आइए हम आपको सुनवाते हैं यशुदास और आशा भोसले को। फिल्म है छोटी सी बात, गीत लिखा है योगेश ने और संगीत सलील चौधरी का है।

और अब श्रोताओं, कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। फिल्म है काला पत्थर। गीत लिखा है साहिल उद्यानवी ने और संगीत राजेश रोशन का है।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस। आइए पहले सुनते हैं गुलाम अली को

तो इस समय आप सुन रहे हैं मेरे जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सफर, और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे मेरे जुड़े गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर के साथ, जहां हमारे पास है हर मैच का ताजा अपडेट और वो सब कुछ अधिक जानकारी के साथ। तो शुरू करते हैं आज का अंक, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से और इंग्लैंड का मुकाबला घाना से होगा। अर्जेंटीना, फ्रांस और नॉर्वे नॉकआउट राउंड में पहुंचे। जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने आज 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। FIH हॉकी प्रो लीग में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी। भारत ने तीसरा क्वार्टर समाप्त होने तक 3-1 की बढ़त बनाई। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कैलिफोर्निया में शुरू। और पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित।

0: तो कार्यक्रम को सबसे पहले शुरू किया जाए फुटबॉल के महासंग्राम से, यानी फीफा विश्व कप की खबरों से, जहां आज ग्रुप स्टेज में कई अहम मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें टीमें नॉकआउट राउंड में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से मैदान पे उतरेंगी। ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमेरिका के ह्यूस्टन में उज्बेकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। वहीं ग्रुप एल में 1:30 बजे अमेरिका के बोस्टन में इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। कनाडा के टोरंटो में सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से, जबकि ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में कल सुबह 7:30 बजे कोलंबिया और कांगो आमने सामने होंगे। इस बीच अर्जेंटीना, फ्रांस और नॉर्वे ने नॉकआउट राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: Could drop anywhere and it's turned in from close range. It's a second goal for Algeria and it's been scored by Amin Gouiri. Algeria coming from behind in the second half. Jordan 1, Algeria 2.
2: अल्जीरिया ने आज सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में ग्रुप जे के मैच में जॉर्डन को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के नॉकआउट राउंड में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा। मैच में पहला गोल जॉर्डन के निजार अल राशदान ने मैच के 36वें मिनट में किया। इसके बाद अल्जीरिया ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी करते हुए पलटवार किया और 2 गोल करते हुए मैच अपने पक्ष में कर लिया। इस हार के साथ ही जॉर्डन विश्व कप से बाहर हो गया है। इससे पहले 28 साल बाद फीफा विश्व कप खेल रही नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। नॉर्वे के लिए एरलिंग हॉलैंड एक बार फिर से मैच के हीरो बनकर उभरे। मैच का पहला गोल पहले हाफ के 43वें मिनट में नॉर्वे के मार्कस होल्मग्रेन पेटरसन ने किया। इसके बाद दूसरे हाफ में 48वें मिनट में एरलिंग हॉलैंड ने गोल कर नॉर्वे को 2-0 से बढ़त दिला दी। इसके बाद सेनेगल की तरफ से इस्माइला सार ने 53वें मिनट में गोल किया। एरलिंग हॉलैंड ने 58वें मिनट में गोल कर नॉर्वे को 3-1 से आगे कर दिया। इस्माइला सार ने सेनेगल के लिए दूसरा गोल किया। वहीं एक अन्य मुकाबले में अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने उतरे किलियन एम्बाप्पे के 2 शानदार गोल की मदद से फ्रांस ने इराक को 3-0 से पराजित किया। इस जीत ने फ्रांस को राउंड ऑफ 32 में एंट्री दिला दी है। इसके साथ ही एम्बाप्पे 4 गोल के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में लियोनेल मेसी के ठीक पीछे खड़े हैं। फ्रांस के लिए पहला और दूसरा गोल एम्बाप्पे ने किया। इसके बाद माइकल ओलिस ने एक और शानदार पास दिया, जिस पर डेम्बेले ने गोल

0: कर अपने करियर का पहला विश्व कप गोल दर्ज किया। दिन का पहला मुकाबला स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी के नाम रहा, जो न सिर्फ ऑस्ट्रिया के खिलाफ अर्जेंटीना की जीत के नायक बने बल्कि फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए। मेसी के दो गोल की बदौलत मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया पर 2-0 की जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने नॉकआउट दौर में भी जगह पक्की कर ली है। मेसी ने मैच के 38वें मिनट में गोल कर अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई, इसके बाद इंजरी टाइम में एक और गोल करके टीम की जीत पक्की कर दी।
1: मेसी! History in Dallas, 40 years to the day since Diego Maradona scored the hand of God. Lionel Messi scores the goal to make him the World Cup's all-time leading scorer. Wonderful moment.
0: इस गोल के साथ ही मेसी टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ये फीफा विश्व कप में इस महान खिलाड़ी का 17वां और इस वर्ष का 4th गोल था। अपने 39वें जन्मदिन से 2 दिन पहले मेसी ने न केवल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ा है, बल्कि वे फ्रांस के जस्ट फोंटेन और ब्राजील के जॉर्जिन्हो के बाद लगातार 6 वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैस्ट।
2: और फुटबॉल के इस महासंग्राम के बाद अब निशानेबाजी की बात की जाए, जहां जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने आज 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत पदक जबकि युग प्रताप सिंह राठौड़ ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी स्पर्धा की टीम इवेंट में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की टिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं इस प्रतियोगिता में, जिसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। कार्यक्रम में अब बात हॉकी के मैदान से हॉकी की खबरों की, जहां FIH हॉकी प्रो लीग में लंदन में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने मुकाबले में 3-1 की बढ़त बना रखी है। भारत के लिए अभिषेक ने मैच के 21वें मिनट में, नीलकांता शर्मा ने 23वें मिनट में और सुखजीत सिंह ने 39वें मिनट में 1-1 गोल किया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से नदीम अहमद ने पाकिस्तान का एकमात्र गोल दागा। वहीं मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का 7वां संस्करण आज से बेंगलुरु में शुरू हो गया है। सुनते हैं इस प्रतियोगिता पर हमारी रिपोर्ट।
3: मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का 7वां संस्करण आज से बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन जलाहली में शुरू हो गया है। प्रतियोगिता के पहले मैच में भारतीय वायुसेना ने भारतीय सेना की दक्षिणी कमान को 2-0 से हरा दिया। 3 जुलाई तक चलने वाली इस हॉकी प्रतियोगिता में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लीग सह नॉकआउट आधार पर ये मुकाबले एयरफोर्स स्टेशन जलाहली स्थित हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 2018 से इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। इस दौरान टूर्नामेंट की विजेता टीम को 10 लाख रुपए और उप विजेता को 8 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। प्रत्येक मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच को 25,000 रुपए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इस टूर्नामेंट का नाम वायुसेना के महान मार्शल अर्जन सिंह के नाम पर रखा गया है। हॉकी खेल के प्रति मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह का जुनून बेमिसाल था। भारतीय वायुसेना के इस पूर्व अधिकारी ने हमेशा ही वायु योद्धाओं को एक ऐसे वीर के रूप में प्रेरित किया जिन्होंने आगे रहकर नेतृत्व किया, चाहे वे युद्ध का मैदान हो या फिर खेल का मैदान। इस प्रतियोगिता का 6th संस्करण पिछले वर्ष चंडीगढ़ के रघुवीर सिंह भोला हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिनमें 2 अन्य देशों की वायुसेना की हॉकी टीमें सहित कुल 12 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें भारतीय रेलवे ने खिताब अपने नाम किया था। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
2: तो एक शानदार प्रतियोगिता का आगाज हो गया है और एक प्रतियोगिता का आगाज आज होने को है। US ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कैलिफोर्निया के फुलर्टन में शुरू होने जा रहा है। प्रतियोगिता में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का नेतृत्व करेंगे।
4: सिंगल्स में विश्व रैंकिंग में 14वें स्थान पे काबिज लक्ष्य सेन को दूसरी वरीयता दी गई है और पहले दौर में उनका मुकाबला बेल्जियम के जूलियन कैरागी से होगा। इस महीने की शुरुआत में इंडोनेशिया ओपन में पहले दौर में बाहर होने के बाद लक्ष्य वापसी करने के लिए किसी तरह की कसर नहीं छोड़ेंगे। श्रीकांत पुरुष सिंगल्स में अपना पहला मैच चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू के खिलाफ खेलेंगे।

0: दयानंद जापान की चौथी वरीयता प्राप्त युदाई ओकीमोतो के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। एस शंकर मुथुस्वामी सुब्रमणियन ने भी मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है और उनका मुकाबला क्वालिफायर से होगा। महिला वर्ग में कुल 7 भारतीय खिलाड़ी सिंगल्स में चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त तन्वी शर्मा और 6ठी वरीयता प्राप्त देविका सिहाग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। 17 वर्षीय तन्वी जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगी, जबकि देविका का सामना पेरू की इनेस लुसिया कैस्टिलो सालाजार से होगा। विश्व रैंकिंग में 91 स्थान पर काबिज अनमोल खरब पहले दौर में बुल्गारिया की कालोयाना नलम्बतोबा से भिड़ेंगी। रक्षिता श्री एस का सामना पहले दौर में क्वालिफायर से होगा। अगर वह आगे बढ़ती है तो अगले दौर में उन्हें कनाडा की शीर्ष वरीयता प्राप्त मिशेल ली का सामना करना पड़ सकता है। श्रियांशी वल्ली शेट्टी अपना पहला मैच कनाडा की राहेल चान के खिलाफ खेलेंगी। तान्या हेमंत का सामना जापान की तीसरी वरीयता प्राप्त रिको गुंजी से, जबकि आकर्षि कश्यप का मुकाबला चीनी ताइपे की तुंग सियो टोंग से होगा। महिला डबल्स में भारत की ओर से त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ही चुनौती पेश करेंगी। उनका पहला मुकाबला स्पेन की पाउला लोफेज और लुसिया रोड्रिगेस से होगा। पुरुष डबल्स के ड्रॉ में कोई भी भारतीय जोड़ी शामिल नहीं है। मिक्स डबल्स में 7वीं वरीयता प्राप्त ध्रुव रावत और मनीषा के इंडोनेशिया के विरावन एहसान आदम और सेरेना कानी के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैप।
1: और अब बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
2: पद्म भूषण डॉक्टर विजय अमृतराज खेल टेनिस, श्री सविता पूनिया खेल हॉकी, रोहित गुरुनाथ शर्मा खेल क्रिकेट।
1: पद्मश्री से सम्मानित होने पर सविता पूनिया ने इसे अपने लिए गौरव का क्षण बताया।
3: खुशी तो बहुत है क्योंकि हॉकी में लंबी जर्नी रही है मेरी और काफी हार्ड वर्क किया है और टीम की बहुत हमेशा सपोर्ट रही है, फैमिली की सपोर्ट रही है। जब भी कुछ एक्स्ट्रा अवार्ड मिलता है तो डेफिनेटली बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं जो भी हूँ अपनी टीम की वजह से और अपनी फैमिली की वजह से हूँ। हमेशा वो जर्नी याद आती है कि आपने खेलना क्यों स्टार्ट किया और कब स्टार्ट किया। तो एक वो टाइम था कि मुझे घर से बाहर निकलने में भी डर लगता था, हॉकी खेलना तो बहुत दूर की बात थी, और आज मुझे राष्ट्रपति भवन में अपनी फैमिली के साथ जाना है तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है।
1: वहीं पद्म भूषण से सम्मानित होने पर विजय अमृतराज ने इस सम्मान के लिए भारत सरकार का आभार प्रकट किया।
4: I think I'm truly honored, I'm thrilled, I'm delighted, humbled by this incredible award by the government of India, the People's Award. The Padma Awards are very, very special. The Padma Bhushan is truly special for me at this stage in my career. And I'm honored to thank the government of India, I thank the Honorable Prime Minister, and of course, the people of this great country who have helped me perform to the best of my ability, not just in India, but around the world. And it has been a real honor to be able to represent India around the world.
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत केरलम के तिरुवनंतपुरम में साइकिलिंग बाय द सी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान श्री मांडविया ने कहा कि साइकिलिंग एक बेहतरीन एक्सरसाइज है।
5: Cycling is a best exercise, as a solution of pollution, as a save the fuel, is also solution of traffic. Ek cycling mein itna fayda hota hai, to why we are not doing cycling? Sabhi Kerala vasi ko agrah hai ki aapka kamkaj ka sthan dur na ho, to aap cycling kariye, cycle leke aapke workplace par jaiye. Sabhi college aur school ke youth ko mera agrah hai ki aap school college cycle leke jaiye aur cycling ko promote karke healthy nation aur wealthy nation ke slogan करिए।
1: किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए अपने देश का प्रतिनिधित्व करना उसका सबसे बड़ा सपना होता है। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी का बीसीसीआई ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें वैभव पहली बार भारतीय टीम की जर्सी प्राप्त करके बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस दौरान वैभव ने कहा कि इस पल को शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।
6: जिस चीज के लिए मैंने फर्स्ट डे से बैट पकड़ा था, क्रिकेट ग्राउंड पे मैं गया प्रैक्टिस के लिए, वो आज ड्रीम मेरा पूरा हुआ, और जो मेन स्टेप होता है वो आज कंप्लीट हुआ। और मतलब मैं इस चीज को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ड्रीम जैसा ही लग रहा था, और मतलब

0: टी-शर्ट देखते ही इतना मैं खुश हो गया।
1: और श्रोताओं, आज 23 जून है। आज ही के दिन 2013 में भारतीय टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में बर्मिंघम में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी।
2: It's been a tremendous bowling performance and Mahendra Singh Dhoni, well, this was the one trophy he didn't have, he's got it now. And India now winners of the ICC Champions Trophy 2013.
1: तो इन्हीं स्मृतियों के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी राय आप हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व

0: न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
1: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्दी होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
3: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के

0: साथ विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे एनएसए की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 ट्रिलियन तक पहुँच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की और बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने 1 कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at second civil investiture ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cybersecurity to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa, in New Delhi this evening. In a social media post, he also highlighted that India's BRICS chairmanship will seek to advance practical cooperation, support the priorities of the Global South, and contribute to a safer, more secure, and inclusive world. Prime Minister Narendra Modi has stressed on Nagrik Devo Bhava and urged officers to keep citizens at the center of governance. Interacting with 183 officer trainees of IAS 2024 batch who have been attached as assistant secretaries in various ministries and departments in New Delhi today, Mr. Modi called upon young civil servants to lead India's journey towards Viksit Bharat at 2047. The Prime Minister urged the young civil servants to dedicate themselves to nation building with a strong sense of purpose, innovation and citizen-centric governance. The Prime Minister also highlighted the growing role of women in nation building, noting that more than 40% of the current batch comprises women officers. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that the government is making advanced preparations for Kharif season to help farmers deal with the possible impact of a weak monsoon caused by El Nino. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Chauhan said that the country had so far seen around 43% less rainfall and that the monsoon was expected to remain weak in July too.
4: Overall rainfall has been 43% below normal so far, and according to the weather forecast, conditions are likely to remain weak until the week ending 2nd July. This means that our kharif crops could be affected. We have been preparing for such situations for quite some time. An assessment has also been carried out to determine how many districts may be affected. Based on the current projections, around 315 districts are likely to experience deficient rainfall.
3: Mr. Chauhan said that states have been advised to promote crops like pulses, coarse grains and oilseeds, which require less water and can still perform well under difficult conditions. He said scientific protocols, timely crop planning and district-level preparedness were being strengthened in coordination with the states. Mr. Chauhan added that Krishi Vigyan Kendra, AgroMet units and other advisory channels are being used to ensure that farmers receive timely guidance. The International Center for Ocean Information Services, or INCOIS, has begun issuing specialized bulletins on the potential impacts of the

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष। आइए पहले सुनते हैं मोहम्मद रफी को फिल्म प्रिंस में। गीत रचना हसरत जयपुरी की है और संगीत रचना शंकर जयकिशन की।

दिल अपना और प्रीत पराई। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म में आशा भोसले को। गीत लिखा है हर्षद जयपुरी ने और संगीत शंकर जयकिशन का है।

और अब श्रोताओ, इंद्रधनुष कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं मन्नाडे को, फिल्म है वक्त। गीत लिखा है सही लुधियानवी ने और संगीत रवि का है।

शूट अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी गजलों का कार्यक्रम महफिल।

महफिल फरमाइशी गजलों की इस बज में आप सभी कदरदानों का स्वागत है। आज की इस बज में आप सुनेंगे अपनी पसंदीदा खूबतरीन बेनजीर गजलें, जिसे सुनने के लिए आपने हमें खतों या व्हाट्सएप के जरिए गुजारिश की। दोस्तों, गजल केवल लफ्जों का मिलन ही नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में छुपी तड़प, उम्मीद और एहसास की पेशकश है। तो आइए आज की इस महफिल का आगाज करते हैं गुलाम अली की गाई इस गजल से, जिसे सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा, इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू और शिखा शेफाली, कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी सहनी और मोहम्मद अफजल मलिक।

दोस्तों लव्ज जब सुरों का साथ पाते हैं तो गजल बनकर दिलों में उतर जाते हैं। कहते हैं गजल सुनने के लिए दीवानगी तभी आती है जब दिल में तड़प हो, तभी तो हमारे श्रोतागण अपनी फरमाइश हमें भेजते हैं जिसका हम सबको इंतजार रहता है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी फरमाइश हमें भेजें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम में आप उनका लुत्फ उठा सकें। आइए सुनते हैं अगली गजल जिसकी फरमाइश की है जसपुर उत्तराखंड से अकील अहमद सलमानी ने, पद्मा टॉकीज नेपालगढ़ मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, शीशगढ़ बरेली से इलियास इद्रिसी, नईम इद्रिसी, नदीम इद्रिसी और असद बाबू ने। ये सभी लोग सुनना चाहते हैं जगजीत सिंह और लता मंगेशकर को।

दोस्तों, गजलों की कशिश ही कुछ ऐसी होती है कि इसके तलबगारों को फिर कुछ और भाता नहीं है। तभी तो इस महफिल में चंद खूबसूरत गजलों का एक गुंजा बन जाता है, जिनके लिए आप हमें मैसेज करते हैं। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो आइए सुनते हैं चंदन दास की गाई ये गजल, जिसे सुनवाने के लिए हमें मैसेज किया है लाला बाजार अल्मोड़ा से बाबा फरहान, खुशबू, संजू सामिया, आफिया, मुमताज अमान, माही, नीलोफर, शन्नू और शब्बो, सिंधोली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख, करुला मुरादाबाद से अयूब खान और इरम गुड़िया ने।

अब वक्त हो चला है आज की इस महफिल की आखिरी गजल का। दोस्तों, हमें पक्का यकीन है कि आप आगे भी अपनी पसंदीदा गजलों को सुनने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मैसेज करेंगे। तो आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की गाई ये गजल, जिसे सुनना चाहते हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता, गांव कलाना राजस्थान से विक्रम कंडवासरा, सचिन सतीश योगेश कंडवासरा और युधव कंडवासरा।

दोस्तों, गजल वो आईना है जिसमें दिल के जज्बात साफ नजर आते हैं। उम्मीद है आज की इस महफिल में जज्बातों के कई रंग आपने महसूस किए होंगे। इसी के साथ अपने दोस्त मनोज कुमार जोशी को आज की इस महफिल के समापन की इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: प्रतीक्षा कीजिए।
1: दर्पण, ये कार्यक्रम आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रस्तुति है।
2: खेल दर्पण।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गजलों का कार्यक्रम महफिल। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। अब थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया

0: खेल दर्पण के सभी श्रोताओं को संजय जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, आज बारी है आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रस्तुति की, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे ताइक्वांडो में सेकंड डैन ब्लैक बेल्ट और स्थानीय स्टेडियम अल्मोड़ा में ताइक्वांडो कोच साथ ही नेशनल रेफरी वंदना सिंह से। इसके अलावा 13 जूनियर एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे अखिलेश सिंह से, जो अब सीनियर टीम के लिए प्रयासरत हैं। इस माह 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस भी मनाया गया और एडवेंचर स्पोर्ट्स में माउंटेन बाइकिंग के लिए जाने जाने वाली साइकिलिस्ट भारत भूषण शाह यानी भरत शाह, जो कि हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भी प्रतिभाग कर चुके हैं, वो सीनियर सिटीजन होने के बावजूद माउंटेन बाइकिंग का लुफ्त उठा रहे हैं। वंदना सिंह द्वारा प्रशिक्षित बच्चों ने 13वीं नेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो हल्द्वानी में आयोजित हुई थी, उसमें उनके द्वारा प्रशिक्षित 8 बच्चे मेडल विजेता रहे। एक खिलाड़ी से कोच और फिर रेफरी तक के सफर पर जानते हैं उनकी इस यात्रा को। आप स्वयं एक खिलाड़ी भी रही हैं।
1: जी जी।
0: और खिलाड़ी से कोच तक का क्या सफर रहा आपका?
1: खेलना मेरा मतलब पैशन था, मैं भी चाहती थी कि मैं ओलंपिक तक खेलूं। मैंने 2018 में लास्ट इवेंट खेला था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेली थी मैंने, जिसमें मेरा मेडल रहा था। और उसके बाद जो है मैंने जो कोचिंग है वो अब 2022 में मैं जो है स्टेडियम अल्मोड़ा स्टेडियम में लग चुकी थी। 2022 से मैंने अपने बच्चों को ट्रेन करना शुरू करा, आज करीब उनको 3 साल हो चुके हैं। तो ये उन लोग मेरे बच्चों के लिए पहला नेशनल था, बहुत अच्छा इन्होंने रिजल्ट दिया। मेरे 15 बच्चे गए थे जिसमें से मेरे 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज रहे उसमें। बहुत ट्रेन अभी उनको करना है मैंने।
0: एज ए खिलाड़ी से जब आप कोच बनी, तो कोचिंग के लिए क्या क्या परेशानी आपको शुरू में फेस करनी पड़ी अल्मोड़ा में?
1: ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, हमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फैसिलिटी हमें सब देती है। हमें बच्चों के लिए मैट प्रोवाइड करेगी, जो हमारी मैटें होती हैं वो करीब 1-1.5 लाख रुपए की भी मिलती है। और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, बस हमें ट्रेन कराना पड़ा थोड़ा बच्चों का पढ़ाई से, और पेरेंट्स को हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है
0: जी।
1: इसके लिए कि आप बच्चों को खेलने के लिए डालिए, ज़रूरी नहीं है उसका बच्चा जो है उन मेडल ही जीते, वही उसका एक अचीवमेंट है। बच्चा फिट रह रहा है, कोई गलत रास्ते में नहीं पड़ रहा है, ये भी एक कोच को देखना पड़ता है। सिर्फ हमारा मकसद बच्चों को मेडल लाके देना ये ही ज़रूरी नहीं है।
0: वैसे तो कहें कि ताइक्वांडो जो है आत्मरक्षा के लिए बहुत अच्छा स्पोर्ट्स माना जाता है, और खासकर बालिकाओं को अगर हम देखा जाए तो महिला इस स्पोर्ट्स को ज़्यादा सीखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी अल्मोड़ा में अधिकतर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कई एकेडमीज भी हैं जो कि बच्चों को ट्रेन कर रही हैं। आप के अंडर में जो बच्चे हैं इस वक्त, तो उनको कितना टैलेंटेड आप देखती हैं?
1: अब मैं सच बताऊँगी आपको, अभी जो मेरे पास स्ट्रेंथ है उसमें मेरे पास गर्ल्स की ही स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और अभी जो 15 बच्चे जो खेलने गए थे उसमें जो मेडल है वो सारी गर्ल्स हैं। जो हमारा गेम है एकदम, उसमें ऐसा होता है कि जितना बच्चा छोटे से स्टार्ट करता है वो उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा। कोई एक बड़ा बच्चा आके, यानी कि 15-16 ईयर्स का आके, मुश्किल है कि वो एकदम उसकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल रहे, वो उसको गेम को कर सके। तो छोटे से बच्चा जो है हमारे पास शुरू करता है, और गर्ल्स उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। गर्ल्स, हम ऐसा नहीं करते फाइट, जब प्रैक्टिस होती है तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की हम कराते हैं, तो गर्ल्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इसके इसमें खेलने के लिए, और अपना आत्मरक्षा के लिए तो ये है ही अच्छी चीज़।
0: आजकल के माँ बाप चाहते भी कि उनके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अच्छा करें।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और खासकर मैं देखता हूँ कि 3-4 बजे के बाद अक्सर एकेडमीज की तरफ जाते हुए देख सकते हैं हम लोग। तो स्टेडियम में क्या रूटीन रहता है बच्चों को सिखाने का?
1: 2 घंटा हमें सुबह दिया जाता है बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए, लेकिन थोड़ा बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम आ जाती है। आजकल जो आप देख रहे हैं कि समर टाइम चल रहा है, तो बच्चों की स्कूल्स हैं वो 6:30 से उनके स्कूल्स बसें ये आ जाती है। अगर वो मॉर्निंग में नहीं आ पाते, मैं उन्हें इवनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देती हूँ, और प्लस संडे को मैं उन्हें मॉर्निंग में बुला के उनको प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो हमारा जो रूटीन रहता है वैसे, वो मॉर्निंग में 2 आवर्स और इवनिंग में 3 आवर्स हम बच्चों को देते हैं
0: जी। तो कितने बच्चों की एक स्ट्रेंथ आपके पास?

0: रहती है?
1: एक्चुअली मेरे पास 50+ तो हो ही जाते हैं बच्चे, लेकिन उसमें से बस यही होता है कि स्टार्टिंग में तो सब बच्चा आ जाता है, लेकिन उस प्रैक्टिस को हर कोई झेल नहीं पाता
0: जी।
1: तो कुछ बच्चे उसमें या तो बोर हो जाते हैं या उनके हाथ पैरों में दर्द, इस तरीके की कोई चीज़ें आती है, फिर कुछ बच्चे जो है उसमें से छोड़ भी देते हैं। तो हमारे पास एटलीस्ट 30-35 चिल्ड्रंस जो है हमारे पास कंटिन्यू रहते हैं, जो कि आज मेरे पास 3 साल से लगातार है।
0: मतलब 30-35 बच्चों को आप आराम से एट ए टाइम कोचिंग दे सकते हो। आप अब बच्चे आपके पास कोचिंग करने आ रहे हैं, अब उनका एक डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलते हैं तो कुछ ना कुछ डाइट होगी। तो माँ बाप को भी आप बताते होंगे कि किस तरह की डाइट आपके बच्चों को देनी है। जैसे अब मैं शुरू करूँ कि आपके पास 7 या 8 साल के बच्चे से शुरुआत आप करते हैं,
1: 5 साल
0: से, तो अभी मान के तो सब

0: बच्चों को आप आराम से एट ए टाइम कोचिंग दे
1: यस
0: सकते हो। अब बच्चे आपके पास कोचिंग करने आ रहे हैं, अब उनका एक डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलते हैं तो कुछ ना कुछ डाइट होगी। तो माँ बाप को भी आप बताते होंगे कि किस तरह की डाइट आपके बच्चों को देनी है। जैसे अब मैं शुरू करूँ कि आपके पास 7 या 8 साल के बच्चे से शुरुआत आप करते हैं,
1: 5 साल
0: से, तो आप ये मान के चलिए तो सबके लिए डाइट प्लान भी एक अलग अलग रहता होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आजकल यही समझाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उनको बाहर की चीज़ों के लिए आप अवॉइड करवाइए, जो भी आजकल बाहर चूस चॉकलेट चिप्स वगैरह बच्चे खाते, पहले तो इसे ही आप मत दीजिए, यही बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद जो डाइट है, तो मैं ये कहूँगी कि उसमें बच्चों को एग वगैरह इस टाइप की चीज़ें उसमें आप उसको प्लस करिया करिए। कुछ बच्चों को 2 किलो वेट कम करना है तो उनको हमें डाइट बतानी पड़ती है कि आप 2 किलो जो है एट अ टाइम आप एक दिन में नहीं कर सकते, आप वो कंटिन्यू मेरे पास प्रैक्टिस में है, उसको क्या डाइट खानी है मॉर्निंग में क्या नहीं खाना है, तो ये चीज़ें हमने उनके पेरेंट्स को सब बताई हुई है।
0: ट्रेनिंग बात आती है तो किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर आप देती है?
1: मैं हूँ क्योर्गी। हमारे अब जो टाइक्वांडो है ना, वो 2 इवेंट में डिवाइड हो चुका है, एक होता है क्योर्गी एक होता है पुमसे। तो एक्चुअली मैंने ही क्योर्गी ही खेला है, तो मैं क्योर्गी ही उनको खिलाती हूँ। क्योर्गी मीन्स होता है फाइट
0: जी।
1: तो फाइट के लिए हमें जरूरी है किक और पंच का आना। तो स्टार्टिंग में बेसिक उनका यही रहता है कि मैं उनको कैसे भी करके उनकी किक इम्प्रूव करूं, जिसमें हमें पहले उनको एयर प्रैक्टिस देनी पड़ती है, उसके बाद उनको हमने किक पैड में प्रैक्टिस करवानी होती है। जब बच्चे इस तरीके के सीख जाते हैं, फुटवर्क सीख जाते हैं, पंच करना सीख जाते हैं, गार्ड करना सीख जाते हैं, उसके बाद उनका नेक्स्ट लेवल आता है फाइट यानी कि स्पारिंग। तो उसके बाद उन्हें फाइट प्रैक्टिस दी जाती है। जब फाइट प्रैक्टिस में कहाँ उनको मारना है, कहाँ कितना स्कोर मिलेगा, जैसे ट्रंक में मारते हैं तो कितना स्कोर मिलेगा, फेस में मारते हैं कितना स्कोर मिलेगा, ये तरीके की उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चा जब वहाँ फाइट खेलना शुरू करता है, फिर उसके बाद वही उसकी वो किस तरीके से अपने को गार्ड करें, कैसे खेलें, अपने स्कोर कैसे बचाएं और स्कोर कैसे निकालें, ये चीज़ें बताई जाती है।
0: क्योंकि अब नेशनल्स में आपने बच्चों को खिलाना है तो ऑब्वियसली उनको कुछ एक्सपोजर की जरूरत पड़ती है, कुछ इससे तो कुछ टूर्नामेंट भी उनको लोकल में भी खेलने पड़ते होंगे।
1: जी,
0: तो इस तरह की सुविधा यहाँ पर है।
1: जी जी, टूर्नामेंट्स की हमारी पूरी सुविधा है यहाँ पे, हम लोग कराते रहते हैं। हमारे स्टेडियम में भी 1 साल में करीब 2 या 3 टूर्नामेंट हम स्टेडियम में ही कराते हैं, और बाकी जैसे आपने बताया कि अभी एकेडमीज है हमारी यहाँ पे, तो हम कभी इंटर यूनिवर्सिटी कभी इस तरीके की हम लोग टूर्नामेंट्स कराते रहते हैं।
0: आपके जो बच्चे 8 जो मेडलिस्ट निकले अभी 13th ओपन नेशनल चैंपियनशिप में, तो उनमें कौन कौन से बच्चे में आप प्रतिभा देखती हैं कि आगे तक जाएंगे और हमारे देश को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं?
1: भूमिका जोशी उसमें लड़की का नाम था, सब जूनियर की है, वो करीब 10 या 11 साल की बच्ची है। उसके अंदर टैलेंट दिखता है मुझे कि वो बहुत अच्छा कर रही है।
0: आजकल तो जमाना कंडीशनिंग कोचेस का भी है, मेंटल कंडीशनिंग कोचेस का भी है, सब एक ही कोच की
1: जिम्मेदारी है।
0: टूर्नामेंट से पहले जब बच्चा आप जाता रिंग पे उतरता है तो आप क्या बताती है उनको, क्या कुछ करना होता है?
1: पहले तो हम यही मोटिवेट कराते हैं, आपके सामने खेलने आ रहा है, वो भी आप ही की तरह है, वो भी आप ही की तरह ट्रेनिंग करता है, उसके भी 2 हाथ 2 पैर हैं। हमारे बच्चों में पता नहीं, पहाड़ के बच्चों में मुझे लगता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो जो बच्चा खेलने से पहले डर जाता है तो हमें उन्हें मोटिवेट बहुत उनको करवाना पड़ता है कि आप डरिए नहीं, आप अपना, मैं बच्चों से ये भी नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ मेडल की चिंता करिए, मैं ये चाहती हूँ आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। हार जीत तो लगी रहती है, कोई इतनी वो इशू नहीं है, लेकिन आप अपना गेम तो बेस्ट दीजिए, आप अपना जो प्रैक्टिस में इतना अच्छा फाइट करते हैं आप वहां जाके उसका 50% भी नहीं दे पाते, तो इस चीज के लिए मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है कि आप अपना गेम बेस्ट कर दीजिए। और खाने से पहले आपने क्या चीज खानी चाहिए, बच्चे जो होते हैं खाने से पहले डर के मारे कुछ खाते नहीं है, हमारे उसमें जो होता है ना सुबह से सुबह 8 बजे से जैसे शुरू हो जाता है, तो बच्चे की कभी कभी रात को 8 बजे फाइट आती है, तो बच्चा जो है उतनी देर तक अपनी एनर्जी को लॉस कर लेता है और वो डर के मारे अभी खाता नहीं है कि अभी क्या पता मेरा नाम कुछ देर में आ जाएगा इस तरीके से, तो उसकी एनर्जी सुबह से शाम तक तो ऐसे ही लो हो जाती है। तो इस चीज के लिए भी हमें बोलना पड़ता है कि आपको खाना है तो जबरदस्ती आप खाइए उस चीज को।
0: तो वेट तो पहले ही हो जाते होंगे?
1: नहीं, वेट एक दिन पहले,
0: फिर घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप बच्चा बीच में देख रहा है कि 4-5-6 घंटे वो खाली है तो उस दौरान उसको भोजन तो कराने के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज की मुझे अभी फर्स्ट डे यहाँ देखा मैंने, बच्चे ये नहीं खा रहे थे। सेकंड डे में पेरेंट्स भी वहाँ पे आए हुए थे, तो मैंने उन लोगों से यही कहा बच्चों ने कल जो है जो मिस्टेक करी थी वो आज नहीं होनी चाहिए, आज इनके लिए बनाना जूस ग्लूकॉन डी जो है इलेक्ट्रॉल्स वगैरह ये चीजें जो है आप रेडी रखिए और इनको देते रहिए आप थोड़ी थोड़ी देर में।
0: टूर्नामेंट के दौरान जब आप टूर्नामेंट खेलने बच्चे जा रहे होते हैं तो उस दौरान की डाइट का क्या रहता है?
1: सबसे पहले तो हमें वेट एक दिन पहले ही वेट हमें देना पड़ता है बच्चों का। कुछ बच्चों ने वेट घटाना होता है, कुछ बच्चों ने वेट बढ़ाना होता है, तो जिन्होंने घटाना होता है तो उनकी तो हम खैर एक दिन के लिए हम थोड़ा डाइट उनकी बंदी कर देते हैं, उसके बाद जो है उनको फुल जो है एनर्जी लेवल जिसमें उनकी एनर्जी गेन हो जाए तो हम उनको वो सारी

0: चीज़ें खाने के लिए बोलते हैं, और जिनको वेट बढ़ाना होता है तो वो लोग अपनी इस तरीके की बनाना और इस टाइप की चीज़ें खा लेते हैं। तो ये तो हो गया विंग से पहले की बात, अब आ जाती है फाइट से। तो उसमें हम उसमें लाइट जो है आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह या ब्रेड वगैरह या बनाना सबसे बेस्ट है आप वो ले सकते हैं। जिस बच्चे की फाइट आ गई तो उसके बाद वो तो उस नहीं खाएगा दिन का अगर उसका है, या फिर बिल्कुल हल्की डाइट लेगा, नॉर्मल आप इलेक्ट्रोल पी सकते हैं उसमें, इस टाइप की हम उनकी चीज़ें बोलते हैं। स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हैं बच्चे, लेकिन ऐसा होता है ना हम कहीं बाहर दूर गए तो हमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं रहती है। अभी जैसे हम ग्वाला पार गए थे, यहाँ कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा था जो बच्चे होटल में रुके थे इस टाइप की चीज़ें। और जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रुके थे तो हमने उनको यही बोला कि आप अपना लंच जो है आप अपना लेके आइएगा, इस तरीके की चीज़ें। तो बहुत सी चीज़ों का हमें प्रॉब्लम्स जो है मैं फेस करनी पड़ जाती है
1: जी। साथ ही साथ आप एक नेशनल रेफरी भी हैं, अब आप मैं चाहूँगा कि बताएं कि कैसे आपका सफ़र एक खिलाड़ी से कोच से रेफरी की तरफ गया।
0: खेलते खेलते ही नेशनल रेफरी जो है हमारा कोर्स होता है, इसका सेमिनार अटेंड किया था। फर्स्ट टाइम मैंने लखनऊ में ही इसका सेमिनार जो है अपना अटेंड किया था रेफरीशिप का। हालांकि मैं उस टाइम थोड़ा सा घबराती भी थी सीनियर्स की बॉयज़ की फ़ाइट में, अगर आप सेंटर रेफरी हैं तो आपका जजमेंट और आपकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी फास्ट होनी चाहिए, नहीं तो एक रेफरी जो हमारा गेम है हमारी एक छोटी सी मिस्टेक से किसी की जान जा सकती है। अगर हमें लगा कि कहीं पे एक बंदा शार्प खेल रहा है दूसरा लूज कर रहा है, या हमने अगर धीरे बोला उसको सुनाई नहीं दिया दूसरे ने उसे उतनी देर में किक कर दिया कहीं भी, तो इसका बहुत ज़्यादा मतलब एक बच्चे की जान जा सकती है। तो इसलिए इसको रेफरी को बहुत मतलब मैं भी डर रही थी इसमें स्टार्टिंग में। तो धीरे धीरे हमारे जो सीनियर सर थे इसमें, एटी राजीव सर हैं बैंगलोर से, वो इंटरनेशनल रेफरी है जो हमारा करवाते हैं, सो उन्होंने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिलाया, उनको लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो उन्होंने मोटिवेट किया। तो मैंने फर्स्ट सेमिनार तो वहीं पर अटेंड किया, उसके बाद मैं मणिपुर हो गया, उड़ीसा हो गया, सब जूनियर इवेंट में नेशनल रेफरी के रूप में मैंने वहां पे अपना दिया। लास्ट ईयर हमारे हल्द्वानी में ही दोबारा से ये सेमिनार हुआ, क्योंकि अपडेट होना ज़रूरी रहता है, हमारे रूल्स चेंज हो जाते हैं बीच बीच में तो हमें भी अपडेट होना पड़ता है उस सब चीज़ों के लिए। 2018 से पहले जो है करीब 3-4 जगह मैं नेशनल रेफरीशिप कर चुकी हूँ।
1: आपको क्या लगा कि जब आपने एज ए खिलाड़ी के बाद रेफरी चुना था तो कितना मतलब कठिन जैसा लगा था कि आपको लगा कि बहुत
0: मैं कहूँगी कि सबसे अच्छा मुझे सिर्फ खेलना पसंद है, मुझे खेलना ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब रेफरीशिप करी तो उसमें एक जगह बैठे रहो, आप ना इधर देख सकते हो ना आप उधर देख सकते हो, तो आपको बिल्कुल किसी की आप एक स्कोर से आप कोई बच्चा हार सकता है जीत सकता है मतलब बहुत वो है, तो आपको बहुत उसमें फोकस करना पड़ता है और बिल्कुल आप बंधे रहते हैं। रेफरी का अच्छा है लेकिन एज अ प्लेयर मैं कहूँगी कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है।
1: तो आने वाला समय आप उत्तराखंड के लिए ताइक्वांडो में कैसा देखती हैं, कोच होने के नाते मैं जानना चाहूँगा
0: कि हमारा जो अल्मोड़ा है वो पहले से ही शुरू से ही ताइक्वांडो में काफ़ी अच्छा रहा है। आपने सुना होगा 2004 में हमारे सुरेंद्र भंडारी दादा सर हैं जो काफ़ी सीनियर हैं, वो भूषान से एशियन गेम्स में मेडल लेके आए थे, तो वहीं से हमारा जो है ताइक्वांडो जो है अल्मोड़ा में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। और काफ़ी टाइम बाद हमारा फिर उसके बाद रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हो गया था, हालांकि दौराहाट में भी हमारी यहाँ पे चलती है, उनके भी काफ़ी सर है हमारे विजय बहादुर सर, उनके भी बच्चे काफ़ी अच्छा करते हैं, अच्छा रिजल्ट है, हर जगह जॉब में भी निकलते हैं, अच्छा रहा है। और मैं चाहूँगी कि ऐसे ही जैसे सुरेंद्र भंडारी सर ने हमारे अल्मोड़ा का नाम इतना रोशन किया, ऐसे ही हमारे बच्चे जो हैं आगे नाम रोशन करते रहें, यहाँ से भी हमारे बच्चे निकले अल्मोड़ा का नाम रोशन करें।
1: तो हम ये कहेंगे कि आप इसको एक व्यवसाय के रूप में भी चुन सकते हैं, आपका कैरियर भी इसमें बन सकता है, एज आप अगर शौकिया खेलते भी हैं तो खेल खेल से भी आप आगे भी जा सकते हैं, और महिलाओं के लिए तो खासकर बहुत अच्छा है मैं कहूँगा। तो क्या कहना चाहेंगी आप हमारी बच्चियों से कि वो इस खेल को कितना अपनाएं?
0: ये मत देखिए कि आप देश के लिए मेडल ला रहे हैं, हमारे पास आते बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन बनता कोई एक ही है, तो हम उनको एक अच्छी दिशा में एक अच्छा नागरिक बना रहे हैं। जो बच्चे बड़े होते हैं आजकल गलत संगत में जा रहे हैं, नशे की तरफ को जा रहे हैं, तो बच्चे का एक फोकस रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ करनी है, मैं फिट, मुझे फिट रहना है, मुझे ये ऐसी चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, मुझे नेशनल में मेडल लाना है, तो बच्चा जो है उधर ही की ओर अग्रसित होगा, उसका ध्यान जो है भटकेगा नहीं। और दूसरी तरफ रही बात गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए जैसा आपने बताया, बच्चा जब यहाँ से स्कूलिंग में पूरा अगर अपना टाइम यहाँ सीखता है, कल के दिन में वो ताइक्वांडो की लाइन में नहीं जाके अपना कोई और कोर्स करने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है, तो गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छा है कि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस वो रहेगी कि हाँ मुझे ताइक्वांडो आता है, मैं इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं अपना बचाव खुद कर सकती हूँ। बच्चा खेले, 12th तक ही खेले, अगर जिसको फिर उसके बाद उसको कोई और लाइन पकड़नी है तो वो कर

0: ये थी वंदना सिंह। और अब बारी है अखिलेश सिंह की, जो कि अब सीनियर टीम के लिए प्रयास कर रहे हैं और ये 13वीं जूनियर एशियन चैंपियनशिप मलेशिया में आयोजित भारत की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल विजेता रहे। आपने 2023 के नेशनल चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 24 में आपके आप सिल्वर मेडलिस्ट हैं। तो अखिलेश, बात यहीं से शुरू करते हैं, आपकी नेशनल चैंपियनशिप की, जो आपने 2023 में गोल्ड जीता था, पहली बात याद है कि ताइक्वांडो के प्रति आपका शौक कैसे हुआ?
1: बचपन से ही हो गया था शुरू, क्योंकि मेरी दीदी जो है वो खुद नेशनल चैंपियन और नेशनल प्लेयर रही है, तो उनको देख के फिर मन किया खेलने का।
0: बात आती है नेशनल चैंपियनशिप की, तो 23 में आपने गोल्ड जीता, तो वो सफ़र आपका कैसा रहा?
1: तो नेशनल चैंपियनशिप जो है ऑल ओवर इंडिया से सारे बच्चे आते हैं और कंपटीशन बहुत हाई रहता है, टफ रहता है, तो उसके लिए बस गेम के, अपने गेम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियसनेस और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लगता है, और सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, टेम्प्ररी पढ़ाई और जो मेन चीज़ें हैं उसी पर तुम फोकस कर सकते हो अगर आप प्लेयर और एक स्टूडेंट दोनों हो तो। तो आपके लिए ऐसा होता है कि आपके लिए जो लाइन है वो थोड़ी टफ है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उससे ज़्यादा टफ है, क्योंकि आप प्लेयर और स्टूडेंट दोनों हो, आपको दोनों मैनेज करते हुए चलना है, तो पूरे अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट और पूरी मेहनत दोनों जगह, क्योंकि दोनों चीज़ में एक्सेल करना है, अच्छे से बेस्ट देना है, तो टफ था नॉर्मल बच्चों से, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं स्पोर्ट्स उनके मुकाबले बहुत टफ था, क्योंकि नेशनल चैम्पियनशिप थी, और पर बस पैशन था अंदर और ये था कि हार्डवर्क करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, मेहनत करते गए।
0: मेहनत करते करते आपने 23 और 24 में आप सिल्वर मेडलिस्ट रहे, गोल्ड के बाद सिल्वर आया, उस दौरान परफॉर्मेंस में थोड़ी हम कहेंगे ड्रॉप रही आपकी, कोई बात नहीं, लेकिन आपका सिलेक्शन हुआ था 13th जूनियर एशियन चैंपियनशिप के लिए मलेशिया में जो आयोजित हुई थी, तो वहाँ पर आप मेडलिस्ट रहे, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आपने देश के लिए जीता, तो ये मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आपका सिलेक्शन नेशनल टीम के लिए हुआ था उस?
1: तो सबसे पहले जो था हमारा 2025 की नेशनल चैम्पियनशिप जो देहरादून में हुई थी, तो वो था एक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था कि जो बच्चा गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज यहाँ पे होगा तो उसके लिए आगे जाके रास्ते खुलेंगे एशियन चैम्पियनशिप के ट्रायल के लिए, तो वहाँ गए और पार्टिसिपेट किया नेशनल चैम्पियनशिप्स में और वहाँ मेडल जीता, वहाँ नेशनल चैम्पियन बना मैं उस टाइम पे, और उसके बाद वहाँ से फिर आगे जाके जूनियर एशियन चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स दिए, फिर वहाँ सिलेक्शन लिया, और उसके बाद कैंप मिला हमको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, हमारा कैंप लगा था 1.5 महीने का
0: जी,
1: तो फिर वहाँ ट्रेनिंग हुई इंडिया के बेस्ट कोचेस के साथ।
0: पहली बार जब एशियन चैम्पियनशिप में खेले आप, नेशनल से विदेश में जाकर खेले, तो कैसा आपकी मनस्थिति थी, क्या लग रहा था आपको, मैं इतने बड़े मंच पे खेलने जा रहा हूँ?
1: बस ये था कि अब इतना आगे आ चुके हैं तो अब कुछ और ऑप्शन नहीं है, अपना बेस्ट देने का हमेशा से रहा है दिल में कि अब तो देश के लिए खेल रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि देश के लिए खेलना है, अपना बेस्ट देना है किसी भी हालत में, चाहे कोई भी आ जाए सामने किसी भी कंट्री का।
0: वहाँ पर जब आपके कोचेज होते हैं तो एक आप जब स्थानीय स्तर पे आपके कोच होते हैं अलग होते हैं, आप जब आप एशियन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके साथ कोचेज अलग होते हैं, तो कैसा आपको लगता है कि जो आपने कोचिंग यहाँ ली जिन कोचेज से और इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं खेलने के लिए, वहाँ पर कोचिंग में क्या अंतर लगा आपको?
1: यही बात है जिससे हम बचपन से सीखते हैं, उनको तुम्हारी कमियों के बारे में, तुम्हारी एडवांस जो तुम जिस चीज़ में अच्छे हो उस चीज़ के बारे में पता होता है, और वो तुम्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है एज अ प्लेयर, जो हमारा कोच होता है उससे एक अलग बॉन्ड होता है, हमारा एक अलग रिलेशन होता है, जिसने हमें बेसिक से उठाया होता है, तो उसे सब पता होता है, लेकिन जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़े अलग कोचेस मिलते हैं जो एडवांस होते हैं, जो ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, और एक लेवल उनका अप हो जाता है, पर उनसे फिर कुछ टाइम उनके साथ ट्रेनिंग करने के बाद उनके साथ भी थोड़ा रिलेशन अच्छा बन जाता है, क्योंकि वो काफ़ी सारे प्लेयर्स को वो उन्होंने पहले भी ट्रेनिंग दी होती है और उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उन्हें पता होता है कि हर एक बच्चे को कैसे हैंडल करना है, तो बस इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, पर अपना कोच तो अपना कोच ही होता है लास्ट में
0: जी। इंटरनेशनल में आप फाइट कर रहे हैं, अब जब आप पहली बार फाइट करने गए तो क्या था, कहते हैं बटरफ्लाई इन स्टमक, कहते हैं
1: नर्वसनेस थी थोड़ी, वो तो हर फाइट के पहले नर्वसनेस होती है।
0: किसके अगेंस्ट फाइट थी आपकी?
1: मेरी पहली फाइट चाइना से थी, हाँ, और मैंने ये देखा है हमारे देश में स्पोर्ट्स की हालत थोड़ी डाउन ही चलती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो प्लेयर्स को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, क्योंकि जो और कंट्रियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे है हमसे आजकल, क्योंकि

0: चीज़ जो हम अभी सीखते हैं वो शायद से 5-10 साल पहले वो लोग करके उसे वो टेक्निक्स और जिस एडवांसमेंट के साथ आज हम सीख रहे हैं वो बहुत पहले सीख चुके हैं. तो उनके पास प्लस पॉइंट रहता ही रहता है उनकी फैसिलिटीज़, क्योंकि उनको अच्छी मिलती है. ऐसा नहीं है कि हमारे देश में भी फैसिलिटीज़ नहीं है, पर हो जाता है थोड़ा पीछे क्योंकि बेसिक लेवल पे अच्छी वो नहीं मिलती. भले ही टैलेंट हमारे देश में बहुत ज़्यादा है
1: जी, पर मैं ये जानना चाहूँगा, जब पहली फाइट आप कर रहे थे, अपोनेंट आपका चाइनीज़ था, तो आप कैसे उससे फाइट कर रहे थे, क्या लग रहा था आपको कि क्या उसमें क्या कमी है और मैं कहाँ उसके ऊपर पॉइंट ले सकता हूँ?
0: वही गेम पढ़ना था उसका. सबसे पहले खेलते गए, नॉर्मली उसका गेम देखा कि वो किस तरीके से खेल रहा है, और फिर थोड़ा उसकी कमियाँ देखी कि कहाँ पर वो लैक कर रहा है, और फिर वहीं से स्कोर निकालने का ट्राई किया. वो अपनी लेफ्ट लेग से बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, वो बस एक ही लेग से खेल रहा था, तो पता चल गया था कि ये इसका माइनस पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट निकल सकता है हमको, तो वहाँ पे एडवांटेज लिया, वहाँ से पॉइंट निकाला.
1: तो ये एज ए खिलाड़ी तुम खुद जज करते हो या बीच में कोच भी इशारा करते हैं कुछ वहाँ पर?
0: कोच का बहुत बड़ा हाथ रहता है क्योंकि कई बार जो पर्सन खेल रहा होता है ऐसा प्लेयर, तो कई बार वो नहीं समझ पाता है कि सामने वाला कैसा खेल रहा है, तो कोच कभी कभी आँख बंद करके कोच की बात मानना भी बहुत ज़रूरी है. कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोच पे भरोसा रखो, वो तुम्हें अच्छा ही गाइड करेगा और सही गाइड करेगा क्योंकि उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है.
1: जी, आप अपनी पहली फाइट जीते, आगे की फाइट जीते, तो किस तरह के अपोनेंट्स आप फेस करते गए?
0: चाइनीज़ अपोनेंट थोड़ा टफ पड़ा पहली फाइट में. सेकेंड फाइट मेरी ईजी रही जो सऊदी अरेबिया के साथ थी. थर्ड फाइट मेरी कोरिया के साथ हुई थी जिसमें मैं हार गया था.
1: अच्छा,
0: कोरिया से मैं हार गया था.
1: कोरियन वाले में ऐसी क्या खासियत लगी जो आपको लगा कि आप कहाँ लैग करें?
0: कोरियन के साथ मैंने देखा, सबसे पहले तो उसके पास एक एडवांटेज था हाइट का, वो मुझसे हाइट में बड़ा था.
1: अच्छा,
0: और उसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, स्ट्रेंथ में भी बहुत ज़्यादा, हाइट में भी बहुत ज़्यादा, तो बस यही प्लस पॉइंट था उसका.
1: टेक्निक वाइज
0: आप मैं कहूँगा
1: टैकल कर रहे थे मतलब?
0: टेक्निक वाइज मॉडरेट, बस जो नेचुरल स्ट्रेंथ थी और वो रॉ स्ट्रेंथ वो उस पर अब बहुत अच्छी थी, तो वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई.
1: उसके बाद अब आगे आप क्या सोचते हो, आपने क्या करना है
0: अभी नेक्स्ट? मेरा सोचा है सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप्स को टारगेट कर रहा हूँ, उसके लिए वर्क कर रहा हूँ, खुद पर बेहतर कर रहा हूँ हर दिन खुद को. और आजकल ये तो है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है गेम्स में, तो मैं आर्मी सर्विसेज, आर्मी और काफ़ी सारी रेलवे, इन सब चीज़ों में जॉब मिल जाती है.
1: जी,
0: हाँ, तो उसके साथ हम अपना गेम भी कंटिन्यू कर सकते हो एक तरीके से.
1: तो अभी फ़िलहाल जो क्या तैयारी कर रही है आपकी?
0: फ़िलहाल तो नेशनल चैम्पियनशिप के लिए, तो अब कॉम्पिटिशन और डबल है, तो उसके लिए डबल मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो बस वही चल रहा है.
1: तो कितना डिफरेंस लग रहा है आपको जूनियर से सीनियर में? अब आप शिफ्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर किस कोच के अंडर में यहाँ पे कोच किया?
0: विक्रम भंडारी सर.
1: विक्रम भंडारी जी के अंडर में कोचिंग कर रहे हैं, तो किस तरह की उन्होंने कुछ ना कुछ तो सीनियर्स लेवल पे जो कोचिंग होती है जूनियर से काफ़ी डिफरेंट होती है, तो क्या चीज़ें आपको अलग से सिखाई जा रही है?
0: अब जैसे सीनियर एक अलग ही लेवल है, उसका लेवल थोड़ा टफ डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी खेलते हैं, तो एक तो वो हो गया. टेक्निकल ट्रेनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी टेक्निक सुधारनी पड़ती है और अपने आप को और पॉलिश करना पड़ता है, अपने जो कमियां होती है उनको ट्राई करना पड़ता है कि इसको किसी ना किसी तरीके से कम करें और सुधारें, कोई कमी ना रह जाए हमारे अंदर.
1: अच्छा, स्टेमिना भी इसमें चाहिए होता है आपको, उतनी देर रिंग में सस्टेन करना है, तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे करते हो?
0: स्टेमिना बिल्ड करने के लिए अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग होती है, हमारी एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है जो मेनली स्प्रिंट्स, रनिंग्स, लॉन्ग रनिंग हम लोग करते हैं जिससे स्टेमिना बिल्ड होता है.
1: 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस आयोजन किया गया. माउंटेन बाइकिंग के बारे में अपने अनुभव को साझा किया हमारी प्रतिनिधि गीता कनवाल से भरत शाह ने.
2: आप काफी समय से साइकिलिंग कर रहे हैं और कई सारे ट्रैक्स आपने साइकिल से किए हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में साइकिलिंग को अपने जीवन में अपनाने का विचार कैसे आया?
3: ये मेरे बचपन से जुड़ा है और मेरा पहले साइकिलिंग में कोई शौक ऐसा नहीं था. मैं जब झांसी हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए गया था तो मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरे घर से करीबन 8-9 किलोमीटर दूर स्कूल हुआ करता था, तो मुझे वहाँ साइकिल से ही जाना पड़ता था, इसके लिए मैंने साइकिल सीखी थी. और उसके बाद मैं नैनीताल आ गया आगे की एजुकेशन के लिए, तो साइकिल लगभग छूट गई थी. फिर बाद में मैं एडवेंचर से जुड़ा तो मैंने ट्रैकिंग का काम किया, लेकिन पिछले 12-13 सालों में साइकिल में एक बड़ा परिवर्तन आया कि पहाड़ों में लोग साइकिल चलाने लगे. हम सोचते थे कि लोग प्लेन्स में ही साइकिल

0: आते हैं, लेकिन पहाड़ों में गियर साइकिल का प्रयोग होने लगा। तो तब मैंने पहली बार 10-12 साल पहले गियर साइकिल चलाने की शुरुआत की, और फिर एक बार जब मैं शुरू हुआ तो फिर रुका नहीं, फिर मैं नए नए तरीके से साइकिल के ट्रेल देखने लगा और साइकिल से पहाड़ों को घूमने लगा।
1: इसके अलावा सर, साइकिलिंग के दौरान आपके खट्टे मीठे अनुभवों के बारे में जानना चाहेंगे, और आपने अभी तक साइकिलिंग के माध्यम से कहां कहां तक की यात्राएं की हैं?
0: अनुभव तो साइकिल में, जब आप घर से निकल जाओ तो बहुत प्रकृति के साथ आपको रहना पड़ता है, तो एक तरीके से जैसे फिल्म चेंज होती है, उस तरीके से पूरा आपको चेंज एटमॉस्फेयर मिलता है, और नई नई चीजों से आपको, मतलब आपको देखने को मिलती है, नए लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है, और नए स्ट्रगल आपको दिखाई देते हैं। तो मेरी यात्राओं में जो मैंने शुरुआत की पहाड़ों में, तो आसपास में ही पहले 5-10 किलोमीटर मैंने सफर शुरू किया, जैसे अल्मोड़ा से कसार देवी का। तब मुझे बड़ी हिचक होती थी कि अगर मैं चढ़ाई में कहीं रुक गया तो लोग क्या कहेंगे, और फिर धीरे धीरे जब मुझे प्रॉपर गियर साइकिलिंग का तजुर्बा हो गया, तो मैंने काफी इधर जो टूर्नामेंट प्रोग्राम्स होते हैं, इनके साइकिल इवेंट्स होते हैं, उनमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। उसके बाद मैं गोवा भी गया, नासिक भी गया, और बॉम्बे में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा मैंने पहाड़ों में जो जर्नी की, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उत्तराखंड के पहाड़ों में सबसे ज्यादा है, तो मैंने बद्रीनाथ की साइकिल यात्रा की, माणा पास मैंने किया साइकिल से, हिमाचल में मैंने काफी साइकिलिंग की और वहां पे मुझे प्राइज भी मिले, और इस तरह से मेरी साइकिल जर्नी काफी अच्छी रही, और अभी भी मैं कंटिन्यू साइकिलिंग करता हूँ पहाड़ों को देखने के।
1: आप कई वर्षों से साइकिलिंग कर रहे हैं, तो साइकिलिंग शुरू करने से पहले और उसके बाद आपने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में किस तरह का परिवर्तन देखा?
0: स्वास्थ्य तो साइकिलिंग से बहुत ही बढ़िया मैंने फील किया। सबसे बड़ी चीज जो मुझे साइकिलिंग जर्नी में महसूस हुई कि जब आप पहाड़ों में साइकिलिंग करते हैं तो आपको सिर्फ अपने सांसों की आवाज सुनाई देती है, मतलब आप अपने आप को फील कर सकते हैं, और ये एक तरीके से स्पिरिचुअल फीलिंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो अधिकतर इंसान जो है जब भी कहीं बैठता है और कुछ पढ़ता है, लिखता है, या कहीं कुछ भी कर रहा होता है, तो उसके दिमाग में कई तरह के विचार आते रहते हैं, लेकिन जब वो साइकिलिंग करता है तो उसको ये लगता है कि उसको उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, वो चढ़ाई चढ़नी है या वो अचीवमेंट करना है वहां तक जाने का, तो उसको बाकी कोई ख्याल नहीं आते। तो कहते हैं जो स्पिरिचुअलिज्म में थॉटलेसनेस, अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, अपनी धड़कनों को समझना, ये मुझे लगता है साइकिलिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा होता है, और यही मैंने महसूस।
1: आप हमारे श्रोताओं को साइकिलिंग को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मुझे तो ये लगता है कि साइकिलिंग को दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए, इससे आपका फिटनेस लेवल अच्छा रहेगा, हेल्दी फील करेंगे आप अपने आप को साइकिलिंग करके, और यदि आप हफ्ते में आपके पास समय नहीं है तो आप कम से कम वीकेंड में या संडे के दिन आप एक साइकिल राइड छोटी जरूर करें, जिससे कि एक परिवर्तन आपको खुद अपने अंदर महसूस होगा। यही संदेश दूंगा कि सभी को साइकिल चलानी चाहिए और स्वस्थ रहने की ओर अग्रसर होना चाहिए, और सभी स्वस्थ रहें, साइकिल चलाएं।
2: तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम से अपने मित्र संजय जोशी को अनुमति दें, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए अंक के साथ इसी चैनल इसी फ्रीक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रही हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं शाहिद परवेज का सितार पर बजाया राग यमन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं विजय घाटी।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में श्रोता अभी आप सुन रहे थे शाहिद परवेज का सितार पर बजाया राग यमन। आपके साथ तबले पर संगीत कर रहे थे विजय घटे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल

0: थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश KT थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: match of the London leg of the 2025-26 FIH Pro League this evening. India mounted a strong comeback after falling behind in the first quarter, with goals from Abhishek Nayan, Neelkant Sharma, Sukhjeet Singh and Rajinder Singh. With this win, India continues its unbeaten record against Pakistan in senior men's hockey, extending back to 2014. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for thunder squall activity with winds speeds likely to reach 60 to 70 kilometers per hour over Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
1: FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो घड़ी के मुताबिक रात्रि के ठीक 11:10:25 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सायंकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। अपनी प्रातःकालीन सभा में कल प्रातः 5:55 पर हम फिर आपके समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।